सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026 सुबह के 7:01 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम जीवन सौरभ आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। अक्षय निधि कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे 7:10 से। इन दिनों आप सुन रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल से वाचन। आज आप सुनेंगे इसमें सूक्त 148। भक्ति संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे 7:20 से। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे और संध्या 6 बजे। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा मल्लू डोरे की शहादत पर। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें हम आज आपको सुनवाएंगे रंगकर्मी अभय सिन्हा से बातचीत और नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बागर्थ, जिसमें आज आप सुनेंगे रचना पाठ कोई कमी न हो। नौ बजकर 30 मिनट का समय रहेगा विशेष कार्यक्रम का, जिसमें आज आप सुनेंगे कलापनी कोमकली का भक्ति गायन। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे रेडियो रिपोर्ट, जिसमें स्थापना रंग महोत्सव पर ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा और साथ ही साथ भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी। परिक्रम आप सुनेंगे 10:20 से। हिंदुस्तान हमारा ये कार्यक्रम 10:30 पर सुना जा सकेगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा रानी अहिल्याबाई होलकर पर। पंडित भीमसेन जोशी पर केंद्रित रहेगा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। प्रसारण समय होगा दिन में 11 बजे से। 11:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। इसका एपिसोड 76 आज हम प्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। और अब आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ। आइए सुनते हैं।
1: जीवन सौरभ। ये दुनिया ठीक वैसी ही है जैसी आप इसे देखना पसंद करते हैं। यहाँ पर किसी को गुलाबों में कांटे नजर आते हैं तो किसी को कांटों में गुलाब, किसी को दो रातों के बीच एक दिन नजर आता है तो किसी को दो सुनहरे दिनों के बीच एक काली रात, किसी को भगवान में पत्थर नजर आता है तो किसी को पत्थर में भगवान, किसी को साधु में भिखारी नजर आता है और किसी को भिखारी में भी साधु, किसी को मित्र में भी शत्रु नजर आता है और किसी को शत्रु में भी मित्र, किसी को अपने भी पराये नजर आते हैं तो किसी को पराये भी अपने, किसी को कमल में कीचड़ नजर आता है तो किसी को कीचड़ में कमल। अगर आप चाहते हैं कि हर वस्तु आपके पसंद की ही हो तो इसके लिए आपको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति के दृश्यों को चाहकर भी आप बदल नहीं सकते। आप बस नजर मात्र बदलिए, नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। जिंदगी बिल्कुल वैसी होगी जैसी आप चाहते हैं।
2: जीवन सौरभ।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
4: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 148वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता है अग्नि और छंद है त्रिष्टुप।
5: मथि दद्दीम विष्टो मातरिश्वा होतारम विश्वाप्सुम विश्वदेव्यम नीयम दधुर्मनुष्यासु विक्षुस्वर्णचित्रम वपुषे विभावम। देवताओं के आवाहक सर्वरूपवान, देवताओं के निमित्त सभी यज्ञादि कर्मों में कुशल उन अग्निदेव को जब मातरिश्वा वायु ने सर्वव्यापक होकर मंथन द्वारा उत्पन्न किया, तब सूर्य देव की तरह विचित्र तेजस्विता संपन्न उन अग्निदेव को मनुष्यों के शरीरों में पोषण के लिए प्रतिष्ठित किया गया, उनकी हम प्रार्थना करते हैं। ददानमिन्न ददभंत मन माग्निर्वरूथम मम तस्य चाकन जुषंत विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिम भरमाणस्य कारोह। अग्निदेव की स्तुति करने वाले हम याजकों को शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निदेव हमारे स्तोत्रों की मंगल कामना से प्रेरित हैं। हम स्तोताओं की प्रार्थनाओं को तथा समस्त सत्कर्मों को संपूर्ण देव शक्तियां ग्रहण करती हैं। नित्ये चिन्नु यम सदने जग्रिभे प्रशस्तिभिर दधिरे यज्ञयासः प्रसूनयन्त ग्रभयन्त इष्टावश्वासो नरथ्यो रारहाणाः। जिन अग्निदेव को याजक गण प्रतिदिन यज्ञ गृह में शीघ्रता पूर्वक स्तुतियों सहित प्रतिष्ठित करते हैं, उन्हें याजक गण यज्ञार्थ तीव्रगामी रथ के घोड़ों की तरह विकसित करते हैं। पुरुणी दस्मो नीरिणाति जंभई राद्रोचते वन आ विभावा आदस्य वातो अनुवाति शोचिरस्तुर न शरिया मसना मदनु द्यून। अग्निदेव ज्वाला रूपी दांतों से वृक्षों को प्रायः विनष्ट कर देते हैं, वे जंगल में सभी ओर प्रकाश बिखेरते हैं। इस अग्नि की ज्वाला इसके समीप से वायु की अनुकूलता पाकर छोड़े गए बाण की तरह वेग से आगे बढ़ती है। न यम रिपवो न ऋषण्यवो गर्भे संतम ऋषेणा रेशयन्ति अंधा अपश्या न दभन्न मिख्या नित्यास ईम प्रेतारो अरक्षन। गर्भ में स्थित अग्निदेव को शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते। अज्ञानी दृष्टि विहीन एवं ज्ञान का दंभ भरने वाले भी जिसकी महिमा को कम नहीं कर सके, उन अग्निदेव को नित्य यज्ञ कर्म द्वारा संतुष्ट करने वाले मनुष्य सुरक्षित रहते हैं।
6: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 148वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलायर एप्लीकेशन पर भी। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भक्ति के लिए मंदिर या पूजा के विधि की आवश्यकता नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, भाव बिन भजन नहीं। मन का भाव यदि सच्चा हो तो प्रभु तुरंत सुन लेते हैं।

भगवान को दिल से पुकारना चाहिए। भगवान हर बार भक्त की बात सुनते हैं। प्रभु के नाम में ही ताकत है। भक्ति की डोर भगवान के सदैव हाथ में ही रहती है।

प्रभु से हम अपना रिश्ता अनेक प्रकार से बना सकते हैं, सखा भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव या माधुर्य भाव के साथ।

भगवान की भक्ति अर्थात पूरे मन से ईश्वर के साथ जुड़ना, सिर्फ प्रेम और समर्पण, दिखावा नहीं।

प्रभु से जहाँ सखा भाव का संबंध है, जहाँ दास्य भाव का संबंध है, वहीं वात्सल्य भाव का संबंध भी है, माँ बेटे जैसा। जैसे यशोदा और श्री कृष्ण का रिश्ता था, प्रभु से लाड़ करो, रूठो, उन्हें मनाओ।

भगवान से रिश्ता रखते समय तीन बातें होनी ही चाहिए। पहला निस्वार्थ प्रेम, अर्थात मांगना कम देना ज्यादा, अर्थात तू प्रसन्न रहे बस यही भाव। दूसरा पूर्ण शरणागति, अर्थात अपनी हार मान लेना कि अब तू ही संभाल,

0: और श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम देश का चैनल देश

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। आंध्र प्रदेश की नल्लई मल्लई पहाड़ियों के पार सघन वनों से अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा थामा था अल्लूरी सीताराम राजू ने। लोकहित और स्वतंत्रता के लिए समर्पण के भाव का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आज भी इलाके के वनवासी उन्हें अपना उद्धारक और देवता के रूप में याद करते हैं। वीर क्रांतिकारी सीताराम राजू बलिदान की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे। ब्रिटिश शासन ने सोचा कि बागियों से अब मुक्ति मिली, पर ऐसा हुआ नहीं।

राजू के दोनों ही विश्वास पात्र लेफ्टिनेंट गौतम डोरे और मल्लू डोरे सक्रिय हो उठे और अपने साथ ही राजू की आन निभाने का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। एक दिन जब गौतम डोरे एक गांव में पहुंचे तो गांव के एक आदिवासी ने उन्हें बताया कि उसकी खोज में पुलिस का एक दल कुछ समय पूर्व ही वहां पहुंचा था। सभी गांव वालों से पुलिस दल के मुखिया ने पूछताछ की थी पर गांव में से किसी ने कोई भेद नहीं दिया। ग्रामीण आदिवासी ने गौतम को परामर्श दिया कि कुछ दिन के लिए या तो वे लोग कहीं और चले जाएं या अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को बंद रखें। गौतम के दल को यह परामर्श पसंद आया और लगभग एक माह तक उन्होंने कोई वारदात नहीं की। पुलिस ने समझा कि क्रांतिकारियों का दल भाग खड़ा हुआ है।

पुलिस ने उस क्षेत्र को छोड़ने से पहले अंतिम तलाशी लेना चाहिए। 7 जून 1924 को पुलिस का विशाल दल 3 समूहों में बट गया और हरेक समूह ने क्रांतिकारियों के छिपने की सभी संभावित जगहों की तलाशी लेना शुरू कर दी। पुलिस के एक समूह को नदी के बीहड़ों में 7-8 क्रांतिकारियों का दल दिखाई दिया। पुलिस के उस समूह ने क्रांतिकारी दल पर गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस के शेष 2 समूह भी वहां पहुंच गए और गोलियां दागने में वे भी शामिल हो गए। गौतम डोरे ने पुलिस के 3 समूहों का डटकर मुकाबला किया। उनके ऊपर 3 तरफ से गोलियां चल रही थीं और वे पुलिस के 3 समूहों पर गोलियां दागकर पीछे धकेल रहे थे। अंत में बहुसंख्यक और सुसज्जित पुलिस दल के सामने गौतम का दल अधिक समय तक मुकाबला नहीं कर सका। उनके कुछ साथी मारे गए और वे स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता की स्वाधीनता के लिए उन्होंने मृत्यु का वरण किया।

गौतम डोरे का भाई मल्लू डोरे अकेला रह गया। घायल हो जाने के कारण वो किसी दूर स्थान तक नहीं जा सके और एक दिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। मल्लू डोरे पर मुकदमा चला और 19 जून 1924 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह लूरी सीताराम राज द्वारा किया गया फितूरी विद्रोह का दमन कर दिया गया। लगभग सभी आंदोलनकारियों ने वीरता के साथ मृत्यु का वरण कर शहीद होने का गौरव प्राप्त किया। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम आमने सामने का। इस कार्यक्रम में आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा को।
1: उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे लाइट आना स्टार्ट किया, लोग अपने से लाइट बनाने लगे, बॉल 1000 पावर का बॉल लगाकर ऐसे करके, वो ढक्कन टीन होता था उससे लाइटिंग करते थे और अपने हाथ से उसको चलाते थे। अब धीरे धीरे देखिए कैसा टेक्निक चेंज हुआ, हाँ, बड़े बड़े मिक्सर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो ऐसे ऐसे चेंज होता चला गया।
0: वो जनयोद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह में शिरकत करने भोपाल आए और जनयोद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह में मंचन हुआ नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह का।

0: इस मौके पर हमने अभय सिन्हा से बात की। कार्यक्रम के पहले हिस्से में आप सुनेंगे वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा से बातचीत, और उसके बाद नाटक वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश प्रस्तुत किए जाएंगे। तो अब आपसे मुखातिब हैं वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा।
1: मेरा नाम अभय सिन्हा है और मैं पटना से आया हूँ। हमारी संस्था है प्रांगण, राष्ट्रीय नाटक उत्सव में हमारा नाटक है बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के योद्धा थे, जो बिहार में सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं, और स्वतंत्रता सेनानी के अलावा ये देश के लिए बहुत किया इन्होंने।
0: सर, थोड़ा सा आपके बारे में बात करेंगे, आपका रंगकर्म की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और क्या थिएटर की दुनिया में आप खुद ब खुद चले आए या किस्मत आपको ले आई?
1: देखिए, बचपन से ही शौक था। हम तो जब क्लास 5th-6th में पढ़ते थे उस समय से, मतलब हमारा ये है कि 1974-5 से हम रंगमंच पे हैं, 1974-75 से हम रंगमंच पे हैं। काले बाल से वाइट बाल हो गया हमारा, और हम लगातार रंगमंच कर रहे हैं, और किसी भी तरह का कोई नौकरी आज तक नहीं किया, और रंगमंच की सेवा कर रहे हैं। और अचानक आना ही कहेंगे, और शौक तो था ही, अचानक आना हुआ कि हमारे गुरु थे, हमें ट्यूशन पढ़ाते थे, वो हमारे परिचित के भी थे, मेरे बड़े भैया के मित्र थे, वो एक संस्था से जुड़े हुए थे, तो हम ऐनक के सामने कभी कभी ऐसे डायलॉग बोलते थे। और उसके पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें शिक्षक दिवस पे हम रंगमंच पे नाटक करते थे, छोटे छोटे नाटक को करते थे। तो उस समय मंच क्या, स्कूल के मंच पे होते थे, वो तो बहुत बड़ा मंच नहीं होता था, लेकिन वही जो भैया के मित्र थे, हमें जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्होंने आकर कहा कि अभय नाटक करोगे? हम बोले हाँ एकदम करेंगे, तो बोले चलो करते हैं। तो एक संस्था थी उस समय पटना में अभियान करके, उससे हम जुड़ गए। तो एक हमें रोल तो मिला नहीं, प्रॉम्प्ट करते रहे, और उसके धीरे धीरे करेक्टर अचानक क्या हुआ कि वो आया नहीं, और वो क्या हुआ कि मतलब वो थोड़ा सा आए, 2-4 दिन आए नहीं आए, उसका प्रॉक्सी हम करने लगे। तो प्रॉक्सी करने लगे तो उसका संवाद याद आ गया, तो जो डायरेक्टर थे वो लगे भाई तुम करो अब इसको, हम किए तो बहुत बढ़िया कर गए, एक प्रॉम्प्टर भी थे, प्रॉक्सी भी करते थे, तो उसके बाद जब करने लगे तो करने लगे, और आज तक लगातार
0: दोनों ही चीज़ें हैं, किस्मत भी ले आई और आपको शौक भी था।
1: शौक भी था, और अब ये ऐसा हो गया कि अब रंगमंच पे अभिनय धीरे धीरे धीरे धीरे समाप्त हो गया, और रंग निर्देशक की ओर हम बड़े अग्रसर हो गए, और अब अभिनय बहुत ही कम करते हैं। अगर किसी और के निर्देशन में अगर काम होता है तब हम करते हैं, हम अपने निर्देशन में खुद अभिनय
0: नए लोगों को
1: प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
0: सर, एक चीज़, बचपन आपका कहाँ बीता ये ज़रूर पूछूंगा, और उन दिनों में कौन से वो रंगकर्मी थे जिनके आप लोग होते ना मुतासर होते हैं कि जैसे फिल्मी एक्टर्स, तो वो क्योंकि नाटक अब तो खैर बहुत होने लगे, पहले इतने होते तो होंगे लेकिन इतना आसान नहीं था, दूर दूर जाना आना आसान भी नहीं था, सफ़र करना भी, तो वो कौन से रंगकर्मी थे जिनको देखकर आप प्रभावित हुए और फिर आगे बढ़ते चले गए?
1: वो हमारे गुरु थे, हिंदुस्तान के बड़े ही चर्चित नामी रंग निर्देशक थे सतीश आनंद, जिसको जो भी रंगकर्म करते हैं वो हर लोग जानते हैं कि सतीश आनंद क्या चीज़ है। तो हम उनके ही सानिध्य में थे और वही हमारे गुरु हैं, और हमने छोटे छोटे जो नाटक किए उसके पहले एक अजय के सिन्हा हुआ करते थे, उनके निर्देशन में भी हमने एक दो नाटक किया था, लेकिन जो गुरु, जिनको गुरु माना जाता है, प्रथम हमारे तो अजय के सिन्हा ही थे, लेकिन ये जो गुरु थे हमारे, वो उनसे हमने बहुत कुछ गेन किया, और उनको देखकर हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, और उनके ही सीखे हुए चीज़ों को अब हम कोशिश करते हैं कि मंच पे करें।
0: फिर एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा सुनने वालों के लिए कि नाटक लोग खेलते हैं, हर जगह होता है, भारत में भी होता है, बाहर भी होता है, जो जनता होती है वो किस तरह से समझे, क्योंकि कन्फ्यूज़ रहती है कि नाटक क्या है, फिल्में क्या हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ क्या हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। और एक ये भी चीज़ हम सुनते हैं कि जो नाटक की दुनिया से, थिएटर की दुनिया से जो एक्टर्स आते हैं उनको ये माना जाता है कि वो अच्छे एक्टर हैं।
1: देखिए, जब तक दर्शक जो होते हैं, जो फिल्म की ओर ज़्यादा अग्रसर रहते हैं, जब तक वो देखेंगे नहीं रंगमंच को, अगर वो एक बार रंगमंच को देख लें, अगर अच्छे निर्देशक को देख लें, उनको रंगमंच के प्रति झुकाव होगा। जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेगा वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा, और वही देश में नाम कमाएगा, और वही आगे बढ़ेगा, वही चलचित्र पे जाएगा, वही फिल्मों में काम करेगा, सीरियल में काम करेगा और आगे बढ़ेगा। दर्शक को, रंगकर्मियों को, रंगमंच को समझना चाहिए और समझना होगा, धीरे धीरे झुकाव हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि झुकाव नहीं है, पहले बहुत झुकाव था, बीच में अलग हुआ, फिर वापस हो रहे हैं दर्शक। अच्छे अच्छे राइटर का नाटक आ रहा है, अच्छे अच्छे नाटककारों का नाटक आ रहा है, तो ये है हमारा।
0: सर एक दो सवाल, क्योंकि आपको समय की कमी है, जब आप रंगमंच करते थे शुरुआत की और अब क्या फ़र्क आपने देखा होगा, टेक्नोलॉजी में फ़र्क हुआ होगा, नए आर्टिस्ट आते हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं? एक चीज़ उसमें और जोड़ देता हूँ कि कहा जाता है कोई भी काम करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अलावा और भी नाटक में तो सभी संगीत का भी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन पढ़ना, क्योंकि पढ़कर जो आता है तो तैयारी कुछ अलग किस्म की होती है, तो आप इतने साल हो गए आपको 50 साल से ऊपर, तो क्या फ़र्क आपको नज़र आता है?
1: देखिए जब हम नाटक की शुरुआत किए थे उस समय देश में टाइपराइटर था, टाइप लोग करते थे, अब टाइपराइटर कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया, हाँ अब कंप्यूटर आ गया, ठीक है ना, अब कंप्यूटर पर लोग टाइप करने लगे, अब धीरे धीरे कंप्यूटर भी गुम हो रहा है और मोबाइल आ गया, मोबाइल पे लोग बोल के हाँ टाइप कर ले रहे हैं, उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, उससे काम करते हैं। अंतर यही है कि पूरा टेक्निक चेंज हो गया, हाँ अब तो क्या LED आ गया, तो ये वो आ गया, लाइट वो लाइट आ गया, ये साउंड सिस्टम आ गया, वो साउंड सिस्टम आ गया, और पहले इतना नहीं था, पहले लोग अभी जैसे स्टार्टिंग लोग करते थे पेट्रोमैक्स पे नाटक करते थे, लालटेन पे नाटक करते थे गांव गवई में, उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे लाइट आना स्टार्ट किया, लोग अपने से लाइट बनाने लगे, बॉल 1000 पावर का बॉल लगाकर ऐसे करके वो ढक्कन टीन होता था उससे लाइटिंग करते थे और अपने हाथ से उसको चलाते थे। अब धीरे धीरे देखिए कैसा टेक्निक चेंज हुआ, हाँ बड़े बड़े मिक्सर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो ऐसे ऐसे चेंज होता चला गया, तो चेंज होता गया, तो निश्चित तौर पर पहले की बात अलग थी, अभी की बात अलग है, तो ये है टेक्निकल। उस समय बहुत तो चेंजे तो आए, बहुत से चेंजे आए, पहले लोग क्या करते थे मंच बनाते थे, और हमेशा नाटक नहीं होता था, पहले किसी पर्व त्यौहार रीति ये होता था, जैसे दुर्गा पूजा हो रहा है, दीपावली हो रहा है, उस समय होते थे, अभी क्या है अब हॉल बन गया, बहुत सारे प्रेक्षा गृह खुल गए नाटक के लिए, अब लोग उसमें लाइट है, साउंड है, सब है, अब जाते हैं लोग मंच पे करते हैं नाटक।
0: सर आखिरी सवाल, जो नए युवा रंगकर्मी आना चाहते हैं तो उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो किन बातों का ख्याल रखें, और दूसरा क्या, जैसे आपने कहा कि आपने पूरे जीवन नाटक ही किया, घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि भाई नौकरी करो इससे क्या होगा, पहले तो ज़्यादा ही होता था अब शायद, कि तो क्या इसमें इनकम भी लोगों की हो जाती है, कुछ बहुत से लोग चाहते हैं सिर्फ नाटक ही करें, तो किन बातों का युवा ख्याल रख कर आए?
1: देखिए क्या है, आज के युवा पीढ़ी भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक ही बार 10-10 सीढ़ी फान के 100वें तल्ले पे पहुंच जाए, नहीं आप जब 100वें तल्ले तक आप पहुंचेगा तब तक टाइम टाइम फेस वहीं आप लुढ़क जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे, आप एक एक सीढ़ी चढ़ें, और एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे आप निश्चित तौर पे आप 100 सीढ़ी पे आराम से पहुंच जाएंगे और नाम कमाएंगे। आज के युवा पीढ़ी को हम यही कहना चाहते हैं कि वो केवल भागने की कोशिश न करें, एक दो नाटक करें, निर्देशक बनने की कोशिश करते हैं, नहीं आप पढ़िए, किताब पढ़िए, कुछ समझिए, जितने भी चरित्र उसमें हैं उसके बारे में सोचिए, उसको पहले अपने आप में इम्प्रोवाइज कीजिए, आप खुद पहले उसको देखिए, आप खुद अपने ऊपर उसका इस्तेमाल करिए, तब आप उस करेक्टर को किसी को दीजिए और उनको उस तरह से कराइए। अच्छा बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते, और पढ़ने में भी ऐसा नहीं कि एक दिन में एक घंटे में आप पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ के चल दिए नाटक को, नहीं आप उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, फिर उसका बैकग्राउंड के बारे में सोचिए, उसके म्यूजिक के बारे में सोचिए, उसके लाइट के बारे में सोचिए, उसके ड्रेस के बारे में सोचिए, उस पर रिसर्च आपको करनी होगी।
0: सर भोपाल पहले आए क्या? पहली
1: बहुत बार भोपाल आए।
0: अच्छा,
1: ये हमारा भोपाल चौथा या पाँचवा मंचन है हमारे नाटक का यहाँ पे, और यहाँ के जो भी सीनियर हैं रंगकर्मी हैं वो सबसे मेरा बहुत व्यक्तिगत परिचय है, व्यक्तिगत रिलेशन है सारे लोगों से, तो ये सारे लोग हैं, सब लोगों से मेरा बहुत अच्छा है, ये
0: सब बहुत धन्यवाद सर। और ये है नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश।
2: भोजपुर में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह की तो बात ही निराली थी।

0: सोचने का समय नहीं है महाराज। आपने क्या है, संभव है, आप नहीं जानते पर हम सब जानते हैं। तभी तो सारी बाधाओं को अपने पैरों से कुचलते हुए, भयंकर नदियों को पार करते हुए, जंगली पशुओं से युद्ध करते हुए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं महाराज। आज गौरों के विरुद्ध हर तरफ लड़ाई चल रही है। दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, सभी जगह बगावत हो रही है महाराज। दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, कानपुर के नाना साहब, कालपी के राव साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तो और महाराज लोहे से बने महावीर तात्या टोपे इस जंग के नेता हैं। क्या हमारा बिहार इस आजादी की लड़ाई में पीछे रह जाएगा? क्या शेर कुंवर सिंह की गरी जगदीशपुर का नाम गुल हो जाएगा महाराज?
1: हरगिज नहीं।
2: रणजीत सिंह, बिहार भी इस आजादी की लड़ाई में आगे आएगा। और दादाजी, आपको यहाँ का सेनापति बनना पड़ेगा।
3: दादा, हम जानते हैं स्वतंत्रता देवी बलि चाहती है, मानव रक्त पीकर वो अवश्य प्रसन्न होगी।
2: हाँ दादा,
3: घोरे अवश्य यहाँ से भागेंगे और हमारा देश अवश्य आजाद होगा। रंजीत
0: महाराज,
3: कहाँ है हमारा राजमुकुट? शीघ्र ले आइए।
0: जो क्या महाराज?
3: महाराज स्वप्न,
0: महाराज
3: हमारी दादी है आजाद जगदीशपुर का राजमुकुट है। आज से हमारे बाद आप यहाँ के राजा हुए।
2: दादा, दादा,
3: हमारे आप तो जानते हैं कि हम पुत्र पौत्र ही हैं, लेकिन हमें उसका जरा भी अफसोस नहीं है। आप ही हो मेरे योग्य उत्तराधिकारी। आज के बाद आप दिलीपपुर के ही नहीं, जगदीशपुर के भी राजा हुए।
2: लेकिन आप दादाजी,
3: हमारी चिंता छोड़िए अमर। एक बात
2: दादा
3: और सुन लो मेरे योग्य भाई।
2: हाँ दादा।
3: यही है ओ जननी जन्म भूमि, जिसे बचाने के लिए हमने अंग्रेजों से गहरी लड़ाई बोली, अपने शरीर के अंग को कुर्बान कर दिया। देख रहे हैं हमारा ये दायरा, इसे किसी दुश्मनों ने नहीं काटा है और ना ही किसी बीमारी ने इसे नष्ट किया है। इसे स्वयं हमने काटा है, मां गंगा को अपने हाथ की बलि दी है। ये स्वतंत्रता अनमोल है अमर।
2: हाँ दादा,
3: इसे बचा कर रखना होगा मेरे भाई। रखना होगा आने वाली संतान के लिए, उनके सुख के लिए।
2: दादा, दादा, मेरे प्राण के साथ यह धरोहर रहेगा, प्राण दूंगा पर आजादी नहीं।
3: बहुत और नहीं, भगवान शंकर आज हमारा यज्ञ पूरा हुआ, हमें

0: स्वर में आप शुरू में लिखा है, जगदीशपुर के बहर की एक एक ईंट, यहाँ की हरी भरी खीर, कल कल निनादनी गंगा की प्रखर धारा और भारत का शीतल पवन, युग युग तक इस देश की संतान को इस वृद्ध की वीरता के गीत सुनाया करेंगे। आइए हम और आप इस महान वीर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।
1: मगर किया जो जगदीशपुर के बूढ़े

अमर कुमार सिंह को सलाम। तो सुधीजन गुरजन ध्यान लगा के सुन ले कहानी।

यह था आज का कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें पहले आपने बातचीत सुनी वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा से, और कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आपने सुने नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश, जिसका निर्देशन किया अभय सिन्हा ने जनयोद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह में। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रचना पाठ। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रभात साहित्य परिषद भोपाल द्वारा हिंदी भवन में, जिसमें रचनाकारों ने अपनी रचनाएं सुनाई।
1: अब हम आवाज दे रहे हैं श्री अवनींद्र खरे अंशुमान साहब।
2: जीवन से बढ़कर इस जग में जीवन में कोई कमी ना थी और कोई मीठा गान नहीं है। जीवन में कोई कमी ना थी। गीतकार हूँ नियत सनातन और गीत है अपना जीवन। गाते जाओ इस जीवन को गाकर बनकर ए जग चेतन। जीवन में कोई कमी ना थी और सारा नव वीरान नहीं है। जीवन से बढ़कर इस जग में और मीठा कोई गान नहीं है। अनजाना स्वर है इस जीवन का। चाहे जो स्वर में तुम गाओ सुधा सरस है दोनों अपने। चाहे जो सुख से पी जाओ पथ अपना मंजिल अपनी। जीवन में कोई कमी ना थी विधि में भी कुछ व्यवधान नहीं है। जीवन से बढ़कर इस जग में जीवन में कोई गान नहीं है। पैर मिले हैं चलने को ये थकने का कोई अर्थ नहीं है। पथ ही जीवन सम्मुख अपने चलते जाना व्यर्थ नहीं है। पथ को ही यदि मंजिल समझो जीवन में कोई कमी न थी फिर ही अपने सुख का मुझे ध्यान नहीं है। जीवन से बढ़कर इस जग में मीठा कोई गान नहीं है और जीवन में कोई कमी नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे बीच उपस्थित हैं श्री केपी गुप्ता साहब।
3: साक्ष गिरे हैं कोई कमी नहीं थी फिर भी साक्ष गिरे हैं पर हारे नहीं हैं।
1: क्या बात।
3: पेड़ घर छूटा है पर हौसला नहीं। पेड़ घर छूटा है हौसला नहीं। अपने सीने पर बूंदों को संभालेंगे उसकी बूंदें जब गिर जाती हैं पत्तों पर। अपने सीने पर बूंदों को संभालेंगे जब तक बनेगा बेरन हवा से लड़ेंगे। जब तक बनेगा बेरन हवा से लड़ेंगे क्रूर काल से भी। यह मालूम है कि हम जमी से आए हैं और उसी के होकर रह जाएंगे। यह सच स्वीकार करना होगा नव निर्माण के लिए। और ये बूंदे नहीं हैं जल का दिल है। रखेंगे दिल से दिल पर। ये मिलन क्षणिक है पर सोचो तो यही जीवन है। आज मुलाकात है कल विछोह भी होगा और वियोग भी होगा पर प्यार जिंदा रहेगा। जमीन में दफन होकर पत्तों की तरह इस पावन धरा में अनंत काल के लिए। थैंक यू।
1: हम आवाज दे रहे हैं श्री नीरज दुबे साहब को बहुत ही सम्मान के साथ। एक बार कर्तव्य में तो स्वागत करते हैं।

0: बनूं परछाई उसकी उजली, ऐसे है उसका होना जो दूर तो सब मिट्टी, जो दूर तो सब मिट्टी हो पास खरा सोना।
1: बहुत ही सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूँ श्रीमती प्रेमशीला सिंह।

बहते चले गए। बोली भी अपनी बदली व भाषा बदल दिए, बोली भी अपनी बदली व भाषा बदल दिए। देश अपना छोड़ हम विदेशी हो गए, देश अपना छोड़ हम विदेश

0: श्री दिनेश भदौरिया सी एस साहब को। आइए सर,
1: यूं तो तुम्हारे प्यार में कोई कमी न थी।
2: क्या बात है।
1: यूं तो तुम्हारे प्यार में कोई कमी न थी, बिछुड़े हुए मिले हों वैसी नमी न थी। यूं तो तुम्हारे प्यार में कोई कमी न थी, बिछड़े हुए मिले हों वैसी नमी न थी। दिल था मेरा परिंदा यूं आसमान का, दिल था मेरा परिंदा यूं आसमान का, पैरों के नीचे फिर भी मेरे जमीन थी। पैरों के नीचे मेरे फिर भी जमीन थी। तारे थे आसमां था, आगोश में थे हम तुम। तारे थे आसमां था, आगोश में थे हम तुम। रफ्तार जिंदगी की लेकिन थमी न थी। रफ्तार जिंदगी की लेकिन थमी न थी। थे इंतजाम सारे, खुशबू थी रंगतें थीं। थे इंतजाम सारे, खुशबू थी रंगतें थीं, पर दरमियां हमारे बस बरहमी न थी। बस दरमियां हमारे बस बरहमी न थी। थे इंतजाम सारे, खुशबू थी रंगतें थीं, पर दरमियां हमारे बस बरहमी न थी। पहचान थी पुरानी, रस्मों रिवाज भी थे। पहचान थी पुरानी, रस्मों रिवाज भी थे। रुखसत के वक्त वाली लेकिन गमी न थी। रुखसत के वक्त वाली लेकिन गमी न थी। धन्यवाद।
0: श्री उमेश गर्ग आरोही साहब, बहुत ही सम्मान के साथ एक बार करता है स्वागत कर।
3: तुम हमारे सामने बैठी रहो बस, तुम हमारे सामने बैठी रहो बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए अब कहीं कुछ। तुम मेरे कानों में जब कुछ बोलते हो, तुम मेरे कानों में जब कुछ बोलते हो, मैं नहीं सुनता किसी की तब कहीं कुछ। और मैं हवा के रुखों को अपनी तरफ मोड़ लूंगा, मैं हवा के रुखों को अपनी तरफ मोड़ लूंगा, खुशबू अपनी तुम लुटा दो अब कहीं कुछ। तुमको ऊंचाइयों पर अभी कुछ जाना है, और ऊंचा मैं तुम्हें उठाऊंगा अब कहीं कुछ। वो जिसे समझा नहीं सकता कभी अब, वो जिसे समझा नहीं सकता अभी अब, थी वो मेरी है वो मेरी अब नहीं कुछ। और जब थे तुम साथ हमारे कोई कमी ना थी, जब थे तुम साथ हमारे कोई कमी ना थी, चले गए तुम नहीं रहा अब कहीं कुछ।
0: धन्यवाद। जनाब ताहा अल हुसैनी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे तशरीफ लाएं।

पर जिंदगी बगैर तेरे जिंदगी नहीं।

0: और अब मैं आवाज दे रहा हूँ श्री प्रदीप कश्यप जी को बहुत ही सम्मान के साथ।
1: गहरे थे जख्म, दर्द में कोई कमी न थी। गहरे थे जख्म, दर्द में कोई कमी न थी। हमने सुखों की चाह भी दिल में रखी न थी। और बर्बाद हो गए थे जो हम जिसके प्यार में, धोखे की हमको उससे उम्मीद ही न थी। वो कांटों ने चुपके दर्द ना जिसको कभी दिए, गुलशन में एक भी कली ऐसी खिली न थी। और जिस ओर हमने दीप जला करके रख दिए, उस ओर रात की ये घनी तीरगी न थी। और जिसने हमारे हमारा साथ मुसीबत में है दिया, उस शख्स से हमारी कभी दोस्ती न थी। वो कश्यप सभी को अपना सगा मानते रहे, नफरत तो हमने दिल में जरा भी रखी न थी, बहुत।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है।
1: अब आपके सम्मुख दो निर्गुणी पद सुनाती हूँ। पहला पद गोरखनाथ जी का है। दोनों ही पद ऐसे हैं जिन्हें मालवा में

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थीं कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

स्थापना रंग महोत्सव 20 जून तक आयोजित किया गया है, जिसमें 17 जून की शाम आले माटी आले राज की प्रस्तुति दी गई, जिसके निर्देशन किया कन्हैयालाल कैथवास ने। आले माटी आले राज यानी मेरी मिट्टी मेरा राज। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर स्थापना रंग महोत्सव 4 दिनों तक चलेगा। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।

0: सिडोलिंटा,
1: अरे बाबा कह रहे हैं सिडोली करना होगा।

बचपन उनसे बच के यहीं पर आके छुपे थे जब नहीं।

सुंदर साल को पेड़, नदी नर्मदे निर्मम धारो, गाय गीत दापती प्यारो, कितनी भारी बनो आकृति, झुके विंध्य बड़े कीर्ति, हे बड़ा दे।

0: आंखें दे दे, देखकर रूह को माथा एक एक मुंह और एक नाक बना। हे बड़ा देव, रख जीव का नाम मानुष और फूक दे उमें प्राण।
1: भक्त, तू मेरा परम भक्त, तुझसे करूं मैं चिंता व्यक्त। मन धन कर मन सृष्टि बनाऊं तो मानव रच उस पे क्यों आग लगाऊं।
0: हे बड़ा देव, तू ए ही जगत का स्वामी, बिन तेरी इच्छा करे कौन मनमानी। काम कला को लागे व्यर्थ और मानव बिनी का क्या है। दास में खुद को तब ही मानू जब तो से मानुष का उद्गम जानू।
1: भक्त, ये तेरी कैसी इच्छा, अरे क्यों मांगे हमारों की भिक्षा।
2: चलो।

माटी दे दो फेंक।

ये थी रेडियो रिपोर्ट स्थापना रंग महोत्सव की। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट। आइए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में आप सुनते हैं भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी, जो हो चुकी हैं और जो होने वाली हैं।

साहित्यिक मंच नशिस्ते द्वारा गुरुवार को बैठक द आर्ट हाउस में उजाले यादों के बशीर बद्र के नाम एक शाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में मशहूर शायर बशीर बद्र के कलाम का पाठ कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही रचनाकारों ने अपनी मौलिक रचनाओं से भी श्रोताओं को रूबरू कराया। कार्यक्रम की खास बात ये थी कि बशीर बद्र द्वारा युवावस्था में भविष्य के गजल पढ़ने और लिखने वालों के नाम लिखा गया एक खत भी पढ़ा गया, जिसे श्रोताओं ने बेहद ध्यान से सुना। मनस्वी अपर्णा ने बशीर बद्र को समर्पित पंक्तियां पढ़ी। उसे बस अदीब न जानना कि वो अपने आप में दौर था, हो जहां भी जिक्र बशीर वहां सर झुका के सुना करो। वहीं निवेश साहू ने अपनी गजल में पढ़ा, चाहने वालों के हर मंजर में हूँ, वरना घर में हूँ न दफ्तर में हूँ। प्रशस्त विशाल ने जीवन के संघर्ष और उम्मीद को स्वर देते हुए सुनाया, फैसला जो भी हो शुक्रिया जिंदगी, तूने लड़ने का मौका दिया जिंदगी, एक दिन रोशनी तुझको ले जाएगी, जितना भी हो सके मुस्कुरा जिंदगी। कार्यक्रम में शिवाजी राय, मशगूल, मेहरबानी, औरंगजेब आजम, अपर्णा पात्रिकर, इंसाफ सिरोंजी और एस एम मुबाशिर सहित कई रचनाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। राजधानी भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 21 जून को संगीत संध्या का आयोजन होगा। कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होगा। इस संध्या में भरतनाट्यम में स्मिता महाजन और उनकी टीम रहेगी, तो वहीं शास्त्रीय संगीत में प्रदक्षिणा भट्ट शामिल हो रही हैं। यह आयोजन विश्व योग और संगीत दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग के जरिए कराया जा रहा है। प्रवेश पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं होगा। शहर के कला प्रेमियों के लिए 27 जून 2026 की शाम यादगार होने वाली है। साहित्यिक और संगीतमय कार्यक्रम नर्म लहजा 2.0 का आयोजन किया जाएगा 27 जून को। श्रोताओं, इस आयोजन में शहर के उभरते कवियों और संगीतकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक काव्य और पारंपरिक संगीत के माध्यम से भोपाल की सांस्कृतिक जड़ों को जीवंत करना है। युवा कलाकारों को एक पेशेवर एक्सपोजर प्रदान करेगा। नागरिकों के लिए यह आयोजन एक सुखद अनुभव साबित होगा। इतिहासविद और मध्य प्रदेश राज्य गजेटियर एवं अभिलेखागार के पूर्व संचालक शंभु दयाल गुरु की स्मृति में सप्रे संग्रहालय में शंभु दयाल गुरु इतिहास प्रभाग की स्थापना की गई है। संग्रहालय के नवीन प्रभाग का लोकार्पण संग्रहालय के स्थापना दिवस 19 जून को सुबह 10:30 से होने जा रहा है। संग्रहालय के निदेशक अरविंद श्रीधर ने बताया कि स्वर्गीय शंभुदाल गुरु के विशाल साहित्य को गुरु परिवार ने भेंट किया है। मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल होंगे। अध्यक्षता तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा करेंगे। सप्रे संग्रहालय द्वारा तैयार सचल प्रदर्शनी प्रस्तुत की जाएगी। इस अवसर पर 5 कर्मवीर सम्मानित किए जाएंगे। सम्मान पाने वालों में डॉक्टर सुभाष अत्रे, संतोष चौबे, श्रीराम तिवारी, नूरल हसन नूर शामिल होंगे।

आइए अब आपको ले चलते हैं सीधे निफ्ट में। निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड जनजातीय कार्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 19 जून से आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। आदिरंग परियोजना के तहत आयोजित ये महोत्सव प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और हस्तशिल्प को नया मंच प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह आज शाम 4 बजे निफ्ट परिसर में होगा। मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके होंगे, जबकि मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। निफ्ट द्वारा आयोजित यह महोत्सव जनजाति शिल्पकारों की कारीगरी और रचनात्मक परंपराओं का संगम होगा। स्थानीय शिल्पकारों को प्रोत्साहन देना और नई पीढ़ी को जनजातीय कला की बारीकियों से रूबरू कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। विभिन्न क्षेत्रों से आए हस्तशिल्पी इसमें हिस्सा लेंगे।

वहीं दूसरी ओर नाट्य विद्यालय के 15वें स्थापना के दूसरे दिवस पर गुरुवार को नाटक रानी दाई का मंचन किया गया। यह प्रस्तुति भ्रमणशील कार्यशाला के तहत इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नाट्य विभाग में तैयार की गई। नाटक का लेखन नंद किशोर तिवारी ने किया, जबकि संगीत परिकल्पना और निर्देशन डॉक्टर योगेंद्र चौबे ने संभाला। रविन्द्र भवन में आयोजित स्थापना रंग महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी लोक कथा पर आधारित इस नाटक में पारंपरिक गीत संगीत नृत्य और लोक शैली का प्रभावी उपयोग देखने को मिला। नाटक की कहानी डबरा के राजा नारायण सिंह, उनकी पत्नी लक्ष्मण और पुत्र राघव के इर्द गिर्द घूमती है। संबलपुर में कार्तिकी से प्रेम करने वाले नारायण सिंह की जिंदगी तब बदल जाती है जब लक्ष्मण द्वारा भेजा गया हीरा मंतोता उन्हें अपने परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। नाटक में प्रेम, करुणा, ममता, विश्वास और स्त्री पुरुष के अंतर्द्वंद को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया।

लोक तत्वों के साथ आधुनिक सोच का मेल इसकी खासियत रहा। नारायण सिंह की भूमिका में उज्ज्वल सिंह और लक्ष्मण के किरदार में ज्योत्सना कटारिया ने प्रभावशाली अभिनय करके दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम रेडियो आजादी से बोल रहे हैं, देश का चैनल, देश के लिए।

श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं। मिक्सलार एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी

0: अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही देर में, हिंदुस्तान हमारा। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा रानी अहिल्याबाई होलकर पर। आप बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: बांदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: भारत की वीरांगनाओं में अहिल्याबाई का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद जब वे मालवा की शासक बनी तो राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। राजकोष खाली था और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उस पर उनके महामंत्री ने सैनिक विद्रोह करा दिया, लेकिन अहिल्याबाई बुद्धिमान भी थी और साहसी भी। उन्होंने विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। उसके बाद शुरू हुआ राज्य में सुधार का सिलसिला। उन्होंने न सिर्फ सेना का नए ढंग से गठन किया बल्कि नारी सेना को भी सुदृढ़ बनाया। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर नए सभासद नियुक्त किए गए। उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिनमें कलकत्ते से बनारस तक की पक्की सड़क भी शामिल थी। सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनाकर लुटेरों को नियंत्रित किया गया। इससे राज्य का व्यापार बढ़ा और खाली राजकोष भरने लगे। रानी अहिल्याबाई एक धर्मपरायण शासक थीं। उनके राज्यकाल में ही सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। मालवा के लोग आज भी अहिल्याबाई को याद करते हुए उनके गीत गाते हैं। राजबाड़ा और होलकर शासकों की छत्रियां आज भी अहिल्याबाई के यश और गौरव का गान कर रही हैं।
3: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओए मेरे देश की धरती ओ सल्लो, ए क्या किताब में मुंह डाल के बैठा है? अरे काम कौन तेरा ताऊ करेगा हैं?
4: क्या कक्का, फिर कर दिया डिस्टर्ब। बड़े मुश्किल से आधी किताब पढ़े थे, अब फिर शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
3: अबे चल, ओए बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है हैं? अरे मूड़मती, तेरे ताऊ ने पढ़ी है कभी कोई किताब हैं? अरे जरा दिखा तो, कौन सी पोथी बांच रहा, दिखा जरा, दिखा।
4: छोड़ो ना काका।
3: अरे दिखा तो हैं? वीरांगना अहिल्याबाई हैं? तो ये घोंट रहा था 2 हफ्ते से।
4: आओ काका,
3: चल चल सुना क्या पढ़ा, चल बता, चलो जा शुरू।
4: हम कहाँ पढ़े?
3: अरे
4: कहा तो आप डिस्टर्ब कर दिए, अब शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
5: अरे कक्का राम राम।
3: राम राम राम राम राम राम।
5: ओए सल्लू, कैसा है तू?
4: अरे मस्त, एकदम चकाचक।
3: अरे आजा राजू, आजा। अरे ये सल्लू कैसा होगा भैया, हमेशा की तरह आराम से है। खैर वो सब छोड़, ये बता कि इस बार इधर को कैसे?
4: अरे बस कक्का, छुट्टियों में जरा घर आया था।
3: हाँ।
4: कॉलेज शुरू हो गया ना, तो वापस इंदौर जा रहा हूँ। हाँ। अब देखो बस कब तक आती है कक्का।
3: अच्छा, तो इंदौर जा रहे हो हैं? फिर तो भैया बहुत सही टाइम पे आए हो तुम। अभी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई की तो बात चल रही थी।
4: देवी अहिल्याबाई?
3: हाँ।
4: अरे उनके नाम पे तो कक्का इंदौर में यूनिवर्सिटी भी है।
3: सवा सवा। अरे तुम मिले जानकार है। तो चलो भाई, जरा हमारे सल्लू को कुछ बताओ उनके बारे में, बताओ।
4: अरे काका आप तो टांगी खींचने लगे, मुझे क्या मालूम उनके बारे में? अरे कुछ भी नहीं मालूम।
3: लो फिर वही ढाक के 3 पात। अरे ऐसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। अरे भाई इंदौर में राजबाड़ा गए हो कभी?
4: अरे वहाँ तो रोज अपना उठना बैठना है काका।
3: अरे भैया राजबाड़ा और उसके पास बनी छतरियाँ अहिल्याबाई होलकर के राजवंश की निशानी है।
4: ऐसा?
3: हाँ। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल डब्बा निकले यार। अब कौन पूरी करेगा अहिल्याबाई की कहानी?
4: अरे आप और कौन करेगा?
3: अरे मैं। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, अरे ढेर सारा काम पड़ा है।
4: अरे, अरे, मैं नहीं। कक्का कक्का सुनो तो, सुना दो जरा, मजा आ जाएगा।
3: अब तुम अब इतना जोर दे रहे हो तो सुनानी ही पड़ेगी। तो भैया कान लगा के सुनियो कहानी अहिल्याबाई की। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी के मध्य में। माणकोजी शिंदे के एक गरीब मराठा परिवार में देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ।

0: लाखों में एक है हमारी अहिल्या, बिल्कुल राजकुमारी।
1: हाँ, पर राम जाने क्या होगा इस राजकुमारी का। अरे, हम ठीक से इसका लालन पोषण तो कर नहीं पाते हैं, इसका ब्याह कैसे करेंगे?
0: तू चिंता मत कर, जैसे इतनी बड़ी हुई है वैसे ही एक दिन पराए घर भी चली जाएगी। ठाट से इसका ब्याह करूंगा एक राजकुमार से, देखना एक दिन महारानी बनकर रहेगी हमारी अहिल्या।
1: कब तक इन बातों से मन बहलाओगे? पूरे 12 बरस की हो गई है अहिल्या, समय आ गया है कि विवाह योग्य कोई वर देखो।
2: बाबा, मैं जल चढ़ाने शिव मंदिर जाऊं?
0: हाँ बिटिया, जा, संभल के जाना, शिव जी ही इसकी नैया पार करेंगे।
3: हाँ, तो उस दिन शिव मंदिर के पास मालवा के राजा मल्हार राव होलकर सैनिक डेरा जमाए बैठे।

0: कितना मधुर कंठ है, मुख पर राजसी तेज है। मंत्री जी, कौन है यह दिव्य बालिका?
1: महाराज, प्रतीत होता है निकट ग्राम की ही कोई बालिका है। अभी पूछता हूँ। बालिके, बालिके।
2: प्रसाद।
0: चिरंजीवी भव। पुत्री, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, अहिल्या।
0: अति सुंदर।
2: क्षमा करें, विलंब हो रहा है, माँ प्रतीक्षा करती होगी।
0: महामंत्री, शीघ्र पता लगाएं ये संस्कारी बालिका किस ग्राम की है, किस कुटुंब की है। हमने अहिल्या को हमारे पुत्र खंडू जी की वधू के रूप में चुना है। बालिका के माता पिता को शीघ्र न्योता भेजें।
1: ऐसा ही होगा महाराज।
3: बहुत बहुत बधाई हो।
4: बधाई हो, बधाई हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है।
0: क्या, वाह, सारे राज्य में उत्सव की घोषणा करा दी जाए। सबको महाभोज के लिए आमंत्रण भेजो।
1: जैसी आज्ञा महाराज।
5: तो अहिल्या बाई के आने से महल में खुशियां गूंजने लगी। पुत्र भाले राव के बाद महारानी ने पुत्री मुक्ताबाई को भी जन्म दिया। सब कुछ खुशी मंगल से चल ही रहा था कि मालवा पड़ोसी राज्य से युद्ध में फंस गया।
6: क्या कहा काका, युद्ध में फंस गया?
5: हाँ बेटा सल्लू, युद्ध में फंस गया।
1: महाराज, सूचना मिली है कि आपके पुत्र राजा खंडू जी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
7: क्या? नहीं, पुत्री अहिल्या।
1: महाराज, स्वयं को संभालें। यदि हम कमजोर पड़े तो मालवा को हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी।
8: महाराज, मैंने निश्चय किया है, मैं राजा जी की चिता में सती बनूंगी।
0: नहीं अहिल्या, राज को तुम्हारी आवश्यकता है, हम तुम्हें सती होने की अनुमति नहीं देते। महामंत्री, राजसी तलवार निकाली जाए। सैनिकों को मोर्चे पर डटे रहने को कहो। सेना की बागडोर अब हम संभालेंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: पता है फिर क्या हुआ सल्लू? कुछ समय बाद महाराज मल्हार राव की मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई का पुत्र भाले राव भी बीमार रहने लगा। अरे बहुत इलाज करवाया मगर वो भी काल का ग्रास बन गया। अब राज की पूरी जिम्मेदारी अहिल्याबाई के कंधों पर आ गई थी।
1: सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्याबाई सभा में पधार रही हैं। सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्याबाई सभा में पधार रही हैं।
2: राजकोष खाली हो रहा है, राज्य के अधिकारी प्रजा के शोषण में लिप्त हैं। अब इन अव्यवस्थाओं पर लगाम लगानी ही होगी।
3: न्याय करे महारानी, न्याय करे।
2: क्या बात है, निर्भय होकर कहो।
3: महारानी, राज्य में व्यापार करना दूभर हुआ जा रहा है। अधिकारी मनमाने कर वसूलते हैं, लूट मची है लूट। ऐसा अन्याय तो कभी नहीं हुआ महारानी, कभी नहीं हुआ।
2: गंगाधर जी।
4: जी महारानी।
2: शीघ्र पता लगाया जाए कि मसला क्या है, दोषी अधिकारी को उसके पद से मुक्त कर दिया जाए। तुम आश्वस्त रहो फरियादी, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा।
3: जय हो महारानी, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए महारानी। अरे ऐसा न्याय कभी नहीं देखा भैया, ऐसा न्याय कभी नहीं।
5: अरे पकड़ो उसको। अरे कहाँ भागा चला जा रहा है?
6: अरे कहाँ चला जा रहा है? पकड़ो।
5: बचने ना पाए।
6: अरे अंदर से घेर लो।
5: बार में सीधे घुस गया।
7: उतर से।
5: छोड़ना मत।
6: पकड़ लो।
2: क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो उसे। कौन हो तुम?
5: महारानी जी, ये निचली जात का है, पता नहीं कैसे घुस गया यहाँ।
2: हमने प्रश्न आपसे नहीं पूछा था।
5: क्षमा करें।
8: महारानी जी की जय हो।
2: क्या नाम है तुम्हारा और इस तरह आने का कारण? अरे निर्भय होकर कहो।
8: महारानी जी, हम भकलू हैं महारानी जी, निचली जात के हैं, महेश्वर के पास नर्मदा जी के किनारे रहते हैं महारानी जी।
2: क्या समस्या है तुम्हारी?
8: महारानी जी, हमारी बस्ती में आपके सैनिकों ने हाहाकार मचा रखो है, लोगों और लुगाइयों को पीटा थे, छोरों को मारा थे महारानी जी। हमारे पास देने के लाने कच्छू नहीं है, हमारो जी वो मुश्किल कर दो है, दरबारी आपसे मिलन नहीं दे। हम जाएं तो कहां जाएं महारानी जी, आपकी शरण में आए हैं।
2: गंगाधर जी।
9: जी महारानी जी।
2: ये सब क्या हो रहा है हमारे राज्य में? हमारी प्रजा को हमसे मिलने की अनुमति नहीं।
9: महारानी जी, आपका समय इन छोटी मोटी घटनाओं में उलझने के लिए नहीं है, फिर ये कोई बड़ी बात भी तो नहीं है।
2: हमारी प्रजा परेशान है और आप कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमसे मिलने के लिए किसी प्रकार की रोक टोक न लगाई जाए।
9: जी महारानी जी।
2: सेनापति जी।
10: जी महारानी जी।
2: ये कौन महेश्वर की बस्तियों में उपद्रव मचा रहा है?
10: महारानी जी, गंगाधर जी ने कुछ सैनिकों को वहाँ कर वसूलने के लिए भेजा है।
2: क्या, हमारी अनुमति के बिना ही भेज दिया? तुरंत सेना वापस बुला ली जाए। छोटों को सताने वालों को हमारे कोप का भाजन बनना ही होगा, और निर्बलों को सताने से बड़ा और कोई पाप नहीं। तुम निश्चिंत रहो भकलू, हमारे द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे।
11: देवी अहिल्याबाई का न्याय।
12: हमारे जय हो।
11: अहिल्याबाई का न्याय।
12: जय हो।

0: महारानी जी, यदि बात ना जचे तो क्षमा करें, लेकिन प्रजा एक स्त्री प्रशासक के प्रति हमेशा आशंकित रहती है, और फिर शत्रु भी तो हमें कमजोर समझ के मौके का लाभ उठा सकते हैं।
1: गंगाधर, क्या कह रहे हैं आप?
0: महारानी, मेरा आशय आपके सामर्थ्य पर प्रश्न खड़ा करने का नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि भला हो यदि आप एक दत्तक पुत्र गोद ले लें और उसी की संरक्षिका के रूप में प्रशासन की देखरेख करें।
1: नहीं गंगाधर, अब हर मोर्चे पर हमें स्वयं आगे आना होगा। ये वक्त नहीं है कि किसी पर भी भरोसा किया जा सके।
0: आप कहती हैं तो ठीक ही होगा महारानी जी, मैं तो मालवा के भले की ही सोचता हूँ हमेशा।
1: मालवा का हित सोचने के लिए हम जीवित हैं गंगाधर। सभा समाप्त की जाती है।
2: महारानी जी,
1: क्या हुआ? ये घबराहट कैसी है?
2: महारानी जी, गंगाधर ने एक सैनिक टुकड़ी के साथ विद्रोह कर दिया। महारानी जी,
1: तो हमारी आशंका सच ही निकली। सेना तैयार करो, गंगाधर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे।

0: हाँ तो राजू, महारानी अहिल्याबाई ने गंगाधर के दांत खट्टे कर दिए। अरे इस घटना के बाद भी कई विद्रोह हुए, पर अहिल्याबाई विद्रोह दर विद्रोह कुचलते हुए आगे बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। अब मालवा की वाहवाही दूर दूर तक फैल रही थी। अरे सल्लू, ए तुझे नींद आ रही है क्या बे? हैं?
1: अरे नहीं काका, हम बड़े गौर से सुन रहे हैं काका।
0: अबे तू कम से कम काम पे ध्यान लगाता तो तेरी वाहवाही ढाबे तक तो रहती बे।
1: कैसी बात करते कक्का।
0: खैर चल सुन ध्यान से।
1: हाँ फिर आगे क्या हुआ कक्का?
0: हाँ तो मालवा को देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता था। मालवा को हड़पने की साजिश रचने वालों में एक और नाम था, राघोबा पेशवा। हाँ
2: महारानी जी, राघोबा पेशवा की सेना के सामने हम नहीं टिक सकेंगे। उनकी सेना संख्या में हमसे 3 गुनी है।
3: सेनापति तुकोजी, आप आश्वस्त रहें, बस जैसा हम कहते हैं करते जाएं। राज्य की स्त्रियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए, जिसकी सीधी देखरेख स्वयं हम करेंगे। जय श्री

0: यह तो उपहासजनक है। भला स्त्रियों और हम में क्या मुकाबला? हम उनको रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही।
1: नहीं नहीं सेनापति, नहीं। इस तरह से दोनों ही ओर से पराजय हमारी ही होगी। स्त्रियों को कुचलकर हम कौन सा यश पा जाएंगे? जनता हम पर थू थू करेगी। और मान लो कि हम पराजित हुए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे।
0: पर पेशवा साहब, और कोई भी चारा नहीं है। आप ही बताएं, ऐसे में हम क्या करें?
1: सेना को पीछे हटने का आदेश दिया जाए।
0: पर पेशवा साहब, मालवा की गद्दी?
1: हमें अपना आत्मसम्मान खोकर गद्दी हासिल नहीं करनी। मोर्चा वापस लिया जाए।
0: जैसी आज्ञा पेशवा जी की।

0: मीरा बाई राजमहल में पधार रही हैं।
1: महारानी जी, बहुत से राजपूत हमारे विरुद्ध हो गए हैं, हमारी उपलब्धियों से जलकर हमें लुटेरा कह रहे हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गए हैं।
2: क्या जिस महारानी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में धर्म की ध्वजा फहराई उनका राज्य लुटेरा है? महारानी अहिल्याबाई देवी हैं देवी। देवी अहिल्याबाई ने तो हमेशा जनता की भलाई सोची है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य क्यों न हो। महारानी ने सर्वत्र सार्वजनिक निर्माण करवाए हैं, ये लोग महारानी की कृपा दृष्टि के योग्य नहीं।
3: शांत सेनापति शांत, सारे भारत की जनता एक है, द्वेष तो राजा और नवाबों में है। ये एक दूसरे की निंदा की आड़ में एक दूसरे के प्रदेश को बुरा बतलाते हैं। ये प्रदेश छोटा है वो बुरा है, हमारा प्रदेश बड़ा है और अच्छा है, वे जंगली हैं हम श्रेष्ठ हैं। अरे इस भेदभाव का विष हम सबको किसी दिन नरक में धकेलेगा। इस अराजकता की स्थिति में आपस में लड़ मरने से अच्छा होगा कि हम एकजुट होकर सौहार्द से रहें।
1: महारानी जी, इन षड्यंत्रों को लेकर हमारी क्या नीति होगी?
3: राज्यों के प्रति हमारी नीति मैत्रीपूर्ण होगी महामंत्री जी। युद्ध केवल जनधन की हानि देते हैं, आप सतही स्तर पर षड्यंत्रों को सुलझाने का प्रयत्न करें।
1: किंतु इस तरह शत्रु हमें दुर्बल समझने की भूल कर सकता है।
3: हमें लोगों के हृदय पर राज करना है महामंत्री, इसके लिए हम युद्ध की त्रासदी को टालने का हर संभव प्रयास करेंगे। किंतु पानी ऊपर चढ़ने पर हम भी शत्रु को धूल चटा सकते हैं।
1: जी समझ गया।
4: अरे क्या बात है काका, मान गए काका। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
5: हाँ सल्लू, महारानी ने अब सेना को मजबूत करना शुरू किया, और पता है नारी सेना बढ़ती चली गई। अब कोई मालवा के खिलाफ फन नहीं उठा सकता था। महारानी ने अब अपना सारा ध्यान मालवा के विकास में लगाना शुरू किया। हाँ
3: के लिए आवश्यक है कि दूसरे राज्यों से हमारा संपर्क बढ़े, राज्यों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाए, प्रजा के सहयोग से हमारे कोषागार में पर्याप्त धन है, इसका प्रयोग सार्वजनिक निर्माण कार्यों में किया जाएगा।

0: राहगीरों के लिए धर्मशालाएं प्याऊ बनवाए जाएं। और हाँ, अब कोई भी फरियादी किसी भी मसले को लेकर सीधे हम तक आ सकता है।
1: माना नहीं किया।

0: महारानी ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए। अरे उनके ही शासन काल में कलकत्ते से लेकर बनारस तक पक्की सड़कें बनवाई गईं। अहिल्याबाई बहुत धार्मिक रही। उन्होंने सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर बनवाया और बनारस में विश्वेश्वर मंदिर की स्थापना की थी।
1: वाह कक्का,
0: हाँ
1: महारानी तो बड़ी महान थी।
0: हाँ महान तो थी बेटा। अहिल्याबाई ने मालवा पर 30 सालों तक राज किया था।
1: 30 सालों तक?
0: हाँ, लेकिन 13 अगस्त 1795 को उन्होंने दुनिया से विदा ली।

0: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं आपका दोस्त दीपक निमा
2: और मैं नूपुर शर्मा।
1: दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में। श्रोताओं, संगीत की अगर बात हो और उसमें भी गायन की, तो अपनी विशेष भाव भंगिमाओं के साथ गायन शैली, अपूर्व स्वर और आकर्षक भाव व्यक्तित्व की बात करने पर अग्रिम पंक्ति में नाम आता है पंडित भीमसेन जोशी का। उनका नाम, स्वर, अंदाज और व्यक्तित्व, जब ये सब मिलता है तो बस जहन में एक ही नाम उभर कर आता है, पंडित भीमसेन जोशी।
2: हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं के जीवन, गायन और व्यक्तित्व की बात करते हैं। श्रोताओं, 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन पर विविधता में एकता को लेकर संगीत, खिलाड़ी और सिने कलाकारों को लेकर दो छोटे छोटे लेकिन ऐसे कैप्सूल बनाए गए हैं जो हम दर्शकों के मस्तिष्क पटल पर आज भी अंकित हैं। इसमें पंडित भीमसेन जोशी के स्वर के साथ उसका आरंभ होता था। पहला है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, और दूसरा बजे सरगम हर तरफ से गूंजे बनकर देश राग।
1: हाँ, इन दोनों में सभी कलाकारों में से पंडित भीमसेन जोशी की उपस्थिति उनके बुलंद सुरीले स्वर के साथ लोगों के कानों में आज भी गूंजती है, और दूरदर्शन पर इसके आते ही घर में बैठे दर्शक पंडित भीमसेन जोशी के गाए शब्दों के अनुसार उनके स्वर में अपना सुर अवश्य मिलाते थे। यहाँ जो संगीत रसिक हैं, वे तो पंडित जी को जानते और पहचानते ही हैं, लेकिन दूरदर्शन का वो दर्शक वर्ग जिसका संगीत के स्वरों से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं, वे भी जोशी जी की आवाज में अपना सुर मिलाकर उसे हमारा सुर बना ही देते थे। ये बड़े ही यादगार लम्हे होते थे।

0: कर्नाटक के गडक नामक स्थान में स्थानीय हाई स्कूल के हेडमास्टर गुरुराज जोशी, जो कन्नड़, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे, और अपने छोटे भाई जी वी जोशी, जो उस समय के एक चर्चित नाटककार थे, उन्होंने धारवाड़ की मनोहर ग्रंथमाला को प्रोत्साहित भी किया था। इन दोनों भाइयों के पिता एक प्रसिद्ध कीर्तनकार थे और मिलजुल कर रहते थे। अब बात करते हैं 4 फरवरी 1922 की। परिवार के बड़े बेटे गुरुराज जोशी के घर 16वीं संतान का जन्म हुआ। बेटे के रूप में नाम रखा गया भीमसेन। अपनी संगीत में रुचि की बात को लेकर पंडित भीमसेन जोशी ने स्वयं एक साक्षात्कार में कहा था कि हर भारतीय घर में शाम को भगवान के सामने बत्ती लगाते हैं तो कुछ गाना वाना भी गाते हैं। मेरी माँ भी रोज ऐसा ही करती थी और उनको सुनकर मुझे भी गाने का शौक उत्पन्न हुआ।
1: बचपन में ही बालक भीमसेन लोक वाद्य, लोक सुर के प्रति इतना आकर्षित हो जाते थे कि वो उन लोक गायकों के पीछे कई मील तक दौड़ते चले जाते थे, और फिर जब वो थक जाते थे तो वहीं बेसुध होकर पड़े रहते थे। यानी संगीत के स्वरों का असर उनके मन, मस्तिष्क और आत्मा पर होना बचपन से ही शुरू हो गया था। जिस पाठशाला में वो पढ़ते थे उसी के रास्ते में ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की एक दुकान भी पड़ती थी, और उस दुकान पर ग्राहकों को जब गाने सुनाए जाते थे तब बालक भीमसेन भी खड़े हो जाते और उनको बड़ी तल्लीनता से सुनने लगते। एक दिन उसी दुकान पर उन्होंने उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का गाया गाना सुना। ये थी राग बसंत पर आधारित फगवा ब्रज देखन को, और साथ ही पिया बिना नहीं आवत चैन ठुमरी सुनी। संगीत का असर तो उस बालक पर था ही, इस ठुमरी ने उसे और बढ़ावा दिया। पुत्र की संगीत में रुचि होने का पता चलने पर पंडित भीमसेन जोशी के पिता ने अक्सरा चन्नप्पा को भीमसेन का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। एक बार पंचाक्षरी गवई ने भीमसेन को गाते हुए सुनकर चन्नप्पा से कहा था, इस लड़के को संगीत सिखाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसे तुम किसी बेहतर गुरु के पास भेजो।
0: पंडित भीमसेन जोशी को बचपन से ही संगीत के प्रति लगाव था। खास तौर पर वे हारमोनियम और तानपुरा के प्रति आकर्षित थे। यही आकर्षण उनके जीवन की लगन बन गया और इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपना करियर बनाने का उनका दृढ़ संकल्प और मजबूत होता चला गया। मात्र 11 वर्ष की आयु में उनकी औपचारिक शिक्षा ग्वालियर के माधव संगीत विद्यालय में शुरू हुई, लेकिन उनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव अपने गुरु सवाई गंधर्व का रहा, जो दरबारी संगीतकार अब्दुल करीम खान के शिष्य थे। और फिर सवाई गंधर्व के मार्गदर्शन में 1936 से 1940 तक भीमसेन जोशी ने अपनी गायन शैली को और निखारा और भारतीय शास्त्रीय संगीत की पारंपरिक मधुर शैलियों और रागों पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे उन्हें संगीत के क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद मिली। उनके गुरु सवाई गंधर्व ने अपने इस शिष्य को भारत और विश्व में सर्वाधिक जाने माने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिनिधि बनने का प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही पंडित भीमसेन जोशी ने हारमोनियम का प्रशिक्षण सामचार्य जोशी से प्राप्त किया।
1: श्रोताओं, ऐसा भी कहा जाता है कि जब बालक भीमसेन अपनी संगीत की शिक्षा लेने के लिए अपने गुरु सवाई गंधर्व के पास पहुंचे थे, तब सवाई गंधर्व ने भीमसेन से कहा कि मैं तुम्हें संगीत जरूर सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो ये है कि अब तक तुमने जो भी कुछ सीखा है उसे तुम्हें भूलना होगा। भीमसेन ने तुरंत इस बात की स्वीकृति दे दी कि वे अपना सारा संगीत का ज्ञान भूल जाएंगे, और फिर उनके गुरु सवाई गंधर्व ने भीमसेन जोशी को संगीत की शिक्षा देना आरंभ किया। वे किराना घराने के गायक बने। ये वो घराना है जो स्वरों पर पूरा जोर देने और भारतीय शास्त्रीय संगीत में पारंपरिक रागों के भीतर प्रत्येक स्वर के विकास के लिए जाना जाता है। इसमें सरगम तान का जटिल उपयोग होता है।
0: गायन पद्धति को हम और विस्तार से कहें तो हिंदुस्तानी संगीत मुख्य रूप से भारत में प्रचलित भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो विशिष्ट शैलियों में से एक है और दूसरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैली है कर्नाटक शैली। ये शैली मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। इन दोनों ही भारतीय शास्त्रीय संगीत शैलियों की जड़ें भारत के नाट्य शास्त्र से संबंधित हैं। ये स्वर पर केंद्रित हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े प्रमुख स्वर खयाल, गजल, ध्रुपद, धमार, तराना और ठुमरी हैं। और संगीत घराना एक सामाजिक संगठन प्रणाली है जो कलाकार को वंश परंपरा से जोड़ती है और साथ ही एक विशेष संगीत शैली का पालन करती है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ शिष्यों को एक विशेष गुरु के अधीन रहकर सीखना और उनके संगीत ज्ञान और शैली को प्रचारित प्रसारित करना है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पंडित भीमसेन जोशी के परिवार में कोई भी संगीत से जुड़ा नहीं था, फिर भी वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में सबसे बड़े नामों में से एक कहलाए। उन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में अपनी पहली संगीत प्रस्तुति दी और इसके बाद वो रेडियो कलाकार की हैसियत से मुंबई शहर में काम करने लगे। 20 वर्ष की छोटी सी आयु में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ। भीमसेन जोशी ने 1941 में सार्वजनिक रूप से अपने गायन को आरंभ किया और 1942 में HMV पर अपना पहला एल्बम जारी किया और अपनी आवाज और तकनीकी सांगीतिक दक्षता के लिए पहचान भी हासिल की।
0: उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1946 में उन्होंने अपने गुरु सवाई गंधर्व के 60वें जन्मदिन समारोह में अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस समारोह में गायन के पश्चात उनकी खूब प्रशंसा हुई। उनके गायन को सुनने वालों ने खूब पसंद किया और फिर उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक प्रमुख हस्ती के रूप में स्थापित भी किया और उनके जीवन में यह कार्यक्रम एक प्रमुख पड़ाव साबित हुआ। पंडित भीमसेन जोशी ने अपने गुरु सवाई गंधर्व की विरासत को सम्मान देने के लिए सन 1953 में सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव की स्थापना की। जोशी जी गायन में सदा संगीत की पारंपरिक परंपरा से ही जुड़े रहे। रागों की परंपरा पर वह अपने गायन में सदा डटे रहे और उसमें उन्होंने महारत हासिल की और एक समृद्ध पारंपरिक शैली को बढ़ावा दिया। शुद्ध कल्याण, मियाँ की तोड़ी, भीम पलासी और राग यमन जैसे रागों में उन्होंने महारत हासिल की और साथ ही साथ कलाश्री, ललित भटियार और मारवाश्री की उनकी रचनाएं हमें उनकी संगीत प्रतिभा से पूरी तरह अवगत कराती हैं।
1: हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सही कही आपने। पंडित भीमसेन जोशी ने सन 1964 से 1982 के बीच अफगानिस्तान, इटली, फ्रांस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में अपनी संगीत कला का प्रदर्शन किया, जिससे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार और व्यापक हुआ। वे सदा अपनी अनूठी शैली के लिए जाने और पहचाने गए। वे शायद ही अपनी किसी रचना को एक ही तरीके से दोबारा प्रस्तुत करते थे। भारतीय गायक और संगीतकार एम बाला मुरली कृष्ण के साथ उनकी जुगलबंदी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की प्रस्तुति दी। अपनी इन प्रस्तुतियों के द्वारा उन्होंने दो विशिष्ट भारतीय शैलियों को उनकी व्यक्तिगत अखंडता अलग अलग बनाए रखते हुए मिलकर प्रस्तुत किया।
0: अब अगर पंडित भीमसेन जोशी के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने दो विवाह किए। सन 1944 में उन्होंने अपने मामा की बेटी सुनंदा कट्टी से विवाह किया और 4 बच्चों के पिता बने। इनका नाम रखा गया राघवेंद्र, उषा, सुमंगला और आनंद। लेकिन उनके जीवन में सन 1951 में बड़ा परिवर्तन आया और जोशी जी ने एक कन्नड़ नाटक में अपनी सह अभिनेत्री वत्सला मुधोलकर से भी विवाह कर लिया, किंतु अपनी पहली पत्नी सुनंदा से अलगाव या विवाह विच्छेद नहीं किया। उन दिनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कानून के तहत हिंदू विवाह में दूसरे विवाह की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे नागपुर शहर में आकर रहने लगे जहां दूसरे विवाह की अनुमति थी। दूसरी पत्नी वत्सला से उनके 3 बच्चे हुए, जयंत, शुभदा और श्रीनिवास जोशी। आरंभ में तो उनकी दोनों पत्नियां साथ में ही रहीं, किंतु बाद में उनकी पहली पत्नी सुनंदा अपने बच्चों के साथ पुणे शहर के सदाशिव स्थित लिमयवाड़ी के दूसरे घर में रहने चली गईं। पंडित भीमसेन जोशी ने अपने दोनों परिवारों में आना जाना बरकरार रखा।
1: पंडित भीमसेन जोशी को उनकी अद्भुत प्रतिभा के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र से संबंधित 1972 में पद्मश्री और संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप पुरस्कार के साथ 1985 में आई फिल्म अनकही में उन्हें रघुवर तुमको मेरी लाज और ठुमक ठुमक भजन गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र भूषण 2002 और कर्नाटक रन 2005 भारत सरकार का पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान भी शामिल है। इसके साथ ही संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पंडित भीमसेन जोशी को भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। वे किराना घराना संगीत शैली के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, जो अपनी दमदार आवाज और भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण हस्ती माने गए।
0: वजह यह थी कि पंडित भीमसेन जोशी ने अपनी गायन शैली को रियाज और मेहनत से निखारा और रागों और भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुर पारंपरिक शैलियों पर अपनी पकड़ बनाई और उसे मजबूती दी। इसके साथ ही पंडित भीमसेन जोशी ने पार्श्व गायक के रूप में फिल्मों और भक्ति एल्बमों के लिए कई गाने रिकॉर्ड करवाए। उन्होंने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया। उन्होंने सन 1956 में आई फिल्म बसंत बहार का सुप्रसिद्ध गीत केतकी गुलाब जूही पंकज पद फूले पार्श्व गायक मन्ना डे के साथ युगल रूप से गाया था, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, और 1985 में आई फिल्म अनकही के गीत भी गाए। मराठी फिल्म स्वयंवर जाले सीतेचे, जो 1964 में आई, और 1966 में आई कन्नड़ फिल्म संध्या संध्या राग में अपने आवाज दी।
1: श्रोताओं, इसके साथ साथ हिंदू भगवान विठल यानी विठोवा की स्तुति में गाए जाने वाले मराठी भक्ति काव्य अभंग, जिसका शाब्दिक अर्थ है कभी ना टूटने वाला, इसे संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ जैसे संतों ने रचा है। इस मराठी छंद में मात्राओं की जगह अक्षरों की संख्या अधिक महत्वपूर्ण होती है, जो छोटे और बड़े दो प्रकार के होते हैं। इसमें भक्ति के साथ साथ उस समय के सामाजिक अन्याय की आलोचना और समानता का संदेश मिलता है। ये अभंग शास्त्रीय और गैर शास्त्रीय दोनों संगीत शैलियों में लोकप्रिय है। इसे पंडित भीमसेन जोशी ने अपने स्वर में गाकर एक विशेष ख्याति दिलवाई और वे एक उत्कृष्ट अभंग गायक के रूप में भी जाने गए।
0: यहाँ हम एक खास बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि पंडित जी ने जिन फिल्मों के गीतों को गाया है, वह भी शास्त्रीय संगीत के रागों पर ही आधारित रहे, और संगीत और कार्यक्रम के प्रति वे इतना समर्पित थे कि कहते हैं कि उनके द्वारा अपने गुरु के नाम को समर्पित सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव के आयोजन के दौरान एक तानपुरा वादक का सुर सही नहीं मिल पाया। ऐसे में वे स्वयं मंच पर जाकर तब तक तानपुरा बजाते रहे जब तक दूसरा वादक नहीं आ गया। संगीत के अलावा पंडित भीमसेन जोशी की दिलचस्पी कारों को लेकर भी थी, और इसमें वे केवल शौक तक ही सीमित नहीं थे, उन्हें ऑटो मैकेनिक्स का गहरा ज्ञान भी था।
1: पंडित भीमसेन जोशी ने सदा अपनी संगीत शिक्षा में मिली शैली का कठोरता से पालन किया। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो अभिजात वर्ग के विरोधी थे और इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि शास्त्रीय संगीत भारत की सभी जातियों, धर्मों और वर्गों का है। वो हमेशा अपनी सशक्त आवाज, श्वास नियंत्रण और अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय कलाओं के उस्तादों को दी जाने वाली पारंपरिक उपाधि पंडित से सम्मानित किया गया था। 6 दशकों से अधिक के अपने करियर में वे भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण हस्ती कहलाते थे। विशेष रूप से ख्याल गायन में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी योग्यता का आधार उनकी महान संगीत साधना है।
0: अपने एकल गायन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए युग का सूत्रपात करने वाले पंडित भीमसेन जोशी को जब देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई, तब उनके पुत्र श्रीनिवास जोशी ने उन्हें सबसे पहले बताया था। तब पंडित जी पुणे में थे। पुत्र के मुंह से स्वयं को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त होने की बात सुनकर उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, मैं उन सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों की तरफ से इस सम्मान को स्वीकार करता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी।
1: एक बार बातचीत के दौरान पंडित भीमसेन जोशी ने बचपन की उस घटना को याद कर बड़े विनोद पूर्वक स्वर में कहा था, जब वे एक दिन घर से भाग निकले थे, उन्होंने बताया कि ऐसा करके उन्होंने परिवार की परंपरा ही निभाई थी। मंजिल का पता नहीं था, रेल में बिना टिकट बैठ गए और ट्रेन में बीजापुर तक का सफर तय किया। टीटी को राग भैरव में जागो मोहन प्यारे और कौन कौन गुमजाए जैसी गीत भजन सुनाकर मुग्ध कर दिया था और साथ के यात्रियों पर भी उनके गायन का जादू चल निकला। सहयात्रियों ने रास्ते में खिलाया पिलाया और अंततः वे बीजापुर पहुंच गए। गलियों में गाकर और लोगों के घरों के बाहर रातें गुजार दी। दो हफ्ते इस तरह बीत गए। तब एक संगीत प्रेमी ने गाना सुनकर सलाह दी, संगीत सीखना है तो ग्वालियर जाओ।
0: अब पंडित भीमसेन जोशी को उस समय यह भी पता नहीं था कि ग्वालियर कहाँ है। वो एक दूसरी ट्रेन में सवार हो गए और पुणे महाराष्ट्र पहुंच गए। उस समय वह नहीं जानते थे कि एक दिन यही पुणे शहर उनका स्थायी निवास बन जाएगा। रेलगाड़ियां बदलते और रेल कर्मियों से बचते बचाते किशोर भीमसेन आखिरकार ग्वालियर पहुंच ही गए और माधव संगीत विद्यालय में प्रवेश ले लिया। किंतु भीमसेन को किसी कक्षा की नहीं बल्कि एक गुरु की आवश्यकता थी। भीमसेन 3 साल तक गुरु की खोज में यहां से वहां भटकते रहे। एक बार कर बल्लभ संगीत सम्मेलन में उनकी मुलाकात विनायक पटवर्धन से हुई। विनायक राव को इस बात को लेकर आश्चर्य हुआ कि सवाई गंधर्व उनके घर के पास ही रहते हैं और तब किशोर भीमसेन जोशी की मुलाकात सवाई गंधर्व से हुई। फिर क्या हुआ इसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं।
1: श्रोताओं, सवाई गंधर्व की शागिर्दी में भी लगभग 1.5 वर्ष तक उन्होंने भीमसेन को कुछ भी नहीं सिखाया, पर भीमसेन सवाई गंधर्व के पास रहने लगे। एक बार अपने बेटे भीमसेन की प्रगति का हाल जानने के लिए उनके पिता ग्वालियर आए। उन्होंने देखा कि भीमसेन संगीत ना सीखते हुए बस अपने गुरु सवाई गंधर्व के घर के लिए बड़े बड़े घड़ों से पानी भर रहे हैं। पिता को आश्चर्य हुआ। पिता के पूछने पर भीमसेन ने बहुत ही सहजता के साथ पिता से कहा, पिताजी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप मेरी बिल्कुल चिंता ना करें।
0: पंडित भीमसेन जोशी को ख्याल गायकी का स्कूल कहा जाता है। यह भी बताया जाता है कि ख्याल गायकी में राग की शुद्धता का सबसे सही तरीका सीखना है तो पंडित भीमसेन जोशी को सुनो। पंडित जोशी ने कन्नड़, संस्कृत, हिंदी और मराठी में ढेरों अभंग गाए हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर और बाल मुरली कृष्ण जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ यादगार जुगलबंदियां दी हैं। युवा पीढ़ी के गायकों में रामपुर सहसवान घराने के उस्ताद राशिद खान, जिन्होंने जब वी मैट फिल्म का गीत आओगे जब तुम साजना गाया है, उनके साथ भी पंडित जी ने गाया है।
1: श्रोताओं, पंडित भीमसेन जोशी उस संगीत के पक्षधर रहे जिसमें राग की शुद्धता के साथ ऐसा गाया जाए कि सुनने वालों की आंखें मुंद जाए और वो किसी और ही लोक में पहुंच जाए। पंडित भीमसेन जोशी की गायकी भी स्वयं इस परिकल्पना की मिसाल है। भीमसेन जोशी की आवाज की बुलंदी शायद इसलिए भी है कि उनकी गायकी का दौर वो दौर था जब कार्यक्रम में माइक नहीं होते थे, और यदि होते भी थे तो नहीं के बराबर। इसलिए गायकी में स्वाभाविक दमखम का होना बहुत जरूरी होता था। उस समय के गायक और गायकी के साथ पहलवानी को भी बराबरी का दर्जा देते थे। तभी तो बड़े गुलाम अली खां, फैयाज खां, अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां जैसे मंझे हुए गायक कलाकार गले के साथ साथ शरीर की भी वर्जिश करते थे, और गाते वक्त उन्हें माइक की भी आवश्यकता नहीं होती थी। पंडित भीमसेन जोशी के समकालीन गायकों में पंडित कुमार गंधर्व और पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर रहे हैं।
0: एक समय था जब शास्त्रीय संगीत दरबारों और गानों में कैद था, पर जब गंधर्व महाविद्यालय, प्रयाग संगीत समिति और भातखंडे विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं बनी तो उसका असर यह हुआ कि शास्त्रीय संगीत आम लोगों के बीच भी तेजी से पहुंचने लगा, लेकिन इससे संगीत की गुणवत्ता पर असर होने लगा। जोशी जी का मानना था कि संस्थानों में कलाकार पैदा नहीं किए जा सकते हैं, कलाकार बनने के लिए तो गुरु के प्रति समर्पण ही एक रास्ता है। यही कारण रहा कि पंडित जी देश भर में घूम घूम कर कलाकारों को खोजते थे और अपने गुरु की याद में शुरू किए गए सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव में वह उन कलाकारों को मंच देते थे। इस महोत्सव की इतनी ख्याति थी कि पुणे शहर के इस सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिलने पर कलाकार अपने को गौरवान्वित महसूस करता था।
1: पंडित भीमसेन जोशी एक बहुत ही सीधे और सरल इंसान थे। वे किराना घराने के सबसे प्रसिद्ध गायकों में गिने जाते हैं, किंतु विभिन्न घरानों के गुणों को मिलाकर वे अद्भुत गायन प्रस्तुत करते थे। आम जन साधारण लोगों में उन्हें मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा गीत के लिए याद किया जाता है। इसमें उनके साथ साथ बाल मुरली कृष्णा और लता मंगेशकर ने जुगलबंदी की है। सन 1985 से दूरदर्शन के जरिए वे घर घर में जाने पहचाने गए, और तब से लेकर आज तक इस गाने के बोल और धुन लोगों की जुबान और मन पर अंकित हो चुके हैं, जो पंडित भीमसेन जोशी की पहचान को और बढ़ाते हैं। उन्हें देश का भरपूर प्यार मिला।
0: पंडित भीमसेन जोशी जीवन के अंतिम वर्षों तक प्रस्तुति देते रहे और सन 2004 में एम बाल मुरली कृष्ण के साथ अपना अंतिम बड़ा संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सन 2007 में उन्होंने सवाई गंधर्व संगीत समारोह में अंतिम बार गायन किया और दिसंबर 2010 में बीमार होने से कुछ सप्ताह पहले समारोह के 58वें संस्करण में संक्षिप्त प्रस्तुति दी।
1: पंडित भीमसेन जोशी के प्रदर्शन को बड़े बड़े संगीत समीक्षकों ने सहजता, सटीक स्वर और उनकी असाधारण गायन क्षमता का उपयोग करते हुए तीव्र गति से गाए जाने वाले तानों और लय पर उनकी महारत के लिए सराहा है। 60 और 70 के दशक में उन्होंने अपनी विशिष्ट और उल्लेखनीय विशिष्टता, जिसमें वे तीव्र और लंबी तानों का प्रयोग करते थे, उनकी अद्भुत और अद्वितीय श्वास नियंत्रण का उदाहरण रहा। हालांकि उन्होंने सरगम तानों का प्रयोग शायद ही कभी किया हो। द हिंदू में लिखे एक लेख में कहा गया है कि वो घुमक्कड़ रहे और विचार विमर्श की तुलना में सहज रूप से शानदार तानों को जन्म देते थे। इसके साथ वो कभी कभी सरगम और विहाई का प्रयोग भी करते थे।
0: पंडित भीमसेन जोशी अक्सर किराना घराने की पारंपरिक रचनाएं गाते थे और उनके संगीत में अक्सर आश्चर्यजनक और अचानक वाक्यांशों का समावेश होता था, यानी तानों के बोल में प्रत्याशित तानों का प्रयोग करते थे। उनके संगीत में सदा जटिल और गंभीर रागों का ही समावेश रहा। उनके लोकप्रिय रागों में शुद्ध कल्याण, मियाँ की तोड़ी, पूरी अधनाश्री, मुल्तानी, भीम पलासी, दरबारी, मालकोंस, अमोजी, ललित, यमन, आसावरी, तोड़ी, मियाँ की मल्हार और रामकली शामिल हैं। वे एक शुद्धतावादी थे।
1: पंडित भीमसेन जोशी की गायकी कई संगीतकारों से प्रभावित भी रही। इसमें श्रीमती केसरबाई केरकर, बेगम अख्तर और उस्ताद अमीर खान जैसे नाम शामिल हैं। उन्होंने अपनी गायकी से विभिन्न संगीत शैलियों और घरानों के उन तत्वों को आत्मसात किया जो उन्हें पसंद थे। उन्होंने श्रीमती गंगूबाई हंगल और अन्य कलाकारों के साथ किराना घराना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पंडित भीमसेन जोशी को 31 दिसंबर 2010 को कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सांस लेने में कठिनाई होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। इस दौरान उन्हें और भी कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ीं और उनकी हालत बिगड़ गई और 24 जनवरी 2011 को उनका निधन हो गया।

0: पुणे के बैकुंठ शमशान घाट पर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
1: पंडित भीमसेन जोशी भारत के अविस्मरणीय संगीतकारों में से एक हैं, जिन्होंने किराना घराना में अपनी कलात्मक प्रस्तुति से संगीत प्रेमियों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है। संगीत के प्रति उनका गहरा लगाव था और संगीत के प्रति उनकी प्यास कभी भी बुझती नहीं थी। भीमसेन जोशी ने अपने अद्भुत प्रतिभा से आने वाली पीढ़ियों के संगीतकारों के लिए एक मिसाल कायम की है। भले ही वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी पंडित भीमसेन जोशी एक जीवित किंवदंती बने हुए हैं और आज भी अपनी अनूठी आवाज के माध्यम से अपने संगीत का जादू हम पर बिखेर रहे हैं। पंडित भीमसेन जोशी 20वीं सदी के सबसे महान गायकों में से एक थे। उन्होंने अपने गायन से 3 पीढ़ियों को आनंदित किया।
2: मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।
0: तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। कला कल्लोलिनी में हमने ढेर सारी बातें की पंडित भीमसेन जोशी पर। श्रोताओं, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन डॉक्टर प्रमिला मुंशी दिवाकर, और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा,
1: और मैं नूपुर शर्मा।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के शिष्य तथा शिष्याओं में सबसे पहले भगिनी निवेदिता का नाम मानस पटल पर उभरता है। अपने गुरु से आदर्श जीवन की प्रेरणा लेकर निवेदिता, जिनका नाम मार्गरेट नोबल था, भारत आई। पाश्चात्य संस्कृति के बंधन तोड़कर उन्होंने न केवल भारतीय शिक्षा और संस्कृति तथा भारतीय विचारधारा और जीवन पद्धति को अपनाया, बल्कि सनातन हिंदू धर्म और आध्यात्मिक जीवन स्वीकार कर भारत के कल्याण के लिए दीर्घकाल तक बहुत संघर्ष किया। नारी शिक्षा, सामाजिक विकास एवं साहित्य सेवा में उनका अवदान अपूर्व था।
1: स्वामी विवेकानंद जी की बात चले और भगिनी निवेदिता का प्रसंग ना आए, ये असंभव है। वे स्वामी जी की मानस पुत्री थी। विदेश से वापस आने के बाद स्वामी जी के मन को नारी शिक्षा की बात सदा सताती रहती, पर उन्हें कोई उपयुक्त रास्ता नहीं दिख रहा था। निवेदिता ने भारत आकर स्वामी जी के मन का वह बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था और स्वामी जी ने निश्चिंत होकर उन्हें यह भार सौंप दिया था।
0: स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर एक कविता लिखी थी, अ बेनेडिक्शन, उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। माँ का हृदय वीर की दृढ़ता, मलय पवन की मधुरता, ज्वलंत आर्यवेदी की पावन शक्ति और मोहकता, ये वैभव सब अन्य और जो मन के स्वप्न बने हो, तुम्हें सहज जी आज प्राप्य हो, निश्चल भावना हो, भारत के भावी पुत्रों की गूंजे तुम में वाणी, मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी, मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी।
1: परवर्ती काल में इस कविता का संपूर्ण भाव निवेदिता के जीवन रूप में धरा था। निवेदिता भारत की आजादी के लिए संग्राम करने वाले क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। भारत के लिए प्रेम उनके हर कार्य में झलकता था। उनका पूर्ण समर्पित जीवन भारतवासियों के लिए वरदान स्वरूप था।
0: स्वामी विवेकानंद एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उनके साथ जितने भी लोगों का परिचय हुआ, वे सभी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे और सभी ने अपनी अपनी दृष्टि और समझ से विवेकानंद को समझकर उनके बारे में लिखा था। किसी ने उन्हें सन्यासी कहा, किसी ने हिंदू कहा, किसी ने वेदांती, किसी ने समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा गुरु, इतिहासकार और दार्शनिक कहा, पर वे थे क्या?
1: सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी को बहुत करीब से देखा था। आज हम विवेकानंद को सिस्टर निवेदिता की आंखों से देखेंगे।
0: भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी के मृत्यु के कुछ दिनों बाद चेन्नई से प्रकाशित द हिंदू अखबार में लिखा था,
2: संसार जिन्हें विवेकानंद के नाम से जानता था, आज उनकी याद दिलाने को मुट्ठी भर राख ही बची है। 5 वर्षों से जो ज्योति शिखा गंगा के तट पर एकांत में जल रही थी, आज वो बुझ चुकी है। जो प्रचंड ध्वनि विश्व के राष्ट्रों में गूंजती रही थी, वो आज मृत्यु की निर्वरता में लीन हो गई है। इस महान शक्तिधर आत्मा के लिए जीवन बहुधा आंधी और दुख कष्टों को लेकर आया, पर मृत्यु आई शांति लेकर। अमावस्या के दिन सांध्य आरती के पश्चात मृत्यु का वरदान चुपचाप पृथ्वी पर उतरा और थकी पीड़ित देह को ले गया और आत्मा चिरकाल के लिए ब्रह्म में एकाकार हो गई।
1: निवेदिता ने हमें बताया कि किस तरह स्वामी जी अंत तक मनुष्य निर्माण का व्रत लेकर शिष्यों को शिक्षा देते थे।
2: जब उनकी सफलता के बाग के पहले फूल भी मुरझा नहीं पाए थे, तभी वे चले गए। जब उनके कानों में नई और महत्तर पुकारें गूंज रही थी, तभी वे चले गए। उनकी बीमारी के ही कुछ वर्ष उनके उस सुंदर निवास स्थल पर पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बीच चुपचाप बीत गए, जहां वे सारा दिखावा छोड़कर अपने नाम पर चमकती विपुल यशो राशि की उपेक्षा कर अपने शिष्यों को शिक्षा देने में तल्लीन थे। मनुष्य निर्माण ही उनकी सृष्टि में समस्त कर्तव्य कर्मों का सार संक्षेप था और वे दिन पर दिन उत्साहपूर्वक बड़े परिश्रम के साथ इस मनुष्य निर्माण के कार्य में लगे रहे, कभी गुरु की तरह, कभी पिता की तरह और कभी स्कूल के शिक्षक की तरह। यहां तक कि जिस दिन वे हमें सदा के लिए छोड़ गए, उस दिन दोपहर को भी वे 3 घंटों तक संस्कृत व्याकरण का पाठ पढ़ाते रहे। इस व्यक्ति के लिए बाहरी सफलता और नेतृत्व मानो कुछ भी न थे। पश्चिमी देशों में अपने प्रवास तथा निवास के दौरान स्वामी जी की कई ऐसे बड़े बड़े धनिकों और ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों से मित्रता हुई जो स्वामी जी को अपने बीच रख पाना अपना अहोभाग्य समझते थे। पर अपनी सारी चमक दमक और ऐश्वर्य के बावजूद पश्चिमी जगत स्वामी जी के मन में अपने प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न न कर सका। उन्हें तो विदेशियों के सारे वैभव की तुलना में अपना गैरिक वस्त्र, कोलकाता की गलियां और अपने देश भाइयों की कमियां तथा कमजोरियां कहीं अधिक प्रिय थी। इसलिए स्वामी जी के पूर्व की ओर नित्य बढ़ते हुए चरण को पश्चिम किसी भी प्रकार रोक नहीं सका था।
0: निवेदिता से हमें मालूम पड़ता है कि स्वामी जी को पश्चिमी देशों में क्या विपुल संवर्धना मिली थी और लोग कितने प्रभावित हुए थे।
2: पश्चिम ने उनमें जाने ऐसा क्या देखा और सुना जिसके कारण वहां के कितने ही लोगों ने संसार के एक सर्वश्रेष्ठ धर्माचार्य के रूप में उनकी जय जयकार की और उनके नाम को अपने हृदय में संजो कर रखा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी तरह का दावा नहीं किया। उन्होंने कभी अपनी कहानी भी नहीं कही। यहां तक कि एक व्यक्ति जो उन्हें लंबे अरसे से जानता था और उनका विश्वास पात्र था, ये न जान सका था कि स्वामी जी अपने गुरु भाइयों के बीच कितना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने अपरिचितों के बीच ईश्वर या अपने गुरु पर आधारित कोई विशेष मतवाद नहीं रखा था। संप्रदाय प्रचलित करने का प्रयत्न भी नहीं किया। यद्यपि उन्होंने उपनिषदों के अतिरिक्त और कहीं से भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए तथा वेदांत को छोड़कर और किसी भी बात की शिक्षा नहीं दी। यद्यपि वे भारतीय ग्रहों तथा संतों की विराट धार्मिक परंपरा के सतत साक्षी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसे आचार्य की बातें सुनी जो सत्य से भय नहीं खाते थे।
1: अलग अलग लोगों के लिए स्वामी जी के अलग अलग व्यक्तित्व थे। निवेदिता कहती हैं,
2: क्या हम शिव विषय वो भजन नहीं जानते जिसमें कहा गया है, जब शिव रास्ते से चलते हैं तो कोई उन्हें पागल कहता है, कोई कहता है कि वे पिशाच हैं, और कोई कुछ। अरे तुम नहीं जानते, वे तो साक्षात परमेश्वर हैं। इस प्रकार भारत इस बात को जानता है कि प्रत्येक महान आत्मा परस्पर विपरीत आदर्शों की मिलन भूमि और समन्वय स्थल होता है। अपने शिष्यों के लिए विवेकानंद सदा सर्वदा सन्यासी श्रेष्ठ ही रहेंगे। उनसे हमें प्राप्त होने वाली प्रेरणाओं में ज्वलंत त्याग का भाव भी प्रमुख था।

0: मैं भी अपने गुरुदेव की भांति एक सच्चे सन्यासी के समान मरना चाहता हूँ। कामिनी कांचन कीर्ति किसी का स्प्रहा ना रहे, और इन तीनों में यश की चाह तो सबसे घातक है।
1: निवेदिता विवेकानंद की देशभक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुई थी।
2: इस प्रकार जहां स्वामी जी एक और धर्म उद्दात अभिव्यक्ति थे, वहीं दूसरी ओर वे सबसे महान देशभक्तों में से थे। वे उस समय जन्मे जब राष्ट्रीय विखंडन प्रारंभ हो चुका था, पर वे नवीनता से भयभीत नहीं थे। वे उस समय हुए जब लोग अपनी विरासत को त्याग रहे थे, परंतु वे पुरातन के अनन्य उपासक बने रहे। उनमें राष्ट्र के लक्ष्य ने परिपूर्णता प्राप्त की। राष्ट्र का लक्ष्य कहता है कि राष्ट्रीय चेतना की प्रत्येक नवीन लहर का प्रारंभ सदैव धर्माचार्य द्वारा होना चाहिए।
1: स्वामी जी को जाति भेद और रंग भेद से घृणा थी। निवेदिता ने भी इसकी पुष्टि की है।
2: जब वे अमेरिका के दक्षिणो प्रांत में भ्रमण कर रहे थे, तब कई बार उन्हें काला आदमी समझकर घर में घुसने नहीं दिया जाता था। पर जब लोगों को मालूम पड़ता कि ये भारतीय हैं और विश्व विख्यात विवेकानंद हैं, तब वहां के उच्चतम परिवारों में उनका जोरदार स्वागत सत्कार होता, और इस प्रकार वे लोग अपनी भूल का प्रायश्चित करने से नहीं चूकते थे। पर स्वामी जी कभी अपने मुख से ऐसा नहीं कहते थे कि मैं निग्रो नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमुक अमुक हूं। जब लोगों ने उनसे उनके इस प्रकार मौन रखने का कारण पूछा, तो उन्होंने केवल इतना कहा,
0: यदि मैं अपना परिचय दे देता तो क्या वो अपने नीग्रो भाइयों को अस्वीकार करना ना होता।
2: उनके लिए प्रत्येक जाति अपनी महानता थी, जिसके प्रकार में उस जाति का जीवन स्पंदित होता था। यूरोप से यदि तुर्क को निकाल दे तो यूरोप कहां रहेगा। मिश्र देश अपने धरती पुत्रों की उन्नति पर ही खड़ा है। इंग्लैंड ने आत्मसम्मान के साथ आज्ञा पालन के रहस्य को जान लिया है। और जहां तक देशभक्ति का सवाल है, जापानियों के साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती।
3: निवेदिता ने स्वामी जी को बहुत पास से देखा था। वे उनके यूरोप में दिए गए लगभग हर भाषण में उपस्थित रहती थी, इसीलिए स्वामी जी के भाषणों को बहुत अच्छी तरह परिभाषित कर सकती थी।
2: वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बल के अतिरिक्त और किसी बात पर चर्चा नहीं की। अपने ऊपर किसी के अधिकार की कल्पना तक उन्हें स्वीकार नहीं थी। और जब कभी वे किसी विदेशी से मिले, एक स्वामी की तरह अधिकार पूर्ण ढंग से मिले। उनसे किसी अंग्रेज ने कहा था, स्वामी जी की महान प्रतिभा उनकी गरिमा में है, जो किसी भी दृष्टि से सम्राटों की गरिमा से कम नहीं है। स्वामी जी ने एक महान तथ्य को जान लिया था कि पूर्व को पश्चिम के पास जाना होगा, परंतु एक चापलूस या दास की तरह नहीं, वरन गुरु की तरह, शिक्षक की तरह। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत श्रेष्ठताओं की पताका को नीचे नहीं झुकने दिया। एक बार उन्होंने कहा था, हाँ हाँ, यूरोप के लोग धर्म में हमारा नेतृत्व नहीं करें।
0: मैंने सदैव बल की ही बात कही है, कभी प्रतिशोध की नहीं। क्या कभी हम सागर की उस बूंद से बदला लेने की बात सोचते हैं जो हवा से उछलकर हमसे टकरा जाती है। परंतु एक मच्छर के लिए तो वही बहुत बड़ी बात है।
2: तथाकथित सुसंस्कृत कोई विदेशी यदि कभी भारत की किसी बात को बर्बरता या असभ्यतापूर्ण कह देता, तो स्वामी जी उस बात से बिना इनकार किए या उसे बिना किसी प्रकार घटाए, एकदम अपनी प्रचंड शक्ति को उस विशेष तथ्य की पुष्टि करने में केंद्रित कर देते, और वो बेचारा आलोचक अपने ही तर्कों में हिंडोले में आगे पीछे झूलने लगता था। इस संदर्भ में एक घटना याद आती है। स्वामी जी जहाज से जा रहे थे। एक अंग्रेज ने पुराणों के विषय में कोई व्यंगात्मक प्रश्न पूछ दिया। स्वामी जी के उत्तर से वो बेचारा अंग्रेज ऐसा हक्का बक्का रह गया कि देखते ही बनता था। उस दिन वहां जो भी उपस्थित था, उस दृश्य को कभी भूल नहीं सकता। स्वामी जी ने ईसाई धर्म ग्रंथों के स्तर पर हिंदू पुराणों की केवल तुलना ही नहीं की, बल्कि वेदों और उपनिषेदों को ऐसी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जहां तक किसी प्रतिद्वंदी की पहुंच नहीं थी। स्वामी जी ऐसे प्रसंगों पर मित्रता का ख्याल नहीं रखते थे। जहां राष्ट्र के स्वाभिमान और रक्षा का प्रश्न आता है, वे आलोचक पर बेहिचक टूट पड़ते थे, चाहे वो उनका परम मित्र ही क्यों ना हो।
3: निवेदिता ने हमें बताया कि विवेकानंद सिर्फ हिंदू धर्म या वेदांत के ही प्रकांड पंडित नहीं थे, उन्हें दूसरे धर्मों के बारे में भी अगाध ज्ञान हासिल था।
2: स्वामी जी स्वयं हिंदू धर्म की व्याख्याता थे, पर यदि वे देखते कि कई भिन्न धर्मावलंबी भारतीय श्रोताओं के सम्मुख अपने धर्म को प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो वे बैठ जाते और उसके लिए व्याख्यान लिख देते। जितना अच्छा वो स्वयं अपने धर्म पर ना लिख पाता, उससे कई अधिक अच्छा स्वामी जी अपने मित्रों के लिए उसके धर्म पर लिख देते थे। वे अपने विदेशी शिष्यों को हाथों से भोजन करना सिखाते थे तथा हिंदू जीवन की सामान्य कार्यों की शिक्षा देने में बड़ा परिश्रम किया करते थे। वे कहते थे, ध्यान रखो, यदि तुम भारत को प्यार करना चाहते हो तो उसका जो रूप है उसी रूप में उसे प्यार करो, ना कि उस रूप में जैसा तुम देखना चाहोगे। स्वामी जी की सीधी साधी जीवन यात्रा के कारण स्वामी जी जहां कहीं भी गए वहां की सर्वोत्तम चीजें उन्हें मिली, पर उनका असर स्वामी जी पर नहीं हुआ। वे पुरानी परंपरा के वही सरल हिंदू बने रहे। उन्हें भारत के इस सादगीपूर्ण जीवन धारा पर इतना गर्व था कि उन्हें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। अपने महाप्रयाण के दो दिन पूर्व ही उन्होंने कहा था, रामकृष्ण के बाद मैं विद्यासागर का अनुगामी हूं, और उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर विषयक पर प्रचलित कहानी सुनाई कि जब विद्यासागर आमंत्रित होकर धोती पहने, चद्दर ओढ़े और खड़ाऊ की खटर पटर ध्वनि के साथ वायसराय के कौंसिल चैम्बर में पहुंचे तो उपस्थित लोगों द्वारा आपत्ति उठाई गई। इस पर विद्यासागर ने कहा था, यदि आप मुझे नहीं चाहते थे तो फिर बुलाया क्यों?
1: जाति प्रथा के बारे में पूछने पर निवेदिता ने कहा था,
2: स्वामी जी ने जाति प्रथा का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने भारतीय एकता की कुंजी जाति की पृथकता में पाई। मुस्लिम इस राष्ट्र की एक जाति थे, ईसाई दूसरी, पारसी तीसरी, आदि आदि। ये ठीक है कि जाति में विश्वास ना करना ही इनका जातिगत वैशिष्ट था, पर यह बात तो ब्रह्म समाज और भारत के अन्य आधुनिक संप्रदायों पर भी लागू होती थी। इन सब के पीछे समान रूप से वही धरित्री थी, पूर्वजों की सभ्यता की वही सुंदर पुरातन परंपरा थी और वही जबरदस्त आवश्यकताएं थी। और स्वामी जी का विचार था कि ये सर्वमान्य तथ्य मिलकर देश की इन जातियों में अंततोगत्वा समान बातों के प्रति प्रेम और घृणा के भाव अनिवार्य रूप से भर देंगे।
3: विवेकानंद परिव्राजक थे, उन्होंने भारत के कोने कोने में भ्रमण किया था और हर प्रांत की खासियत को अपने अंदर ढाल लिया था, सभी प्रांतों की विशेषताओं को आत्मसात कर लिया था। तभी तो निवेदिता कहती हैं,
2: स्वामी जी को भारत के हर संप्रदाय, हर वर्ग की आशाओं और आदर्शों का ही ज्ञान नहीं था, बल्कि उनके हृदय में उन सब की अतीत स्मृतियां भी सुरक्षित थीं। स्वामी जी कलकत्ता के एक हिंदू परिवार में जन्मे थे और अब गंगा के तीर पर निवास कर रहे थे, पर उनके भावों के उद्वेलन को देखने से ऐसा लगता था कि अब वे पंजाब में जन्मे हैं। कभी ऐसा लगता था कि हिमालय की सुंदर वादियों में उनका जन्म हुआ है, और कभी ऐसा प्रतीत होता था कि स्वामी जी ने राजपुताना में अथवा कहीं और जन्म ग्रहण किया है। उनके अधरों पर कभी गुरु नानक के गीत होते थे तो कभी मीराबाई के, और कभी वे तानसेन के गीतों में विभोर हो जाते थे। वे कभी पृथ्वीराज और दिल्ली की कहानियां सुनाते थे, कभी चित्तौड़ और राणा प्रताप की, कभी शिव और उमा की कथाएं सुनाते थे, कभी राधा और कृष्ण की, कभी सीता और राम की गाथाएं कहते थे, तो कभी बुद्ध की। जब स्वामी जी स्वयं अभिनय करते थे तो पूरे अभिनय में अद्भुत सजीवता आ जाती थी, अतीत मानो वर्तमान में उतर आता। उनका समूचा मन प्राण देश का मानो ज्वलंत महाकाव्य था, और मातृभूमि के नाम सुनने मात्र से ही उनका सारा व्यक्तित्व गूढ़ भावों से भर उठता था।
1: निवेदिता के अगले कथन से हमें स्वामी जी की मानवता के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा,
2: बेलूर मठ में स्वामी जी के पास विश्व के सभी भागों के दर्शक और चिट्ठी का तांता लगा रहता था। भारत की ऊपरी सतह पर आज भले ही मौन का साम्राज्य दिखे, पर उसके हृदय के अंतरतम प्रदेश में स्वामी जी सदैव विद्यमान रहे। वे कभी भुलाए नहीं जा सकते। कोई उनकी उपेक्षा करने की इच्छा या साहस नहीं कर सकता। ऐसी कोई आशा की वाणी नहीं थी जो स्वामी जी के कानों में ना गई हो। कोई ऐसी पीड़ा की कराहा नहीं थी जिसे स्वामी जी ने नहीं जाना हो। और उनका सारा जीवन सांत्वना देने और ऊपर उठाने में लगा रहा। इस प्रकार जैसे कि धर्म के नेताओं के साथ हर दम होता रहा। स्वामी जी ने जिस भारत को देखा वो अन्य दूसरी आंखों में दिखने वाले चित्र से सर्वथा भिन्न था। कारण यह था कि स्वामी जी के हाथों में उन सारे तथ्यों के सूत्र विद्यमान थे जो मौलिक थे, प्राणप्रद थे तथा देश की प्रकृति में दृढ़ मूल थे। उन्होंने जीवन के छिपे हुए स्रोतों को जान लिया था। वे जान चुके थे कि किस शब्द से करोड़ों जनमानस को स्पर्श करना है। और अपनी इस समस्त जानकारी के फलस्वरूप उन्होंने एक बात निश्चित रूप से देखी थी और वो थी आशा की स्पष्ट और बलवती किरण।
3: निवेदिता ने ही हमें बताया कि एक

0: उनके मतानुसार देश की आशा उनमें निहित थी, किसी विदेशी में नहीं। ये सत्य है कि उनके विशाल हृदय में विदेशियों की आवश्यकता का भी स्थान था, और इस प्रकार उन्होंने विश्व के समक्ष सार्वभौमिकता का आदर्श रखा। पर उन्होंने किसी से भी भीख नहीं मांगी, किसी से सहायता की आशा नहीं की। उन्होंने बाहर के किसी भी व्यक्ति या देश पर भरोसा नहीं किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि देश के लिए जो कुछ करना है वो करने वालों के कर्तव्य से संपन्न होगा, याचना करने वालों की भिक्षा से नहीं। ना वे बाहर से कोई आशा रखते थे, ना उन्हें बाहर का कोई भय था। उनके संन्यास लेने का तात्पर्य था भारत की यथार्थ आत्मा का पुनरुद्घोष, राष्ट्र की महती जीवनधारा में नवीन आत्मा विश्वास और प्राण शक्ति का संचार, जिससे वो महासागर के लिए अपना रास्ता स्वयं प्रशस्त कर लें। उनके लिए संन्यास का अर्थ था महत्तर सेवा के लिए लघुता का त्याग। उनके लिए भारत हिंदुत्व का, आर्यत्व का, ऐश्यात्व का पर्याय था। भारत के तरुण आधुनिक वैभव और विलासिता में अपने प्रयोग भले ही करें, उन्हें इसका पूरा अधिकार है, पर अंत में उन्हें लौटना पड़ेगा, क्योंकि भारत की आत्मा की अतः गहराइयां नीति की हैं, संयम और तपस्या की हैं, अध्यात्म की हैं। वो जाति जो गंगा के तीर पर मृत्यु का आलिंगन करने को आतुर रहती है, अधिक समय तक केवल यांत्रिक शक्ति की चकाचौंध में पड़कर विपदगामी नहीं बनी रह सकती।
1: और अंत में आशा की वाणी से स्वामी जी ने भारत को संदेश दिया था।
0: बुद्ध ने त्याग का उपदेश दिया था, और दो दशकों में भारत एक विशाल साम्राज्य बन गया। अब एक बार फिर से उसकी नसों में वही महान स्पंदन दौड़ जाए, उसकी इस नव प्रबुद्धा शक्ति के सम्मुख पृथ्वी की कोई ताकत टिक ना सकेगी। पर हाँ, वो एक बात जान ले कि अपने स्वयं के जीवन में ही उसे जीवन मिलेगा, किसी के अनुकरण में नहीं। उसे अपने ही सम्यक अतीत और परिवेशों से प्रेरणा प्राप्त होगी, किसी विदेशी से नहीं। जो अपने को दुर्बल समझता है वो दुर्बल है ही, जो अपने को सामर्थ्यवान समझता है वो अजय बन चुका है। इसीलिए अपने देश के लिए, अपने प्रत्येक देशवासी के लिए विवेकानंद की केवल एक ही बात है, बारंबार घोषित किया हुआ एक ही संदेश है, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य, वरान्नी बोधत, जागो, उठो, लगे रहो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं, देश का चैनल देश के लिए। आपने ट्यून किया है अपने रेडियो सेट पर। श्रोताओं, दिन के 12 बजने को है, अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। इस सभा का सफर आपने तय किया अपने रेडियो मित्र भगवती सक्सेना के साथ। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। तो बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। दिन के ठीक 12 बज रहे हैं, आप सभी श्रोताओं का हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। श्रोताओं, अब आरंभ होती है हमारी दोपहरकालीन सभा। लीजिए, प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम तराने आजादी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: खेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोमकली का गायन।

नमस्कार। चांदनी केदार से आज शुरुआत करूंगी। बहुत पुरानी परंपरागत बंदिश है, उसी के साथ में एक और परंपरागत द्रुत रचना आपको केदार में सुनाऊंगी। तो शुरुआत में

मैं आपको एक रूपक में निबद्ध सुनाती हूँ। राग का नाम है दुर्गा और उसी के साथ में एक छोटा सा उसका तराना है, एक ताल में निबद्ध। दोनों ही रचना कुमार जी द्वारा बनाई गई है और जो रूपक ताल में निबद्ध जो मदले की रचना मैं आपको सुनाऊंगी वो विशेष रूप से शरद पूर्णिमा के लिए कुमार जी ने बनाई थी। एकमात्र शायद ऐसी बंदिश है जो विशेष रूप से कोजागिरी के लिए बनाई गई है। तो आपको एक छोटी सी बंदिश सुनाती हूँ, उसके बाद में तराना सुनाऊंगी।

अभी आप सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोमकली का गायन सुन रहे थे। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम समाप्त करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको इस कार्यक्रम में सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य।

0: दुर्गा माली डॉक्टर मेहरा बारट लॉ के यहां नौकर था। 5 रुपए मासिक वेतन पाता था। उसके घर में स्त्री और 2-3 छोटे बच्चे थे। स्त्री पड़ोसियों के लिए गेहूं पीसा करती थी। 2 बच्चे जो समझदार थे इधर उधर से लकड़ियां गेहूं उपले चुन लाते थे, किंतु इतना यत्न करने पर भी वे बहुत तकलीफ में रहते थे। दुर्गा डॉक्टर साहब की नजर बचाकर बागीचे से फूल चुन लेता और बाजार में पुजारियों के हाथ बेच दिया करता था। कभी कभी फलों पर भी हाथ साफ किया करता। यही उसकी ऊपरी आमदनी थी। इससे नोन तेल आदि का काम चल जाता था। उसने कई बार डॉक्टर महोदय से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु डॉक्टर साहब नौकर की वेतन वृद्धि को छूत की बीमारी समझते थे, जो एक से अनेकों को ग्रस लेती है। वे साफ कह दिया करते, भाई मैं तुम्हें बांधे तो हूं नहीं, तुम्हारे यहां निर्वाह नहीं होता तो कहीं और चले जाओ, मेरे लिए मालियों का काल नहीं है। दुर्गा में इतना साहस न था कि वो लगी हुई रोजी छोड़कर नौकरी ढूंढने निकलता। इससे अधिक वेतन पाने की आशा भी नहीं, इसलिए वो इसी निराशा में पड़ा हुआ जीवन के दिन काटता और अपने भाग्य को रोता था। डॉक्टर महोदय को बागवानी से विशेष प्रेम था। नाना प्रकार के फूल पत्ते लगा रखे थे। अच्छे अच्छे फलों के पौधे दरभंगा, मलिहाबाद, सहारनपुर आदि स्थानों से मंगवाकर लगाए थे। वृक्षों को फलों से लदे देखकर उन्हें हार्दिक आनंद होता था। अपने मित्रों के यहाँ गुलदस्ते और शाक भाजी की डालियां तोहफे के तौर पर भिजवाते रहते थे। उन्हें फलों को आप खाने का शौक न था, पर मित्रों को खिलाने में उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता था। प्रत्येक फल के मौसम में मित्रों की दावत करते और पिकनिक पार्टियां उनके मनोरंजन का प्रधान अंग थीं। एक बार गर्मियों में उन्होंने अपने कई मित्रों को आम खाने की दावत दी। मलिहाबादी में सुफेदे के फल खूब लगे हुए थे। डॉक्टर साहब इन फलों को प्रतिदिन देखा करते थे। ये पहले ही फले थे, इसलिए वे मित्रों से उनकी मिठास और स्वाद का बखान सुनना चाहते थे। इस विचार से उन्हें वही आमोद था जो किसी पहलवान को अपने पट्टों के करतब दिखाने से होता है। इतने बड़े सुंदर और सुकोमल सुफेदे स्वयं उनकी निगाह से न गुजरे थे। इन फलों के स्वाद पर उन्हें इतना विश्वास था कि वे एक फल चखकर उनकी परीक्षा करना आवश्यक ना समझते थे। प्रधानता इसलिए कि एक फल की कमी एक मित्र को रसास्वादन से वंचित कर देगी। संध्या का समय था, चैत का महीना। मित्रगण आकर बगीचे के हौज के किनारे कुर्सियों पर बैठे थे। बर्फ और दूध का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया था, पर अभी तक फल न तोड़े गए थे। डॉक्टर साहब पहले फलों को पेड़ में लगे हुए दिखलाने के बाद उन्हें तोड़ना चाहते थे, जिसमें किसी को यह संदेह न हो कि फल इनके बाग के नहीं है। जब सब सज्जन जमा हो गए तब उन्होंने कहा, आप लोगों को कष्ट होगा, पर जरा चलकर फलों को पेड़ में लटकते देखिए, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। गुलाब में भी ऐसी लोचन प्रिय लाली न होगी, रंग से स्वाद टपक पड़ता है। मैंने इसकी कलम खास मलिहाबाद से मंगवाई थी और उसका विशेष रीति से पालन किया है। मित्रगण उठे, डॉक्टर साहब आगे आगे चले। रवीशों के दोनों ओर गुलाब की क्यारियां थीं। उनकी छटा दिखाते हुए वे अंत में सुफेदे के पेड़ के सामने आ गए, मगर आश्चर्य, वहां एक फल भी न था। डॉक्टर साहब ने समझा शायद वो ये पेड़ नहीं है। 2 पग और आगे चले, दूसरा पेड़ मिल गए और आगे बढ़े, तीसरा पेड़ मिला। फिर पीछे लौटे और एक विस्मित दशा में सुफेदे के वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। इसमें संदेह नहीं कि वृक्ष यही है, पर फल क्या हुए? 20-25 आम थे, एक का भी पता नहीं। मित्रों की ओर अपराधपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, आश्चर्य है, इसमें एक भी फल नहीं है। आज सुबह मैंने देखा था, पेड़ फलों से लदा हुआ था। ये देखिए, फलों का डंठल है। यह अवश्य माली की शरारत है। मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस पाजी ने मुझे कितना धोखा दिया। मैं बहुत लज्जित हूं कि आप लोगों को व्यर्थ कष्ट हुआ। मैं सत्य कहता हूं, इस समय मुझे जितना दुख है उसे प्रकट नहीं कर सकता। ऐसे रंगीले कोमल कमनीय फल मैंने अपने जीवन में कभी ना देखे थे। उनके यौन लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े हुए जाते हैं। ये कहकर वे नैराश्य वेदना से कुर्सी पर बैठ गए। मित्रों ने सांत्वना देते हुए कहा, नौकरों का सब जगह यही हाल है। ये जाति ही पाजी होती है। आप हम लोगों के कष्ट का खेद ना करें। ये सुफेदे ना सही, दूसरे फल सही। एक सज्जन ने कहा, साहब मुझे तो सब आम एक से ही मालूम होते हैं। सुफेदे, मोहन भोग, लंगड़े, बम्बई, फजली, दशहरी, इनमें कोई भेद ही मालूम नहीं होता। न जाने आप लोगों को कैसे उनके स्वाद में फर्क मालूम होता है। दूसरे सज्जन बोले,
1: भाई यहां भी वही हाल है, जो इस समय फल मिले वही मंगवाइए, जो गए उनका क्या अफसोस।
0: डॉक्टर साहब ने व्यथित भाव से कहा, आमों की क्या कमी है, सारा बाग भरा पड़ा है, खूब शौक से खाइए और बांधकर घर ले जाइए। वे हैं और किस लिए, पर वो रस और स्वाद कहां। आपको विश्वास ना होगा, उन सुफेदों पर ऐसा निखार था कि सेब मालूम होते थे। सेब भी देखने में ही सुंदर होता है, उसमें वो रुचिवर्धक लालित्य, वो सुधा में मृदुता कहां। इस माली ने आज वो अनर्थ किया है कि जी चाहता है नमक हराम को गोली मार दूं, इस वक्त सामने आ जाए तो अधमरा कर दूं। माली बाजार गया हुआ था। डॉक्टर साहब ने साइज से कुछ आम तुड़वाए, मित्रों ने आम खाए, दूध पिया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर अपने अपने घर की राह ली। लेकिन मिस्टर मेहरा वहां हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए माली की बाट जोहते रहे। आकृति से जान पड़ता था मानो साक्षात क्रोध मूर्तिमान हो गया था। कुछ रात गए दुर्गा बाजार से लौटा, वो चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहा था। ज्यों ही उसने डॉक्टर साहब को हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए बैठे देखा, उसके होश उड़ गए। समझ गया कि चोरी पकड़ ली गई। इसी भय से उसने बाजार में खूब देर की थी। उसने समझा था डॉक्टर साहब कहीं सैर करने गए होंगे, मैं चुपके कटहल के नीचे अपनी झोपड़ी में जा बैठूंगा। सवेरे कुछ पूछताछ भी हुई तो मुझे सफाई देने का अवसर मिल जाएगा, कह दूंगा सरकार मेरे झोपड़े की तलाशी ले ले, और इस तरह मामला दब जाएगा। समय सफल चोर का सबसे बड़ा मित्र है, एक एक क्षण उसे निर्दोष सिद्ध करता जाता था, किंतु जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब उसके बच निकलने की कोई राह नहीं रहती। रुधिर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं, पर ताजा लहू आप ही आप पुकारता है। दुर्गा के पैर थम गए, छाती धड़कने लगी। डॉक्टर साहब की निगाह उस पर पड़ गई थी, अब उल्टे पांव लौटना व्यर्थ था। डॉक्टर साहब उसे दूर से ही देखते उठे कि चलकर उसकी खूब मरम्मत करूं, लेकिन वकील थे, विचार किया कि इसका बयान लेना आवश्यक है। इशारे से निकट

0: कई माह के पश्चात मेहरा बाबू प्रेमशंकर के बाग की सैर करने गए। वहां से कुछ अच्छी अच्छी कलमें लाना चाहते थे। प्रेमशंकर को भी बागवानी से प्रेम था और दोनों मनुष्यों में यही समानता थी, अन्य सभी विषयों में एक दूसरे से भिन्न थे। प्रेमशंकर बड़े संतोषी, सरल और सहृदय मनुष्य थे। वे कई साल अमेरिका रह चुके थे। वहां उन्होंने कृषि विज्ञान का खूब अध्ययन किया था और यहां आकर इस वृत्ति को अपने आजीविका का आधार बना लिया था। मानव चरित्र और वर्तमान सामाजिक संगठन के विषय में उनके विचार विचित्र थे, इसलिए शहर के सभ्य समाज में लोग उनकी उपेक्षा करते थे और उन्हें झक्की समझते थे। इसमें संदेह नहीं कि उनके सिद्धांतों से लोगों को एक प्रकार की दार्शनिक सहानुभूति थी, पर उनके क्रियात्मक होने के विषय में उन्हें बड़ी शंका थी। संसार कर्म क्षेत्र है, मीमांसा क्षेत्र नहीं। यहां सिद्धांत सिद्धांत ही रहेंगे, उनका प्रत्यक्ष घटनाओं से संबंध नहीं। डॉक्टर साहब बागीचे में पहुंचे तो उन्होंने प्रेमशंकर को क्यारियों में पानी देते हुए पाया। कुएं पर एक मनुष्य खड़ा पंप से पानी निकाल रहा था। मेहरा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया, वो दुर्गा माली था। डॉक्टर साहब के मन में उस समय दुर्गा के प्रति एक विचित्र ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। जिस नराधम को उन्होंने दंड देकर अपने हाथ से अलग कर दिया था, उसे नौकरी क्यों मिल गई? यदि दुर्गा इस समय फटेहाल रोनी सूरत बनाई दिखाई देता तो डॉक्टर साहब को उस पर दया आ जाती। वे संभवतः उसे कुछ इनाम देते और प्रेमशंकर से उसकी प्रशंसा भी कर देते। उनकी प्रकृति में दया थी और अपने नौकरों पर उनकी कृपा दृष्टि रहती थी, परंतु उनकी इस कृपा और दया में लेश मात्र भी भेद न था, जो अपने कुत्तों और घोड़ों से भी थी। इस कृपा का आधार न्याय नहीं, दीन पालन है। दुर्गा ने उन्हें देखा, कुएं पर खड़े खड़े सलाम किया और फिर अपने काम में लग गया। उसका यह अभिमान डॉक्टर साहब के हृदय में भाले की भांति चुभ गया। उन्हें यह विचार कर अत्यंत क्रोध आया कि मेरे यहां से निकलना इसके लिए हितकर हो गया। उन्हें अपनी सहृदयता पर जो घमंड था, उसे बड़ा आघात लगा। प्रेमशंकर ज्यों ही उनसे हाथ मिलाकर उन्हें क्यारियों की सैर कराने लगे, क्यों ही डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, यह आदमी आपके यहां कितने दिनों से है? यही 6 या 7 महीने हुए होंगे, कुछ नोच खसोट तो नहीं करता? ये मेरे यहां माली था, इसके हथलपकेपन से तंग आकर मैंने इसे निकाल दिया था। कभी फूल तोड़कर बेच आता, कभी पौधे उखाड़ ले जाता और फलों का तो कहना ही क्या, वे इसके मारे बचते ही न थे। एक बार मैंने मित्रों की दावत की थी, मलिहाबादी सुफेदे में खूब फल लगे थे। जब सब आकर बैठ गए और मैं उन्हें फल दिखाने ले गया तो सारे फल गायब। हजी कुछ ना पूछिए, उस समय उस घड़ी कितनी भद्द हुई। मैंने उसी क्षण इन महाशय को दुत्कार बताई, बड़ा ही दगाबाज आदमी है और ऐसा चतुर इसको पकड़ना मुश्किल है। कोई वकीलों ही जैसा काइया आदमी हो तो इसे पकड़ सकता है। ऐसी सफाई और ढिठाई से ढुलकता है कि इसका मुंह देखते रह जाइए। आपको तो कभी चरका नहीं दिया? अज्जी नहीं, कभी नहीं, मुझे इसने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। यहां तो खूब मेहनत करता है, यहां तक कि दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता। मुझे तो इस पर इतना भरोसा हो गया कि सारा बागीचा इस पर छोड़ रखा है। दिन भर में जो कुछ आमदनी होती है वो शाम को मुझे दे देता है और कभी पाई का अंतर नहीं पड़ता। यही तो इसका कौशल है कि आपको उल्टे छुरे मुड़े और आपको खबर भी नहीं। आप इसे वेतन क्या देते हैं? यहां किसी को वेतन नहीं दिया जाता, सब लोग लाभ में बराबर के साझेदार हैं। महीने भर में आवश्यक व्यय के पश्चात जो कुछ बचता है उसमें से 10 रुपये प्रति सैकड़ा धर्म खाते में डाल दिया जाता है, शेष रुपए समान भागों में बांट दिए जाते हैं। पिछले महीने में 140 रुपए की आमदनी हुई थी, मुझे मिलाकर 7 आदमी हैं, 20 रुपए हिस्से पड़े। अब की नारंगियां खूब हुई हैं, मटर की फलियों, गन्ने, गोभी आदि सच्ची आमदनी हो रही है, 40 रुपए से कम ना पड़ेंगे। डॉक्टर मेहरा ने आश्चर्य से पूछा, इतने में आपका काम चल जाता है? जी हाँ, बड़ी सुगमता से। मैं इन्हीं आदमियों के से कपड़े पहनता हूं, इन्हीं का सा खाना खाता हूं और मुझे कोई दूसरा व्यसन है नहीं। यहां 20 रुपए मासिक उन औषधियों का खर्च है जो गरीबों को दी जाती है। ये रुपए संयुक्त तो आय से अलग कर लिए जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। ये साइकिल जो आप देखते हैं संयुक्त तो आय से ही ली गई है, जिसे जरूरत होती है इस पर सवार होता है। मुझे ये सब अधिक कार्यकुशल समझते हैं और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं। बस मैं इनका मुखिया हूं, जो कुछ सलाह देता हूं उसे सब मानते हैं। कोई भी ये नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूं, सब के सब अपने को साझेदार समझते हैं और जीत तोड़कर मेहनत करते हैं। जहां कोई मालिक होता है और दूसरा कोई नौकर, तो उन दोनों में तुरंत द्वेष पैदा हो जाता है। मालिक चाहता है कि इससे जितना काम लेते बने लेना चाहिए। नौकर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं, उसमें स्नेह या सहानुभूति का नाम तक नहीं आता। दोनों यथार्थ में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इस प्रतिद्वंदिता का दुष्परिणाम हम और आप देख ही रहे हैं। मोटे और पतले आदमियों के पृथक पृथक दल बन गए हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। कल चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये प्रतिद्वंदिता अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है। मैंने अन्य देशों में इस घातक संग्राम के दृश्य देखे हैं और मुझे घृणा हो गई है। सहकारिता ही हमें संकट से मुक्त कर सकती है। अच्छा, तो ये कहिए कि आप सोशलिस्ट हैं। जी नहीं, मैं सोशलिस्ट या डेमोक्रेट कुछ नहीं हूं। मैं केवल न्याय और धर्म का दीन सेवक हूं। मैं निस्वार्थ सेवा को विद्या से श्रेष्ठ समझता हूं। मैं अपनी आत्मिक और मानसिक शक्तियों को, बुद्धि सामर्थ्य को धन और वैभव का गुलाम नहीं बनाना चाहता। मुझे वर्तमान शिक्षा और सभ्यता पर विश्वास नहीं। विद्या का धर्म है आत्मिक उन्नति का फल। उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्यायपरता और दयाशीलता। जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास में डुबाए, जो हमें दूसरों का रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वो शिक्षा नहीं है। अगर मूर्ख लोभ और मोह के पंजे में फंस जाए तो वे क्षम्य है, परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थ अंधता अत्यंत लज्जाजनक है। हमने विद्या और बुद्धि बल की विभूति को शिखर पर चढ़ने का मार्ग बना लिया। वास्तव में वो सेवा और प्रेम का साधन था। कितनी विचित्र दशा है कि जो जितना ही बड़ा विद्वान है उतना ही बड़ा स्वार्थ सेवी है। बस हमारी सारी विद्या और बुद्धि, हमारा सारा उत्साह और अनुराग धन लिप्सा में ग्रसित है। हमारे प्रोफेसर साहब 1,000 से कम वेतन पाएं तो उसका मुंह ही सीधा नहीं होता। हमारे दीवान और माल के अधिकारी लोग 2,000 मासिक पाने पर भी अपने भाग्य को रोया करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज मरे या जिए, मेरी फीस में बाधा न पड़े। और हमारे वकील साहब, क्षमा कीजिएगा, ईश्वर से मनाया करते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष का प्रकोप और सोने की दीवार खड़ी कर लूं। समय धन है, इसी वाक्य में हम ईश्वर वाक्य समझ रहे हैं। इन महान पुरुषों में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की जीविका हड़प जाते हैं और फिर भी उन्हें जाति का भक्त बनने का दावा है। वो अपने स्वजाति प्रेम का डंका बजाता फिरता है। पैदा दूसरे करें, पसीना दूसरे बहाएं, खाना और मूछों पर ताव देना इनका काम है। मैं समस्त शिक्षित समुदाय को केवल स्वार्थी ही नहीं वरन अनर्थकारी भी समझता हूं। डॉक्टर साहब ने बहुत धैर्य से काम लेकर पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि हम सबके सब मजूरी करें? जी नहीं, हालांकि ऐसा हो तो मनुष्य जाति का बहुत उपकार हो। मुझे जो आपत्ति है ये केवल दशाओं में इस अन्यायपूर्ण समता से है। यदि एक मजदूर 5 रुपए में अपना निर्वाह कर सकता है तो एक मानसिक काम करने वाले प्राणी के लिए इससे दुगुनी तिगुनी आय काफी होनी चाहिए, और वो अधिकता इसलिए कि उसे कुछ उत्तम भोजन वस्त्र तथा सुख की आवश्यकता होती है। मगर 5 और 5,000, 50 और 50,000 का अस्वाभाविक अंतर क्यों? इतना नहीं, हमारा समाज 5 और 5 लाख के अंतर कभी तिरस्कार नहीं करता, वरन उसकी भी प्रशंसा करता है। शासन प्रबंध, वकालत, चिकित्सा, चित्र रचना, शिक्षा, दलाली, व्यापार, संगीत और इसी प्रकार की सैकड़ों अन्य कलाएं शिक्षित समुदाय की जीवन वृत्ति बनी है, पर इनमें से एक भी धनोपार्जन नहीं करती। इनका आधार दूसरों की कमाई पर है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो उद्योग धंधे जो जीवन की सामग्रियां पैदा करते हैं, जिन पर जीवन का अवलंबन है, क्यों उन पेशों से नीचे समझे जाएं जिनका काम केवल मनोरंजन या अधिक से अधिक धनोपार्जन में सहायता करना है। आज सारे वकीलों को देश निकाला हो जाए, सारे अधिकारी वर्ग लुप्त हो जाएं और सारे दलाल स्वर्ग को सिधारे, तभी संसार का काम चलता रहेगा, बल्कि और भी सरलता से। किसान भूमि जोतेंगे, जुलाहे कपड़े बुनेंगे, बढ़ई, लोहार, राज चर्मकार सब के सब पूर्ववत अपना काम करते रहेंगे, उनकी पंचायतें उनके झगड़ों का निपटारा करेंगी। लेकिन यदि किसान न हो तो सारा संसार क्षुधा पीड़ा से व्याकुल हो जाए। परंतु किसान के लिए 5 रुपए बहुत समझा जाता है, और वकील साहब या डॉक्टर को 5,000 भी काफी नहीं। डॉक्टर, आप अर्थशास्त्र के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूले जाते हैं जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। प्रकृति ने प्राणियों को भिन्न भिन्न शक्तियां प्रदान की हैं और उनके विकास के लिए भिन्न भिन्न दशाओं की आवश्यकता है। मैं ये कब कहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करने पर मजबूर किया जाए? नहीं, जिसे परमात्मा ने विचार की शक्ति दी है वो शास्त्रों की विवेचना करे, जो भावुक हो वो काव्य की रचना करे, जो अन्याय से घृणा करता हो वो वकालत करे। मेरा कथन ये है कि विभिन्न कार्यों की हैसियत में इतना अंतर न रहना चाहिए। मानसिक और औद्योगिक कामों में इतना फर्क न्याय के विरुद्ध है। ये प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल ज्ञात होता है कि आवश्यक और अनिवार्य कार्यों पर अनावश्यक और अनिवार्य कार्यों की प्रधानता हो। कतिपय सज्जनों का मत है कि इस साम्य से गुणी लोगों का अनादर होगा और संसार को उनके सद्विचारों और सत्कार्यों से लाभ न पहुंच सकेगा। किंतु वे भूल जाते हैं कि संसार के बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े आविष्कारक, बड़े से बड़े शिक्षक धन और प्रभुता के लोभ शिक्षक बन जाते हैं। संसार में आज अनगिनत लेखक और कवि, वकील और शिक्षक उपस्थित हैं। वे सब के सब पृथ्वी पर भार रूप हो रही हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि दिव्य कलाओं में कुछ लाभ नहीं है, तो वही लोग कवि होंगे जिन्हें कवि होना चाहिए। संक्षेप में कहना यही है कि धन की प्रधानता ने हमारे समस्त समाज को उलट पलट दिया है। डॉक्टर मेहरा अधीर हो गए और बोले, महाशय, समाज संगठन का ही रूप देवलोक के लिए चाहे उपयुक्त हो, पर भौतिक संसार के लिए उस भौतिक काल में वो कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। प्रेमशंकर जी ने फिर जवाब दिया, केवल इसी कारण से अभी तक धनवानों का, जमींदारों का और शिक्षित समुदाय का प्रभुत्व बना हुआ है वकील साहब। पर इसके पहले भी कई बार इस प्रभुत्व को धक्का लग चुका है और चिन्हों से ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में फिर इसकी पराजय होने वाली है। कदाचित वो हार निर्णयात्मक होगी। समाज का चक्र साम्य से आरंभ होकर फिर साम्य पर ही समाप्त होता है। एकाधिपत्य, रईसों का प्रभुत्व और वाणिज्य प्राबल्य उसकी मध्यवर्ती दशाएं हैं। वर्तमान चक्र ने मध्यवर्ती दशाओं को भोग लिया है और वो अपने अंतिम स्थान के निकट आता जाता है, किंतु हमारी आंखें अधिकार और प्रभुत्व के मद में ऐसी भरी हुई हैं कि हमें आगे पीछे कुछ नहीं सूझता। चारों ओर से जनतावाद का घोर नाद हमारे कानों में आ रहा है, पर हम ऐसे निश्चिंत हैं मानो वो साधारण मेघ की गरज है। हम अभी तक उन्हीं विद्याओं और कलाओं में लीन हैं जिनका आश्रय दूसरों की मेहनत है। हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ती जाती है, हमारे वकील खाने में पांव रखने की जगह बाकी नहीं। गली गली फोटो स्टूडियो खुल रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या मरीजों से भी अधिक हो गई है, पर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम इस अस्वाभाविक जीवन, इस सभ्यता के तिलिस्म से बाहर निकलने की चेष्टा ही नहीं करते। हम शहरों में कारखाने खोलते फिरते हैं इसलिए कि मजदूरों की मेहनत से मोटे हो जाएं। 30 रुपए और 40 रुपए सैकड़े लाभ की कल्पना करके फूले नहीं समाते, पर ऐसा कहीं देखने में नहीं आता कि किसी शिक्षित सज्जन ने कपड़ा बुनना या जमीन जोतना शुरू किया हो। यदि कोई दुर्भाग्यवश ऐसा करे तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। हम उसी को मन प्रतिष्ठा के योग्य समझते हैं जो तकिया गद्दी लगाए बैठा रहे, हाथ पैर ना हिलाए और लेन देन पर, सूद बट्टे पर लाखों के वारे न्यारे करता हो। यही बातें हो रही थी कि दुर्गा माली एक डाली नारंगियां, गोभी के फूल, अमरूद, मटर की फलियां आदि सजाकर लाया और उसे डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व था, मानो उसकी आत्मा जागृत हो गई है। वो डॉक्टर साहब के समीप एक मोटे मोढ़े पर बैठ गए और बोला, हुजूर को कैसी कलमें चाहिए? आप बाबूजी को एक चिट पर उनके नाम लिखकर दे दीजिए, मैं कल आपके मकान पर पहुंचा दूंगा। आपके बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ सकुचाकर कहा, हाँ लड़के अच्छी तरह हैं। तुम यहां अच्छी तरह हो? जी हाँ, आपकी दया से बहुत आराम में हूं। डॉक्टर साहब उठकर चले तो प्रेमशंकर उन्हें विदा करने साथ साथ फाटक तक आए। डॉक्टर साहब मोटर पर बैठे तो मुस्कुराकर प्रेमशंकर से बोले, मैं आपके सिद्धांतों का कायल नहीं हुआ, पर इसमें संदेह नहीं कि आपने एक पशु को मनुष्य बना दिया। यह आपके सत्संग का फल है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं फिर भी कहूंगा कि इससे होशियार रहिएगा। यूजेनिक्स यानी सुप्रजनन शास्त्र अभी तक ऐसे किसी प्रयोग का आविष्कार नहीं कर सका है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य। अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन,
4: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
2: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है, और विद्या की देवी है सरस्वती।
4: बिल्कुल,
2: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
4: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
2: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
4: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है, और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
2: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
4: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा, रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं। पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे, और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
2: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
4: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
2: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेहणी, जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहूं मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
4: श्रोताओं, कबीर व रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
2: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
4: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
2: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
4: बिल्कुल,
2: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
4: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं? जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया?
2: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते?
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
2: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
4: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
2: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
4: बिल्कुल।
2: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
4: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
2: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
4: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
2: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
4: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
2: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
2: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
4: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद शास्त्र पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
2: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
4: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
2: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
4: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और यह उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
4: बिल्कुल,
2: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
4: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
2: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधि, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं। लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
4: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधी व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीति काल में अवधी का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
2: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
4: बिल्कुल,
2: जबकि अवधी में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
4: कौन सी कविता?
2: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
4: वाह,
2: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
4: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
2: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है।
4: बिल्कुल,
2: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
4: जी हाँ, खैर, जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
2: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
4: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
2: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
4: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे, सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
2: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
4: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
2: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था। इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
4: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
2: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के तीन छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
4: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
2: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
4: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढ कर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
2: और आलम यह है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
4: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
2: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
2: बिल्कुल ठीक
4: बात, साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
2: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
4: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
2: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
4: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
2: हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
4: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
2: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
4: जी।
2: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झर जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
4: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
2: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
4: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष श्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
2: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा

0: इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
1: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोच तो हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
0: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
0: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: नवे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा के गाए कुछ भजन।

कोई गाके देख दे, आ जाते हैं राम कोई, आ जाते हैं राम कोई बुला के।

ईश्वर तक जो पहुंचने का मार्ग है वो कितना सहज कितना सरल और किन किन चीजों की आवश्यकता है इस भजन के माध्यम से।

कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। इस भजन में एक नया भाव है, एक नया विचार है।

जाना था गंगा पार प्रभु, जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े जाना था गंगा पार।

तो भगवान राम ने केवट को कुछ देना चाहा, तो केवट को उसे लेने से मना कर दिया। भगवान राम ने केवट से कहा, केवट ले लो, ये तो तुम्हारी मजदूरी है और मजदूरी लेने में कोई शर्म नहीं की जाती। तो केवट ने कहा, प्रभु ये शर्म की नहीं है, तो नियम की बात है।

बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने केवट से पूछा कि मेरा और तुम्हारा काम एक कैसे। केवट ने कहा प्रभु है, और बोला

शास्त्रों और पुराणों में ये कहा गया कि भजन सुनना जितना पुण्य का काम है उसे कहीं ज्यादा भजन गाना है। इतने देर से ये गाने वाला पुण्य अकेले मैं कमा रहा हूं, इतने थोड़े से पुण्य के लिए आप लोग क्यों वंचित रह जाए। और वैसे भी आपको ये भजन अच्छा लगा, एक पंक्ति मैं गाऊंगा उसे आप लोग दोहराएंगे तो गाने वाला पुण्य आप लोगों को मिलेगा और सुनने वाला हम लोगों को।

0: क्या बात, आप लोग इतना अच्छा गा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि महिलाएं अच्छा गा रही हैं या पुरुष। अभी फैसला कर लेते हैं, पहले मैं गाऊंगा फिर महिलाएं। तैयार हो जाए महिलाएं।
1: दुनिया चले न श्रीराम के बिना,
0: थोड़ा जोर से।
1: दुनिया चले न श्रीराम के बिना,
0: ये बात।
1: राम जी चले ना हनुमान के बिना,
0: क्या बात। कुछ महिलाएं तो गा रही हैं, कुछ अपने पड़ोसी को देख रही हैं कि वो गा रही है। अब पुरुषों की बारी है।

तुम मीरा बनो तो। ये भजन अभी तक आप लोगों ने कुछ इस तरीके से सुना होगा।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा के गाए कुछ भजन सुने। अब ये कार्यक्रम खत्म होता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश का।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 148वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा और चथ्य, देवता हैं अग्नि और छंद है त्रिष्टुप।
3: मथि दद्दीम विष्टो मातरिश्वा होतारम विश्वाप्सुम विश्वदेव्यम नीयम दधुर्मनुष्यासु विक्षुस्वर्णचित्रम वपुषे विभावम। देवताओं के आवाहक सर्वरूपवान, देवताओं के निमित्त सभी यज्ञादि कर्मों में कुशल उन अग्निदेव को जब मातरिश्वा वायु ने सर्वव्यापक होकर मंथन द्वारा उत्पन्न किया, तब सूर्य देव की तरह विचित्र तेजस्विता संपन्न उन अग्निदेव को मनुष्यों के शरीरों में पोषण के लिए प्रतिष्ठित किया गया। उनकी हम प्रार्थना करते हैं। ददानमिन्न ददभंत मन्माग्निर्वरूथम मम तस्य चाकन जुषंत विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिम भरमाणस्य कारोह। अग्निदेव की स्तुति करने वाले हम याजकों को शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निदेव हमारे स्तोत्रों की मंगल कामना से प्रेरित हैं। हम स्तोताओं की प्रार्थनाओं को तथा समस्त सत्कर्मों को संपूर्ण देव शक्तियां ग्रहण करती हैं। नित्ये चिन्नु यम सदने जग्रिभे प्रशस्तिभिर दधिरे यज्ञियासः प्रसूनयंत ग्रभयंत इष्टावश्वासो नरथ्यो रारहाणाः। जिन अग्निदेव को याजक गण प्रतिदिन यज्ञ गृह में शीघ्रता पूर्वक स्तुतियों सहित प्रतिष्ठित करते हैं, उन्हें याजक गण यज्ञार्थ तीव्रगामी रथ के घोड़ों की तरह विकसित करते हैं। पुरुणी दस्मो नीरिणाति जंभई राद्रोचते वन आ विभावा आदस्य वातो अनुवाति शोचिरस्तुर न शरिया मसना मदनु द्यून। अग्निदेव ज्वाला रूपी दांतों से वृक्षों को प्रायः विनष्ट कर देते हैं। वे जंगल में सभी ओर प्रकाश बिखेरते हैं। इस अग्नि की ज्वाला इसके समीप से वायु की अनुकूलता पाकर छोड़े गए बाण की तरह वेग से आगे बढ़ती है। न यम रिपवो न ऋषण्यवो गर्भे संतम ऋषेणा रेशयन्ति अंधा अपश्या न दभन्न मिख्या नित्यास ईम प्रेतारो अरक्षन। गर्भ में स्थित अग्निदेव को शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते। अज्ञानी दृष्टि विहीन एवं ज्ञान का दंभ भरने वाले भी जिसकी महिमा को कम नहीं कर सके, उन अग्निदेव को नित्य यज्ञ कर्म द्वारा संतुष्ट करने वाले मनुष्य सुरक्षित रहते हैं।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 148वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। भगवान की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है।

और सब घट व्यापक साइया अगम अपार अलेख। तो जो वह एक न जा

ईश्वर की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है। ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती।

ईश्वर के लिए एकांत में जो विलाप करता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में मिलते हैं। प्रभु से मिलने की वेदना होनी चाहिए।

ईश्वर के लिए एकांत में जो विलाप करता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में मिलते हैं। प्रभु से मिलने की वेदना होनी चाहिए।

परमात्मा को जो प्रसन्न कर सकता है वह संसार को भी प्रसन्न कर सकता है। प्रभु की कृपा होने पर संसार स्वयं अनुकूल हो जाता है।

इसी रचना के साथ आज का कार्यक्रम भक्ति संगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। आंध्र प्रदेश की नल्ले मल्ले पहाड़ियों के पार सघन वनों से अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा थामा था अल्लूरी सीताराम राजू ने। लोकहित और स्वतंत्रता के लिए समर्पण के भाव का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आज भी इलाके के वनवासी उन्हें अपना उद्धारक और देवता के रूप में याद करते हैं। वीर क्रांतिकारी सीताराम राजू बलिदान की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे। ब्रिटिश शासन ने सोचा कि बागियों से अब मुक्ति मिली, पर ऐसा हुआ नहीं।

राजू के दोनों ही विश्वास पात्र लेफ्टिनेंट गौतम डोरे और मल्लू डोरे सक्रिय हो उठे और अपने साथ ही राजू की आन निभाने का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। एक दिन जब गौतम डोरे एक गांव में पहुंचे तो गांव के एक आदिवासी ने उन्हें बताया कि उसकी खोज में पुलिस का एक दल कुछ समय पूर्व ही वहां पहुंचा था। सभी गांव वालों से पुलिस दल के मुखिया ने पूछताछ की थी पर गांव में से किसी ने कोई भेद नहीं दिया। ग्रामीण आदिवासी ने गौतम को परामर्श दिया कि कुछ दिन के लिए या तो वे लोग कहीं और चले जाएं या अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को बंद रखें। गौतम के दल को यह परामर्श पसंद आया और लगभग एक माह तक उन्होंने कोई वारदात नहीं की। पुलिस ने समझा कि क्रांतिकारियों का दल भाग खड़ा हुआ है।

पुलिस ने उस क्षेत्र को छोड़ने से पहले अंतिम तलाशी लेना चाहिए। 7 जून 1924 को पुलिस का विशाल दल 3 समूहों में बट गया और हर एक समूह ने क्रांतिकारियों के छिपने की सभी संभावित जगहों की तलाशी लेना शुरू कर दी। पुलिस के एक समूह को नदी के बीहड़ों में 7-8 क्रांतिकारियों का दल दिखाई दिया। पुलिस के उस समूह ने क्रांतिकारी दल पर गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस के शेष 2 समूह भी वहां पहुंच गए और गोलियां दागने में वे भी शामिल हो गए। गौतम डोरे ने पुलिस के 3 समूहों का डटकर मुकाबला किया। उनके ऊपर 3 तरफ से गोलियां चल रही थीं और वे पुलिस के 3 समूहों पर गोलियां दागकर पीछे धकेल रहे थे। अंत में बहुसंख्यक और सुसज्जित पुलिस दल के सामने गौतम का दल अधिक समय तक मुकाबला नहीं कर सका। उनके कुछ साथी मारे गए और वे स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता की स्वाधीनता के लिए उन्होंने मृत्यु का वरण किया।

गौतम डोरे का भाई मल्लू डोरे अकेला रह गया। घायल हो जाने के कारण वो किसी दूर स्थान तक नहीं जा सके और एक दिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। मल्लू डोरे पर मुकदमा चला और 19 जून 1924 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह लूरी सीताराम राज द्वारा किया गया फितूरी विद्रोह का दमन कर दिया गया। लगभग सभी आंदोलनकारियों ने वीरता के साथ मृत्यु का वरण कर शहीद होने का गौरव प्राप्त किया। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम आमने सामने का। इस कार्यक्रम में आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा को।
2: उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे लाइट आना स्टार्ट किया, लोग अपने से लाइट बनाने लगे, बॉल 1000 पावर का बॉल लगाकर ऐसे करके, वो ढक्कन टीन होता था उससे लाइटिंग करते थे और अपने हाथ से उसको चलाते थे। अब धीरे धीरे देखिए कैसा टेक्निक चेंज हुआ। हाँ, बड़े बड़े मिक्सर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो ऐसे ऐसे चेंज होता चला गया।
1: वो जन योद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह में शिरकत करने भोपाल आए और जन योद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह में मंचन हुआ नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह का।

0: इस मौके पर हमने अभय सिन्हा से बात की। कार्यक्रम के पहले हिस्से में आप सुनेंगे वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा से बातचीत, और उसके बाद नाटक वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश प्रस्तुत किए जाएंगे। तो अब आपसे मुखातिब हैं वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा।
1: मेरा नाम अभय सिन्हा है और मैं पटना से आया हूँ। हमारी संस्था है प्रांगण, राष्ट्रीय नाट्य उत्सव में हमारा नाटक है बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के योद्धा थे, जो बिहार में सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं, और स्वतंत्रता सेनानी के अलावा ये देश के लिए बहुत किया इन्होंने।
2: सर, थोड़ा सा आपके बारे में बात करेंगे, आपका रंगकर्म की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और क्या थिएटर की दुनिया में आप खुद ब खुद चले आए या किस्मत आपको ले आई?
1: देखिए, बचपन से ही शौक था। हम तो जब क्लास 5th-6th में पढ़ते थे उस समय से, मतलब हमारा ये है कि 1974-5 से हम रंगमंच पे हैं। 1974-75 से हम रंगमंच पे हैं। काले बाल से वाइट बाल हो गया हमारा, और हम लगातार रंगमंच कर रहे हैं, और किसी भी तरह का कोई नौकरी आज तक नहीं किया और रंगमंच की सेवा कर रहे हैं। और अचानक आना ही कहेंगे, और शौक तो था ही, अचानक आना हुआ कि हमारे गुरु थे, हमें ट्यूशन पढ़ाते थे, वो हमारे परिचित के भी थे, मेरे बड़े भैया के मित्र थे, वो एक संस्था से जुड़े हुए थे, तो हम ऐनक के सामने कभी कभी ऐसे डायलॉग बोलते थे। और उसके पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें शिक्षक दिवस पे हम रंगमंच पे नाटक करते थे, छोटे छोटे नाटकों करते थे। तो उस समय मंच क्या स्कूल के मंच पे होते थे, वो तो बहुत बड़ा मंच नहीं होता था, लेकिन वही जो भैया के मित्र थे, हमें जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्होंने आकर कहा कि अभय नाटक करोगे? हम बोले हाँ एकदम करेंगे। तो बोले चलो करते हैं। तो एक संस्था थी उस समय पटना में अभियान करके, उससे हम जुड़ गए। तो एक हमें रोल तो मिला नहीं, प्रॉम्प्ट करते रहे, और उसके धीरे धीरे करेक्टर अचानक क्या हुआ कि वो आया नहीं, और वो क्या हुआ कि मतलब वो थोड़ा सा आए, दो चार दिन आए नहीं आए, उसका प्रॉक्सी हम करने लगे। तो प्रॉक्सी करने लगे तो उसका संवाद याद आ गया, तो जो डायरेक्टर थे वो लगे भाई तुम करो अब इसको। हम किए तो बहुत बढ़िया कर गए, एक प्रॉम्प्टर भी थे, प्रॉक्सी भी करते थे। उसके बाद जब करने लगे और आज तक लगातार
2: दोनों ही चीज़ें हैं, किस्मत भी ले आई और आपको शौक भी था।
1: और अब ये ऐसा हो गया कि अब रंगमंच पे अभिनय धीरे धीरे धीरे धीरे समाप्त हो गया, और रंग निर्देशक की ओर हम बड़े अग्रसर हो गए, और अब अभिनय बहुत ही कम करते हैं। अगर किसी और के निर्देशन में अगर काम होता है तब हम करते हैं, हम अपने निर्देशन में खुद अभिनय
2: नए लोगों को
1: प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
2: सर, एक चीज़, बचपन आपका कहाँ बीता ये ज़रूर पूछूंगा, और उन दिनों में कौन से वो रंगकर्मी थे जिनके आप लोग होते ना मुतासर होते हैं कि जैसे फिल्मी एक्टर्स, तो वो क्योंकि नाटक अब तो खैर बहुत होने लगे, पहले इतने होते तो होंगे लेकिन इतना आसान नहीं था, दूर दूर जाना आना आसान भी नहीं था, सफ़र करना भी, तो वो कौन से रंगकर्मी थे जिनको देखकर आप प्रभावित हुए और फिर आगे बढ़ते चले गए?
1: वो हमारे गुरु थे, हिंदुस्तान के बड़े ही चर्चित नामी रंग निर्देशक थे सतीश आनंद, जिसको जो भी रंगकर्म करते हैं वो हर लोग जानते हैं कि सतीश आनंद क्या चीज़ है। तो हम उनके ही सानिध्य में थे और वही हमारे गुरु हैं, और हमने छोटे छोटे जो नाटक किए उसके पहले एक अजय के सिन्हा हुआ करते थे, उनके निर्देशन में भी हमने एक दो नाटक किया था। लेकिन जो गुरु, जिनको गुरु माना जाता है, प्रथम हमारे तो अजय के सिन्हा ही थे, लेकिन ये जो गुरु थे हमारे, वो उनसे हमने बहुत कुछ गेन किया और उनको देखकर हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, और उनके ही सीखे हुए चीज़ों को अब हम कोशिश करते हैं कि मंच पे करें।
2: फिर एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा सुनने वालों के लिए कि नाटक लोग खेलते हैं, हर जगह होता है, भारत में भी होता है, बाहर भी होता है, जो जनता होती है वो किस तरह से समझे, क्योंकि कन्फ्यूज रहती है कि नाटक क्या है, फिल्में क्या हैं, डॉक्यूमेंट्रीज क्या हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। और एक ये भी चीज़ हम सुनते हैं कि जो नाटक की दुनिया से, थिएटर की दुनिया से जो एक्टर्स आते हैं उनको ये माना जाता है कि वो अच्छे एक्टर हैं।
1: देखिए, जब तक दर्शक जो होते हैं, जो फिल्म की ओर ज़्यादा अग्रसर रहते हैं, जब तक वो देखेंगे नहीं रंगमंच को, अगर वो एक बार रंगमंच को देख लें, अगर अच्छे निर्देशक को देख लें, उनको रंगमंच के प्रति झुकाव होगा। जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेगा वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा और वही देश में नाम कमाएगा, और वही आगे बढ़ेगा, वही चलचित्र पे जाएगा, वही फिल्मों में काम करेगा, सीरियल में काम करेगा और आगे बढ़ेगा। दर्शक को, रंगकर्मियों को, रंगमंच को समझना चाहिए और समझना होगा, धीरे धीरे झुकाव हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि झुकाव नहीं है, पहले बहुत झुकाव था, बीच में अलग हुआ, फिर वापस हो रहे हैं दर्शक। अच्छे अच्छे राइटर का नाटक आ रहा है, अच्छे अच्छे नाटककारों का नाटक आ रहा है, तो ये है हमारा।
2: सर एक दो सवाल, क्योंकि आपको समय की कमी है, जब आप रंगमंच करते थे शुरुआत की और अब क्या फ़र्क आपने देखा होगा, टेक्नोलॉजी में फ़र्क हुआ होगा, नए आर्टिस्ट आते हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं? एक चीज़ उसमें और जोड़ देता हूँ कि कहा जाता है कोई भी काम करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अलावा और भी नाटक में तो सभी संगीत का भी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन पढ़ना, क्योंकि पढ़कर जो आता है तो तैयारी कुछ अलग किस्म की होती है। तो आप इतने साल हो गए आपको, 50 साल से ऊपर, तो क्या फ़र्क आपको नज़र आता है?
1: देखिए, जब हम नाटक की शुरुआत किए थे उस समय देश में टाइपराइटर था, टाइप लोग करते थे, अब टाइपराइटर कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया, हाँ अब कंप्यूटर आ गया, ठीक है ना, अब कंप्यूटर पर लोग टाइप करने लगे, अब धीरे धीरे कंप्यूटर भी गुम हो रहा है और मोबाइल आ गया, मोबाइल पे लोग बोल के हाँ टाइप कर ले रहे हैं, उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, उससे काम करते हैं। अंतर यह है कि पूरा टेक्निक चेंज हो गया, हाँ अब तो क्या LED आ गया, तो ये वो आ गया, लाइट वो लाइट आ गया, ये साउंड सिस्टम आ गया, वो साउंड सिस्टम आ गया, और पहले इतना नहीं था। पहले लोग अभी जैसे स्टार्टिंग लोग करते थे, पेट्रोमैक्स पे नाटक करते थे, लालटेन पे नाटक करते थे गांव गवई में। उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे लाइट आना स्टार्ट किया, लोग अपने से लाइट बनाने लगे, बॉल 1000 पावर का बॉल लगाकर ऐसे करके, वो ढक्कन टीन होता था उससे लाइटिंग करते थे और अपने हाथ से उसको चलाते थे। अब धीरे धीरे देखिए कैसा टेक्निक चेंज हुआ, हाँ बड़े बड़े मिक्सर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो ऐसे ऐसे चेंज होता चला गया। तो चेंज होता गया तो निश्चित तौर पर पहले की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। तो ये है टेक्निकल, उस समय बहुत तो चेंजे तो आए, बहुत से चेंजे आए। पहले लोग क्या करते थे, मंच बनाते थे, और हमेशा नाटक नहीं होता था, पहले किसी पर्व त्यौहार रीति ये होता था, जैसे दुर्गा पूजा हो रहा है, दीपावली हो रहा है, उस समय होते थे। अभी क्या है, अब हॉल बन गया, बहुत सारे प्रेक्षागृह खुल गए नाटक के लिए, अब लोग उसमें लाइट है, साउंड है, सब है, अब जाते हैं लोग मंच पे करते हैं नाटक।
2: सर आखिरी सवाल, जो नए युवा रंगकर्मी आना चाहते हैं तो उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो किन बातों का ख्याल रखें, और दूसरा क्या, जैसे आपने कहा कि आपने पूरे जीवन नाटक ही किया, घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि भाई नौकरी करो, इससे क्या होगा, पहले तो ज़्यादा ही होता था अब शायद, कि तो क्या इसमें इनकम भी लोगों की हो जाती है, कोई बहुत से लोग चाहते हैं सिर्फ नाटक ही करें, तो किन बातों का युवा ख्याल रख कर आए?
1: देखिए क्या है, आज के युवा पीढ़ी भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक ही बार 10-10 सीढ़ी फान के 100वें तल्ले पे पहुंच जाए। नहीं, आप जब 100वें तल्ले तक आप पहुंचेगा तब तक टाएं टाएं फेस वहीं आप लुढ़क जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। आप एक एक सीढ़ी चढ़ें, और एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे आप निश्चित तौर पे आप 100 सीढ़ी पे आराम से पहुंच जाएंगे और नाम कमाएंगे। आज के युवा पीढ़ी को हम यही कहना चाहते हैं कि वो केवल भागने की कोशिश न करें, एक दो नाटक करें, निर्देशक बनने की कोशिश करते हैं, नहीं, आप पढ़िए, किताब पढ़िए, कुछ समझिए, जितने भी चरित्र उसमें हैं उसके बारे में सोचिए, उसको पहले अपने आप में इम्प्रोवाइज कीजिए, आप खुद पहले उसको देखिए, आप खुद अपने ऊपर उसका इस्तेमाल करिए, तब आप उस करेक्टर को किसी को दीजिए और उनको उस तरह से कराइए। अच्छा, बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते, और पढ़ने में भी ऐसा नहीं कि एक दिन में एक घंटे में आप पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ के चल दिए नाटक को, नहीं, आप उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, फिर उसका बैकग्राउंड के बारे में सोचिए, उसके म्यूजिक के बारे में सोचिए, उसके लाइट के बारे में सोचिए, उसके ड्रेस के बारे में सोचिए, उस पर रिसर्च आपको करनी होगी।
2: सर भोपाल पहले आए हैं क्या? पहली
1: बहुत बार भोपाल आए।
2: अच्छा,
1: ये हमारा भोपाल चौथा या पाँचवा मंचन है हमारे नाटक का यहाँ पे, और यहाँ के जो भी सीनियर हैं रंगकर्मी हैं वो सबसे मेरा बहुत व्यक्तिगत परिचय है, व्यक्तिगत रिलेशन है सारे लोगों से, तो ये सारे लोग हैं, सब लोगों से मेरा बहुत अच्छा ये है,
2: बहुत धन्यवाद सर।
0: और ये है नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश।
3: भोजपुर में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह की तो बात ही निराली थी।

0: यह सोचने का समय नहीं है महाराज। आप में क्या है, संभव है। आप नहीं जानते पर हम सब जानते हैं, तभी तो सारी बाधाओं को अपने पैरों से कुचलते हुए, भयंकर नदियों को पार करते हुए, जंगली पशुओं से युद्ध करते हुए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं महाराज। आज कौरों के विरुद्ध हर तरफ लड़ाई चल रही है, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, सभी जगह बगावत हो रही है महाराज। दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह पर, कानपुर के नाना साहब, कालपी के राव साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तो और महाराज लोहे से बने महावीर तात्या टोपे इस जंग के नेता हैं। क्या हमारा बिहार इस आजादी की लड़ाई में पीछे रह जाएगा? क्या शेर कुंवर सिंह की गरी जगदीशपुर का नाम गुल हो जाएगा महाराज?
1: बिहार भी इस आजादी की लड़ाई में आगे आएगा। और दादाजी, आपको यहाँ का सेनापति बनना पड़ेगा।
2: हाँ, दादा, हम जानते हैं स्वतंत्रता देवी बलि चाहती है। हाँ। मानो रक्त पीकर वो अवश्य प्रसन्न होगी।
1: हाँ दादा,
2: घोरे अवश्य यहाँ से भागेंगे और हमारा देश अवश्य आजाद होगा। रंजीत
0: महाराज,
2: कहाँ है हमारा राजमुकुट? शीघ्र ले आइए।
0: जो आ गया महाराज।
2: आज आज हमारा स्वप्न
0: महाराज
2: हमारी दाहे है आजाद जगदीशपुर का राजमुकुट है। आज से हमारे बाद आप यहाँ के राजा हुए।
1: दादा, दादा,
2: हमारे आप तो जानते हैं कि हम पुत्र बहुत नहीं, लेकिन हमें उसका जरा भी अफसोस नहीं है। आप ही हो मेरे योग्य उत्तराधिकारी। आज के बाद आप दिलीपपुर के ही नहीं, जगदीशपुर के भी राजा हुए।
1: लेकिन आप दादाजी,
2: हमारी चिंता छोड़िए अमर। एक बात
1: दादा
2: और सुन लो मेरे योग्य भाई।
1: हाँ दादा।
2: यही है ओ जननी जन्म भूमि, जिसे बचाने के लिए हमने अंग्रेजों से गहरी लड़ाई मोली, अपने शरीर के अंग को कुर्बान कर दिया। देख रहे हैं हमारा ये दायरा, इसे किसी दुश्मनों ने नहीं काटा है और ना ही किसी बीमारी ने इसे नष्ट किया है। इसे स्वयं हमने काटा है, मां गंगा को अपने हाथ की बलि दी है। ये स्वतंत्रता अनमोल है अमर।
1: हाँ दादा,
2: इसे बचा कर रखना होगा मेरे भाई। रखना होगा, आने वाली संतान के लिए, उनके सुख के लिए।
1: दादा, दादा, मेरे प्राण के साथ यह धरोहर रहेगा। प्राण दूंगा पर आजादी नहीं।
2: बहुत और नहीं, भगवान शंकर आज हमारा यज्ञ पूरा हुआ, हमें छुट्टी तो दे, हमें छुट्टी दो। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत
3: दादा।
4: जगदीशपुर के महल की एक एक ईंट, यहाँ के हरी भरी खेत, कल कल नादनी गंगा की प्रखर धारा और भारत का शीतल पवन युग युग तक इस देश की संतान को इस वृद्ध की वीरता के गीत सुनाया करेंगे। आइए हम और आप इस महान वीर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।
5: मगर किया जो जगदीशपुर के बूढ़े शेर ने गजब का काम, आज भी दुनिया करती इस दिन अमर कुंवर सिंह को सलाम। तो सुधीजन गुरजन ध्यान लगा के

यह था आज का कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें पहले आपने बातचीत सुनी वरिष्ठ रंगकर्मी अभय सिन्हा से, और कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आपने सुने नाटक बाबू वीर कुंवर सिंह के संपादित अंश, जिसका निर्देशन किया अभय सिन्हा ने जनयोद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह में। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रचना पाठ। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रभात साहित्य परिषद भोपाल द्वारा हिंदी भवन में, जिसमें रचनाकारों ने अपनी रचनाएं सुनाई।
1: अब हम आवाज दे रहे हैं श्री अवनींद्र खरे अंशुमान साहब।
2: जीवन से बढ़कर इस जग में जीवन में कोई कमी ना थी और कोई मीठा गान नहीं है। जीवन में कोई कमी ना थी। गीतकार हूँ नियत सनातन और गीत है अपना जीवन। गाते जाओ इस जीवन को गाकर बनकर ए जग चेतन। जीवन में कोई कमी ना थी और सारा नव वीरान नहीं है। जीवन से बढ़कर इस जग में और मीठा कोई गान नहीं है। अनजाना स्वर है इस जीवन का। चाहे जो स्वर में तुम गाओ सुधा सरस है दोनों अपने। चाहे जो सुख से पी जाओ पथ अपना मंजिल अपनी। जीवन में कोई कमी ना थी विधि में भी कुछ व्यवधान नहीं है। जीवन से बढ़कर इस जग में जीवन में कोई गान नहीं है। पहर मिले हैं चलने को ये थकने का कोई अर्थ नहीं है। पथ ही जीवन सम्मुख अपने चलते जाना व्यर्थ नहीं है। पथ को ही यदि मंजिल समझो जीवन में कोई कमी न थी। फिर ही अपने सुख का मुझे ध्यान नहीं है। जीवन से बढ़कर इस जग में मीठा कोई गान नहीं है और जीवन में कोई कमी नहीं थी। जीवन में कोई कमी नहीं। बहुत
1: हमारे बीच उपस्थित हैं श्री केपी गुप्ता साहब।
3: साक्ष्य गिरे हैं कोई कमी नहीं थी फिर भी साक्ष्य गिरे हैं पर हारे नहीं हैं।
1: क्या बात।
3: पेड़ घर छूटा है पर हौसला नहीं। पेड़ घर छूटा है हौसला नहीं। अपने सीने पर बूंदों को संभालेंगे उसकी बूंदें जब गिर जाती हैं पत्तों पर। अपने सीने पर बूंदों को संभालेंगे जब तक बनेगा बेरन हवा से लड़ेंगे। जब तक बनेगा बेरन हवा से लड़ेंगे क्रूर काल से भी। यह मालूम है कि हम जमी से आए हैं और उसी के होकर रह जाएंगे। यह सच स्वीकार करना होगा नव निर्माण के लिए। और ये बूंदे नहीं हैं, जल का दिल है। रखेंगे दिल से दिल पर। ये मिलन क्षणिक है पर सोचो तो यही जीवन है। आज मुलाकात है कल विछोह भी होगा और वियोग भी होगा पर प्यार जिंदा रहेगा। जमी में दफन होकर पत्तों की तरह इस पावन धरा में अनंत काल के लिए। थैंक यू।
1: हम आवाज दे रहे हैं श्री नीरज दुबे साहब को बहुत ही सम्मान के साथ। एक बार करता स्वागत करते हैं।

0: फेरे कल्पों की थी प्रतीक्षा, कब होंगे साथ फेरे, बनूं परछाई उसकी उजली, ऐसे है उसका होना, जो दूर तो सब मिट्टी, जो दूर तो सब मिट्टी, हो पास खरा सोना।
1: बहुत ही सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूँ श्रीमती प्रेमशीला सिंह।

बदली व भाषा बदल दिए, बोली भी अपनी बदली व भाषा बदल दिए, देश अपना छोड़ हम विदेशी हो गए, देश अपना छोड़ हम विदेश

0: श्री दिनेश भदौरिया सेठ साहब को। आइए सर।
1: यूं तो तुम्हारे प्यार में कोई कमी न थी।
2: क्या बात है।
1: यूं तो तुम्हारे प्यार में कोई कमी न थी, बिछुड़े हुए मिले हों वैसी नमी न थी। यूं तो तुम्हारे प्यार में कोई कमी न थी, बिछड़े हुए मिले हों वैसी नमी न थी। दिल था मेरा परिंदा यूं आसमान का, दिल था मेरा परिंदा यूं आसमान का, पैरों के नीचे फिर भी मेरे जमीन थी। पैरों के नीचे मेरे फिर भी जमीन थी। तारे थे आसमां था, आगोश में थे हम तुम। तारे थे आसमां था, आगोश में थे हम तुम। रफ्तार जिंदगी की लेकिन थमी न थी। रफ्तार जिंदगी की लेकिन थमी न थी। थे इंतजाम सारे, खुशबू थी रंगते थी। थे इंतजाम सारे, खुशबू थी रंगते थी, पर दरमियां हमारे बस बरहमी न थी। बस दरमियां हमारे बस बरहमी न थी। थे इंतजाम सारे, खुशबू थी रंगते थी, पर दरमियां हमारे बस बरहमी न थी। पहचान थी पुरानी, रस्मों रिवाज भी थे। पहचान थी पुरानी, रस्मों रिवाज भी थे। रुखसत के वक्त वाली लेकिन गमी न थी। रुखसत के वक्त वाली लेकिन गमी न थी। धन्यवाद।
0: श्री उमेश गर्ग आरोही साहब, बहुत ही सम्मान के साथ एक बार करता है स्वागत कर।
3: तुम हमारे सामने बैठी रहो बस, तुम हमारे सामने बैठी रहो बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए अब कहीं कुछ। और तुम मेरे कानों में जब कुछ बोलते हो, तुम मेरे कानों में जब कुछ बोलते हो, मैं नहीं सुनता किसी की तब कहीं कुछ। और मैं हवा के रुखों को अपनी तरफ मोड़ लूंगा, मैं हवा के रुखों को अपनी तरफ मोड़ लूंगा, खुशबू अपनी तुम लुटा दो अब कहीं कुछ। तुमको ऊंचाइयों पर अभी कुछ जाना है, और ऊंचा मैं तुम्हें उठाऊंगा अब कहीं कुछ। वो जिसे समझा नहीं सकता कभी अब, वो जिसे समझा नहीं सकता अभी अब, थी वो मेरी है वो मेरी अब नहीं कुछ। और जब थे तुम साथ हमारे कोई कमी ना थी, जब थे तुम साथ हमारे कोई कमी ना थी, चले गए तुम नहीं रहा अब कहीं कुछ।
0: धन्यवाद। जनाब ताहा अल हुसैनी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे तशरीफ लाएं।

परिंदगी बगैर तेरे जिंदगी नहीं, मुझको

0: और अब मैं आवाज दे रहा हूँ श्री प्रदीप कश्यप जी को बहुत ही सम्मान के साथ।
1: गहरे थे जख्म, दर्द में कोई कमी न थी। गहरे थे जख्म, दर्द में कोई कमी न थी। हमने सुखों की चाह भी दिल में रखी न थी। हमने सुखों की चाह भी दिल में रखी न थी। और बर्बाद हो गए थे जो हम जिसके प्यार में, बर्बाद हो गए थे हम जो जिसके प्यार में। धोखे की हमको उससे उम्मीद ही न थी। धोखे की हमको उससे उम्मीद ही न थी। धोखे की हमको उससे उम्मीद ही न थी। वो कांटों ने चुपके दर्द ना जिसको कभी दिए। कांटों ने चुपके दर्द ना जिसको कभी दिए। गुलशन में एक भी कली ऐसी खिली न थी। गुलशन में एक भी कली ऐसी खिली न थी। गुलशन में एक भी कली ऐसी खिली न थी। और जिस ओर हमने दीप जला करके रख दिए, जिस ओर हमने दीप जला करके रख दिए, उस ओर रात की ये घनी तीरगी न थी। उस ओर रात की ये घनी तीरगी न थी। और जिसने हमारा साथ मुसीबत में है दिया, जिसने हमारा साथ मुसीबत में है दिया, उस शख्स से हमारी कभी दोस्ती न थी। उस शख्स से हमारी कभी, उस शख्स से हमारी कभी दोस्ती न थी। और कश्यप सभी को अपना सगा मानते रहे। कश्यप सभी को अपना सगा मानते रहे। नफरत तो हमने दिल में जरा भी रखी न थी। नफरत तो हमने दिल में जरा भी रखी न थी। बहुत क्या बात है।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है।
1: अब आपके सम्मुख दो निर्गुणी पद सुनाती हूँ। पहला पद गोरखनाथ जी का है। दोनों ही पद ऐसे हैं जिन्हें मालवा

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थीं कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

स्थापना रंग महोत्सव 20 जून तक आयोजित किया गया है, जिसमें 17 जून की शाम आले माटी आले राज की प्रस्तुति दी गई, जिसके निर्देशन किया कन्हैयालाल कैथवास ने। आले माटी आले राज यानी मेरी मिट्टी मेरा राज। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर स्थापना रंग महोत्सव 4 दिनों तक चलेगा। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।

0: टिंटा फॉरेस्ट का टिंटिंटा अब फायर परसेंट टिंटिंटिंटा।
1: बाबा बता रहे हैं कि तुम लोगों ने जंगल काट दिए और सीमेंट के जंगल बना दिए, तो गर्मी तो पड़नी है ना।
0: Sidolinta! Sidolinta!

जंगल देखा, पशु देखे और पक्षी भी, सतपुड़ा की छाती देखी, देखा दृश्य अनोखा भी। हे बड़ा देव, मोरे महादेव, छुपे है तो में कितने भेद, कैसन ये संसार बनाया, अद्भुत है भाई जा की माया। ऊंचो ऊंचो ताड़ अनेक, सुंदर सुंदर साल को पेड़, नदी नर्मदे निर्मम धारो, गाय गीत दापती प्यारो, कितनी भारी बनो आकृति, झुके विंध्य बड़े कीर्ति। हे बड़ा दे,

0: आंखें दे दे, देखकर रू को माथा एक एक मुंह और एक नाक बना। हे बड़ा देव, रख जीव का नाम मानुष और फूक दे उमे प्राण।
1: भक्त, तू मेरा परम भक्त, तुझसे करूं मैं चिंता व्यक्त। मन धन कर मन सृष्टि बनाऊं तो मानव रच उस पे क्यों आग लगाऊं।
0: हे बड़ा देव, तू ए ही जगत का स्वामी, बिन तेरी इच्छा करे कौन मनमानी। काम कला को लागे व्यर्थ और मानव बिनी का क्या है। दास मैं खुद को तब ही मानू जब तो से मानुष का उद्गम जानू।
1: भक्त, ये तेरी कैसी इच्छा, अरे क्यों मांगे हमारों की भिक्षा।
2: चलो

Yeah.

माटी दे दो फेंक वरना बोले।

ये थी रेडियो रिपोर्ट स्थापना रंग महोत्सव की। अगली रेडियो रिपोर्ट तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

0: फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: भारत की वीरांगनाओं में अहिल्याबाई का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद जब वे मालवा की शासक बनी तो राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। राजकोष खाली था और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उस पर उनके महामंत्री ने सैनिक विद्रोह करा दिया, लेकिन अहिल्याबाई बुद्धिमान भी थी और साहसी भी। उन्होंने विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। उसके बाद शुरू हुआ राज्य में सुधार का सिलसिला। उन्होंने न सिर्फ सेना का नए ढंग से गठन किया बल्कि नारी सेना को भी सुदृढ़ बनाया। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर नए सभासद नियुक्त किए गए। उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिनमें कलकत्ते से बनारस तक की पक्की सड़क भी शामिल थी। सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनाकर लुटेरों को नियंत्रित किया गया। इससे राज्य का व्यापार बढ़ा और खाली राजकोष भरने लगे। रानी अहिल्याबाई एक धर्मपरायण शासक थीं। उनके राज्यकाल में ही सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। मालवा के लोग आज भी अहिल्याबाई को याद करते हुए उनके गीत गाते हैं। राजबाड़ा और होलकर शासकों की छत्रियां आज भी अहिल्याबाई के यश और गौरव का गान कर रही हैं।
3: मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती ओए मेरे देश की धरती ओ सल्लो ए क्या किताब में मुंह डाल के बैठा है। अरे काम कौन तेरा ताऊ करेगा हैं?
4: क्या कक्का फिर कर दिया डिस्टर्ब। बड़े मुश्किल से आधी किताब पढ़े थे, अब फिर शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
3: अबे चल ओए बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है हैं? अरे मूलमती तेरे ताऊ ने पढ़ी है कभी कोई किताब हैं? अरे जरा दिखा तो कौन सी पोथी बांच रहा, दिखा जरा दिखा।
4: छोड़ो ना काका।
3: अरे दिखा तो हैं? वीरांगना अहिल्याबाई तो ये घोंट रहा था 2 हफ्ते से।
4: आओ काका
3: चल चल सुना क्या पढ़ा, चल बता, चलो जा शुरू।
4: हम कहाँ पढ़े?
3: अरे
4: कहा तो आप डिस्टर्ब कर दिए, अब शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
5: अरे कक्का राम राम
3: राम राम राम राम राम राम।
5: ओए सल्लू कैसा है तू?
4: अरे मस्त एकदम चकाचक।
3: अरे आजा राजू आजा। अरे ये सल्लू कैसा होगा भैया, हमेशा की तरह आराम से है। खैर वो सब छोड़, ये बता कि इस बार इधर को कैसे?
5: अरे बस कक्का छुट्टियों में जरा घर आया था।
3: हाँ।
5: कॉलेज शुरू हो गया ना तो वापस इंदौर जा रहा हूँ। हाँ। अब देखो बस कब तक आती है कक्का।
3: अच्छा, तो इंदौर जा रहे हो हैं? फिर तो भैया बहुत सही टाइम पे आए हो तुम। अभी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई की तो बात चल रही थी।
5: देवी अहिल्याबाई?
3: हाँ।
5: अरे उनके नाम पे तो कक्का इंदौर में यूनिवर्सिटी भी है।
3: सवा सवा। अरे तुम मिले जानकार है। तो चलो भाई जरा हमारे सल्लू को कुछ बताओ उनके बारे में, बताओ।
5: अरे काका आप तो टांगे खींचने लगे, मुझे क्या मालूम उनके बारे में। अरे कुछ भी नहीं मालूम।
3: लो फिर वही ढाक के 3 पात। अरे ऐसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। अरे भाई इंदौर में राजबाड़ा गए हो कभी?
5: अरे वहाँ तो रोज अपना उठना बैठना है काका।
3: अरे भैया राजबाड़ा और उसके पास बनी छतरियाँ अहिल्याबाई होलकर के राजवंश की निशानी है।
5: ऐसा?
3: हाँ। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल डब्बा निकले यार। अब कौन पूरी करेगा अहिल्याबाई की कहानी?
5: अरे आप और कौन कर?
3: अरे मैं। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, अरे ढेर सारा काम पड़ा है।
5: अरे, अरे
3: मैं नहीं, मैं नहीं।
5: कक्का कक्का सुनो तो, सुना दो जरा मजा आ जाएगा।
3: अब तुम अब इतना जोर दे रहे हो तो सुनानी ही पड़ेगी। तो भैये कान लगा के सुनियो कहानी अहिल्याबाई की। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी के मध्य में माणकोजी शिंदे के एक गरीब मराठा परिवार में देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ।

0: लाखों में एक है हमारी अहिल्या, बिल्कुल राजकुमारी।
1: हाँ, पर राम जाने क्या होगा इस राजकुमारी का। अरे, हम ठीक से इसका लालन पोषण तो कर नहीं पाते हैं, इसका ब्याह कैसे करेंगे?
0: तू चिंता मत कर, जैसे इतनी बड़ी हुई है वैसे ही एक दिन पराए घर भी चली जाएगी। ठाट से इसका ब्याह करूंगा एक राजकुमार से, देखना एक दिन महारानी बनकर रहेगी हमारी अहिल्या।
1: कब तक इन बातों से मन बहलाओगे? पूरे 12 बरस की हो गई है अहिल्या, समय आ गया है कि विवाह योग्य कोई वर देखो।
2: बाबा, मैं जल चढ़ाने शिव मंदिर जाऊं?
0: हाँ बिटिया जा, संभल के जाना, शिव जी ही इसकी नैया पार करेंगे।
3: हाँ, तो उस दिन शिव मंदिर के पास मालवा के राजा मल्हार राव होलकर सैनिक डेरा जमाए बैठे थे।

0: कितना मधुर कंठ है, मुख पर राजसी तेज है। मंत्री जी, कौन है यह दिव्य बालिका?
1: महाराज, प्रतीत होता है निकट ग्राम की ही कोई बालिका है। अभी पूछता हूँ। बालिके, बालिके।
2: प्रसाद।
0: चिरंजीवी भव। पुत्री, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, अहिल्या।
0: अति सुंदर।
2: क्षमा करें, विलंब हो रहा है, माँ प्रतीक्षा करती होगी।
0: महामंत्री, शीघ्र पता लगाएं ये संस्कारी बालिका किस ग्राम की है, किस कुटुंब की है। हमने अहिल्या को हमारे पुत्र खंडू जी की वधू के रूप में चुना है। बालिका के माता पिता को शीघ्र न्योता भेजें।
1: ऐसा ही होगा महाराज।
3: बहुत बहुत बधाई हो।
4: बधाई हो, बधाई हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है।
0: क्या, वाह, सारे राज्य में उत्सव की घोषणा करा दी जाए। सबको महाभोज के लिए आमंत्रण भेजो।
1: जैसे आ गया महाराज।
5: तो अहिल्या बाई के आने से महल में खुशियां गूंजने लगी। पुत्र भाले राव के बाद महारानी ने पुत्री मुक्ता बाई को भी जन्म दिया। सब कुछ खुशी मंगल से चल ही रहा था कि मालवा पड़ोसी राज्य से युद्ध में फंस गया।
6: क्या कहा काका, युद्ध में फंस गया?
5: हाँ बेटा सल्लू, युद्ध में फंस गया।
1: महाराज, सूचना मिली है कि आपके पुत्र राजा खंडू जी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
7: क्या? नहीं, पुत्री अहिल्या।
1: महाराज, स्वयं को संभालें। यदि हम कमजोर पड़े तो मालवा को हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी।
8: महाराज, मैंने निश्चय किया है, मैं राजा जी की चिता में सती बनूंगी।
0: नहीं अहिल्या, राज को तुम्हारी आवश्यकता है, हम तुम्हें सती होने की अनुमति नहीं देते। महामंत्री, राजसी तलवार निकाली जाए, सैनिकों को मोर्चे पर डटे रहने को कहो, सेना की बागडोर अब हम संभालेंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: बताए फिर क्या हुआ सल्लू?
1: कुछ समय बाद महाराज मल्हार राव की मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई का पुत्र भाले राव भी बीमार रहने लगा।
0: अरे बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, मगर वो भी काल का ग्रास बन गया। अब राज्य की पूरी जिम्मेदारी अहिल्याबाई के कंधों पर आ गई थी।
2: सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्याबाई सभा में पधार रही हैं। सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्याबाई सभा में पधार रही हैं।
3: राजकोष खाली हो रहा है, राज्य के अधिकारी प्रजा के शोषण में लिप्त हैं। अब इन अव्यवस्थाओं पर लगाम लगानी ही होगी।
4: न्याय करे महारानी, न्याय करे।
3: क्या बात है, निर्भय होकर कहो।
4: महारानी, राज्य में व्यापार करना दूभर हुआ जा रहा है। अधिकारी मनमाने कर वसूलते हैं, लूट मची है लूट। ऐसा अन्याय तो कभी नहीं हुआ महारानी, कभी नहीं हुआ।
3: गंगाधर जी।
5: जी महारानी।
3: शीघ्र पता लगाया जाए कि मसला क्या है, दोषी अधिकारी को उसके पद से मुक्त कर दिया जाए। तुम आश्वस्त रहो फरियादी, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा।
4: जय हो महारानी, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए महारानी। अरे ऐसा न्याय कभी नहीं देखा भैया, ऐसा न्याय कभी।
6: अरे पकड़ो उसको, अरे कहाँ भाग रहा है,
7: पकड़ो, अरे कहाँ चला जा रहा है,
6: पकड़ो, बचने ना पाए।
7: अरे अंदर से घेर लो, घेर लो।
6: दरबार में सीधे घुस गया, छोड़ना मत, छोड़ना मत,
7: पकड़ लो।
3: क्या हो रहा है ये सब, छोड़ो उसे। कौन हो तुम?
6: महारानी जी, ये निचली जात का है, पता नहीं कैसे घुस गया यहाँ।
3: हमने प्रश्न आपसे नहीं पूछा था।
6: क्षमा करें।
8: महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो।
3: क्या नाम है तुम्हारा और इस तरह आने का कारण? अरे निर्भय होकर कहो।
8: महारानी जी, हम भकलू हैं महारानी जी, निचली जात के हैं, महेश्वर के पास नर्मदा जी के किनारे रहते हैं महारानी जी।
3: क्या समस्या है तुम्हारी?
8: महारानी जी, हमारी बस्ती में आपके सैनिकों ने हाहाकार मचा रखो है, लोगों और लुगाइयों को पीटत है, छोरों को मारत है महारानी जी। हमारे पास देने के लाने कच्छू नहीं है, हमारो जी वो मुश्किल कर दो है, दरबारी आपसे मिलन नहीं दे। हम जाए तो कहाँ जाए महारानी जी, आपकी शरण में आए हैं।
3: गंगाधर जी।
9: जी महारानी जी।
3: ये सब क्या हो रहा है हमारे राज्य में, हमारी प्रजा को हमसे मिलने की अनुमति नहीं?
9: महारानी जी, आपका समय इन छोटी मोटी घटनाओं में उलझने के लिए नहीं है, फिर ये कोई बड़ी बात भी तो नहीं है?
3: हमारी प्रजा परेशान है और आप कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमसे मिलने के लिए किसी प्रकार की रोक टोक न लगाई जाए।
9: जी महारानी जी।
3: सेनापति जी।
10: जी महारानी जी।
3: ये कौन महेश्वर की बस्तियों में उपद्रव मचा रहा है?
10: महारानी जी, गंगाधर जी ने कुछ सैनिकों को वहाँ कर वसूलने के लिए भेजा है।
3: क्या, हमारी अनुमति के बिना ही भेज दिया? तुरंत सेना वापस बुला ली जाए, छोटों को सताने वालों को हमारे कोप का भाजन बनना ही होगा, और निर्बलों को सताने से बड़ा और कोई पाप नहीं। तुम निश्चिंत रहो भकलू, हमारे द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे।
11: देवी अहिल्याबाई का न्याय।

0: महारानी जी, यदि बात ना जचे तो क्षमा करें, लेकिन प्रजा एक स्त्री प्रशासक के प्रति हमेशा आशंकित रहती है, और फिर शत्रु भी तो हमें कमजोर समझ के मौके का लाभ उठा सकते हैं।
1: गंगाधर, क्या कह रहे हैं आप?
0: महारानी, मेरा आशय आपके सामर्थ्य पर प्रश्न खड़ा करने का नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि भला हो यदि आप एक दत्तक पुत्र गोद ले लें और उसी की संरक्षिका के रूप में प्रशासन की देखरेख करें।
1: नहीं गंगाधर, अब हर मोर्चे पर हमें स्वयं आगे आना होगा। ये वक्त नहीं है कि किसी पर भी भरोसा किया जा सके।
0: आप कहती हैं तो ठीक ही होगा महारानी जी, मैं तो मालवा के भले की ही सोचता हूँ हमेशा।
1: मालवा का हित सोचने के लिए हम जीवित हैं गंगाधर। सभा समाप्त की जाती है।
2: महारानी जी,
1: क्या हुआ? ये घबराहट कैसी है?
2: महारानी जी, गंगाधर ने एक सैनिक टुकड़ी के साथ विद्रोह कर दिया। महारानी जी,
1: तो हमारी आशंका सच ही निकली। सेना तैयार करो, गंगाधर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे।

0: हाँ तो राजू, महारानी अहिल्याबाई ने गंगाधर के दांत खट्टे कर दिए। अरे इस घटना के बाद भी कई विद्रोह हुए, पर अहिल्याबाई विद्रोह दर विद्रोह कुचलते हुए आगे बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। अब मालवा की वाहवाही दूर दूर तक फैल रही थी। अरे सल्लू, ए तुझे नींद आ रही है क्या बे? हैं?
1: अरे नहीं काका, हम बड़े गौर से सुन रहे हैं काका।
0: अबे तू कम से कम काम पे ध्यान लगाता तो तेरी वाहवाही ढाबे तक तो रहती बे।
1: कैसी बात करता कक्का।
0: खैर चल सुन ध्यान से।
1: हाँ फिर आगे क्या हुआ कक्का?
0: हाँ तो मालवा को देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता था। मालवा को हड़पने की साजिश रचने वालों में एक और नाम था, राघोबा पेशवा। हाँ
2: महारानी जी, राघोबा पेशवा की सेना के सामने हम नहीं टिक सकेंगे। उनकी सेना संख्या में हमसे 3 गुनी है।
3: सेनापति तुकोजी, आप आश्वस्त रहें, बस जैसा हम कहते हैं करते जाएं। राज्य की स्त्रियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए, जिसकी सीधी देखरेख स्वयं हम करेंगे।
2: जैसी आज्ञा महाराज।

0: पेशवा साहब, सुना है मालवा की स्त्रियां हमसे मुकाबले के लिए बर्छी और ढाल चलाना सीख रही हैं। महारानी अहिल्याबाई हमारी सेना के सामने स्त्रियों की सेना खड़ी कर रही हैं।
1: क्या अब हमें स्त्रियों से युद्ध करना होगा?
0: यह तो उपहास जनक है। भला स्त्रियों और हम में क्या मुकाबला? हम उनको रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही।
1: नहीं नहीं सेनापति, नहीं। इस तरह से दोनों ही ओर से पराजय हमारी ही होगी। स्त्रियों को कुचलकर हम कौन सा यश पा जाएंगे? जनता हम पर थू थू करेगी। और मान लो कि हम पराजित हुए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे।
0: पर पेशवा साहब, और कोई भी चारा नहीं है। आप ही बताएं, ऐसे में हम क्या करें?
1: सेना को पीछे हटने का आदेश दिया जाए।
0: पर पेशवा साहब, मालवा की गद्दी?
1: हमें अपना आत्मसम्मान खोकर गद्दी हासिल नहीं करनी। मोर्चा वापस लिया जाए।
0: जैसी आज्ञा पेशवा जी की।

0: अहिल्या बाई राजमहल में पधार रही हैं।
1: महारानी जी, बहुत से राजपूत हमारे विरुद्ध हो गए हैं, हमारी उपलब्धियों से जलकर हमें लुटेरा कह रहे हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गए हैं।
2: क्या जिस महारानी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में धर्म की ध्वजा फहराई उनका राज्य लुटेरा है? महारानी अहिल्याबाई देवी हैं। देवी अहिल्याबाई ने तो हमेशा जनता की भलाई सोची है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य क्यों न हो। महारानी ने सर्वत्र सार्वजनिक निर्माण करवाए हैं, ये लोग महारानी की कृपा दृष्टि के योग्य नहीं।
3: शांत सेनापति, शांत। सारे भारत की जनता एक है, द्वेष तो राजा और नवाबों में है। ये एक दूसरे की निंदा की आड़ में एक दूसरे के प्रदेश को बुरा बतलाते हैं। ये प्रदेश छोटा है, वो बुरा है, हमारा प्रदेश बड़ा है और अच्छा है, वे जंगली हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अरे, इस भेदभाव का विष हम सबको किसी दिन नरक में धकेलेगा। इस अराजकता की स्थिति में आपस में लड़ मरने से अच्छा होगा कि हम एकजुट होकर सौहार्द से रहें।
1: महारानी जी, इन षड्यंत्रों को लेकर हमारी क्या नीति होगी?
3: राज्यों के प्रति हमारी नीति मैत्रीपूर्ण होगी। महामंत्री जी, युद्ध केवल जनधन की हानि देते हैं, आप सतही स्तर पर षड्यंत्रों को सुलझाने का प्रयत्न करें।
1: किंतु इस तरह शत्रु हमें दुर्बल समझने की भूल कर सकता है।
3: हमें लोगों के हृदय पर राज करना है महामंत्री, इसके लिए हम युद्ध की त्रासदी को टालने का हर संभव प्रयास करेंगे, किंतु पानी ऊपर चढ़ने पर हम भी शत्रु को धूल चटा सकते हैं।
1: जी, समझ गया।
4: अरे क्या बात है काका, मान गए काका, मान गए। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
5: हाँ सल्लू, महारानी ने अब सेना को मजबूत करना शुरू किया, और पता है नारी सेना बढ़ती चली गई। अब कोई मालवा के खिलाफ फन नहीं उठा सकता था। महारानी ने अब अपना सारा ध्यान मालवा के विकास में लगाना शुरू किया। हाँ,
3: उन्नति के लिए आवश्यक है कि दूसरे राज्यों से हमारा संपर्क बढ़े, राज्यों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाए, प्रजा के सहयोग से हमारे कोषागार में पर्याप्त धन है, इसका प्रयोग सार्वजनिक निर्माण कार्यों में किया जाएगा।

0: राहगीरों के लिए धर्मशालाएं प्याऊ बनवाए जाएं। और हाँ, अब कोई भी फरियादी किसी भी मसले को लेकर सीधे हम तक आ सकता है।
1: माननीय की जय हो।

0: महारानी ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए। अरे उनके ही शासन काल में कलकत्ते से लेकर बनारस तक पक्की सड़कें बनवाई गईं। अहिल्याबाई बहुत धार्मिक रहीं। उन्होंने स्वराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर बनवाया और बनारस में विश्वेश्वर मंदिर की स्थापना की थी।
1: वाह कक्का,
0: हाँ
1: महारानी तो बड़ी महान थी।
0: हाँ महान तो थी बेटा। अहिल्याबाई ने मालवा पर 30 सालों तक राज किया था।
1: 30 सालों तक?
0: हाँ, लेकिन 13 अगस्त 1795 को उन्होंने दुनिया से विदा लिया।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं आपका दोस्त दीपक निमा
2: और मैं नूपुर शर्मा।
1: दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में। श्रोताओं, संगीत की अगर बात हो और उसमें भी गायन की, तो अपनी विशेष भाव भंगिमाओं के साथ गायन शैली, अपूर्व स्वर और आकर्षक भाव व्यक्तित्व की बात करने पर अग्रिम पंक्ति में नाम आता है पंडित भीमसेन जोशी का। उनका नाम, स्वर, अंदाज और व्यक्तित्व, जब ये सब मिलता है तो बस जहन में एक ही नाम उभर कर आता है, पंडित भीमसेन जोशी।
2: हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं के जीवन, गायन और व्यक्तित्व की बात करते हैं। श्रोताओं, 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन पर विविधता में एकता को लेकर, संगीत, खिलाड़ी और सिने कलाकारों को लेकर दो छोटे छोटे लेकिन ऐसे कैप्सूल बनाए गए हैं जो हम दर्शकों के मस्तिष्क पटल पर आज भी अंकित हैं। इसमें पंडित भीमसेन जोशी के स्वर के साथ उसका आरंभ होता था। पहला है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, और दूसरा बजे सरगम।

0: हर तरफ से गूंजे बनकर देश राग।
1: हाँ, इन दोनों में सभी कलाकारों में से पंडित भीमसेन जोशी की उपस्थिति उनके बुलंद सुरीले स्वर के साथ लोगों के कानों में आज भी गूंजती है, और दूरदर्शन पर इसके आते ही घर में बैठे दर्शक पंडित भीमसेन जोशी के गाए शब्दों के अनुसार उनके स्वर में अपना सुर अवश्य मिलाते थे। यहां जो संगीत रसिक हैं, वे तो पंडित जी को जानते और पहचानते ही हैं, लेकिन दूरदर्शन का वो दर्शक वर्ग जिसका संगीत के स्वरों से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं, वे भी जोशी जी की आवाज में अपना सुर मिलाकर उसे हमारा सुर बना ही देते थे। ये बड़े ही यादगार लम्हे होते थे।

0: कर्नाटक के गडक नामक स्थान में स्थानीय हाई स्कूल के हेडमास्टर गुरुराज जोशी, जो कन्नड़, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे, और अपने छोटे भाई जी वी जोशी, जो उस समय के एक चर्चित नाटककार थे, उन्होंने धारवाड़ की मनोहर ग्रंथमाला को प्रोत्साहित भी किया था। इन दोनों भाइयों के पिता एक प्रसिद्ध कीर्तनकार थे और मिलजुल कर रहते थे। अब बात करते हैं 4 फरवरी 1922 की। परिवार के बड़े बेटे गुरुराज जोशी के घर 16वीं संतान का जन्म हुआ। बेटे के रूप में नाम रखा गया भीमसेन। अपनी संगीत में रुचि की बात को लेकर पंडित भीमसेन जोशी ने स्वयं एक साक्षात्कार में कहा था कि हर भारतीय घर में शाम को भगवान के सामने बत्ती लगाते हैं तो कुछ गाना वाना भी गाते हैं। मेरी माँ भी रोज ऐसा ही करती थी और उनको सुनकर मुझे भी गाने का शौक उत्पन्न हुआ।
1: बचपन में ही बालक भीमसेन लोक वाद्य, लोक सुर के प्रति इतना आकर्षित हो जाते थे कि वो उन लोक गायकों के पीछे कई मील तक दौड़ते चले जाते थे, और फिर जब वो थक जाते थे तो वहीं बेसुध होकर पड़े रहते थे। यानी संगीत के स्वरों का असर उनके मन, मस्तिष्क और आत्मा पर होना बचपन से ही शुरू हो गया था। जिस पाठशाला में वो पढ़ते थे उसी के रास्ते में ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की एक दुकान भी पड़ती थी, और उस दुकान पर ग्राहकों को जब गाने सुनाए जाते थे तब बालक भीमसेन भी खड़े हो जाते और उनको बड़ी तल्लीनता से सुनने लगते। एक दिन उसी दुकान पर उन्होंने उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का गाया गाना सुना। ये थी राग बसंत पर आधारित फगवा ब्रज देखन को, और साथ ही पिया बिना नहीं आवत चैन ठुमरी सुनी। संगीत का असर तो उस बालक पर था ही, इस ठुमरी ने उसे और बढ़ावा दिया। पुत्र की संगीत में रुचि होने का पता चलने पर पंडित भीमसेन जोशी के पिता ने अक्सरा चन्नप्पा को भीमसेन का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। एक बार पंचाक्षरी गवई ने भीमसेन को गाते हुए सुनकर चन्नप्पा से कहा था, इस लड़के को संगीत सिखाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसे तुम किसी बेहतर गुरु के पास भेजो।
0: पंडित भीमसेन जोशी को बचपन से ही संगीत के प्रति लगाव था। खास तौर पर वे हारमोनियम और तानपुरा के प्रति आकर्षित थे। यही आकर्षण उनके जीवन की लगन बन गया और इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपना करियर बनाने का उनका दृढ़ संकल्प और मजबूत होता चला गया। मात्र 11 वर्ष की आयु में उनकी औपचारिक शिक्षा ग्वालियर के माधव संगीत विद्यालय में शुरू हुई, लेकिन उनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव अपने गुरु सवाई गंधर्व का रहा, जो दरबारी संगीतकार अब्दुल करीम खान के शिष्य थे। और फिर सवाई गंधर्व के मार्गदर्शन में 1936 से 1940 तक भीमसेन जोशी ने अपनी गायन शैली को और निखारा और भारतीय शास्त्रीय संगीत की पारंपरिक मधुर शैलियों और रागों पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे उन्हें संगीत के क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद मिली। उनके गुरु सवाई गंधर्व ने अपने इस शिष्य को भारत और विश्व में सर्वाधिक जाने माने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिनिधि बनने का प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही पंडित भीमसेन जोशी ने हारमोनियम का प्रशिक्षण सामचार्य जोशी से प्राप्त किया।
1: श्रोताओं, ऐसा भी कहा जाता है कि जब बालक भीमसेन अपनी संगीत की शिक्षा लेने के लिए अपने गुरु सवाई गंधर्व के पास पहुंचे थे, तब सवाई गंधर्व ने भीमसेन से कहा कि मैं तुम्हें संगीत जरूर सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो ये है कि अब तक तुमने जो भी कुछ सीखा है उसे तुम्हें भूलना होगा। भीमसेन ने तुरंत इस बात की स्वीकृति दे दी कि वे अपना सारा संगीत का ज्ञान भूल जाएंगे, और फिर उनके गुरु सवाई गंधर्व ने भीमसेन जोशी को संगीत की शिक्षा देना आरंभ किया। वे किराना घराने के गायक बने। ये वो घराना है जो स्वरों पर पूरा जोर देने और भारतीय शास्त्रीय संगीत में पारंपरिक रागों के भीतर प्रत्येक स्वर के विकास के लिए जाना जाता है। इसमें सरगम तान का जटिल उपयोग होता है।
0: गायन पद्धति को हम और विस्तार से कहें तो हिंदुस्तानी संगीत मुख्य रूप से भारत में प्रचलित भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो विशिष्ट शैलियों में से एक है और दूसरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैली है कर्नाटक शैली। ये शैली मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। इन दोनों ही भारतीय शास्त्रीय संगीत शैलियों की जड़ें भारत के नाट्य शास्त्र से संबंधित हैं। ये स्वर पर केंद्रित हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े प्रमुख स्वर ख्याल, गजल, ध्रुपद, धमार, तराना और ठुमरी हैं। और संगीत घराना एक सामाजिक संगठन प्रणाली है जो कलाकार को वंश परंपरा से जोड़ती है और साथ ही एक विशेष संगीत शैली का पालन करती है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ शिष्यों को एक विशेष गुरु के अधीन रहकर सीखना और उनके संगीत ज्ञान और शैली को प्रचारित प्रसारित करना है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पंडित भीमसेन जोशी के परिवार में कोई भी संगीत से जुड़ा नहीं था, फिर भी वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में सबसे बड़े नामों में से एक कहलाए। उन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में अपनी पहली संगीत प्रस्तुति दी और इसके बाद वो रेडियो कलाकार की हैसियत से मुंबई शहर में काम करने लगे। 20 वर्ष की छोटी सी आयु में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ। भीमसेन जोशी ने 1941 में सार्वजनिक रूप से अपने गायन को आरंभ किया और 1942 में HMV पर अपना पहला एल्बम जारी किया और अपनी आवाज और तकनीकी सांगीतिक दक्षता के लिए पहचान भी हासिल की।
0: उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1946 में उन्होंने अपने गुरु सवाई गंधर्व के 60वें जन्मदिन समारोह में अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस समारोह में गायन के पश्चात उनकी खूब प्रशंसा हुई। उनके गायन को सुनने वालों ने खूब पसंद किया और फिर उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक प्रमुख हस्ती के रूप में स्थापित भी किया और उनके जीवन में यह कार्यक्रम एक प्रमुख पड़ाव साबित हुआ। पंडित भीमसेन जोशी ने अपने गुरु सवाई गंधर्व की विरासत को सम्मान देने के लिए सन 1953 में सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव की स्थापना की। जोशी जी गायन में सदा संगीत की पारंपरिक परंपरा से ही जुड़े रहे। रागों की परंपरा पर वह अपने गायन में सदा डटे रहे और उसमें उन्होंने महारत हासिल की और एक समृद्ध पारंपरिक शैली को बढ़ावा दिया। शुद्ध कल्याण, मियां की तोड़ी, भीम पलासी और राग यमन जैसे रागों में उन्होंने महारत हासिल की और साथ ही साथ कलाश्री, ललित भटियार और मारवाश्री की उनकी रचनाएं हमें उनकी संगीत प्रतिभा से पूरी तरह अवगत कराती हैं।
1: हाँ, ये बात बिल्कुल 100% सही कही आपने। पंडित भीमसेन जोशी ने सन 1964 से 1982 के बीच अफगानिस्तान, इटली, फ्रांस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में अपनी संगीत कला का प्रदर्शन किया, जिससे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार और व्यापक हुआ। वे सदा अपनी अनूठी शैली के लिए जाने और पहचाने गए। वे शायद ही अपनी किसी रचना को एक ही तरीके से दोबारा प्रस्तुत करते थे। भारतीय गायक और संगीतकार एम बाला मुरली कृष्ण के साथ उनकी जुगलबंदी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की प्रस्तुति दी। अपनी इन प्रस्तुतियों के द्वारा उन्होंने दो विशिष्ट भारतीय शैलियों को उनकी व्यक्तिगत अखंडता अलग अलग बनाए रखते हुए मिलकर प्रस्तुत किया।
0: अब अगर पंडित भीमसेन जोशी के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने दो विवाह किए। सन 1944 में उन्होंने अपने मामा की बेटी सुनंदा कट्टी से विवाह किया और 4 बच्चों के पिता बने। इनका नाम रखा गया राघवेंद्र, उषा, सुमंगला और आनंद। लेकिन उनके जीवन में सन 1951 में बड़ा परिवर्तन आया और जोशी जी ने एक कन्नड़ नाटक में अपनी सह अभिनेत्री वत्सला मुधोलकर से भी विवाह कर लिया, किंतु अपनी पहली पत्नी सुनंदा से अलगाव या विवाह विच्छेद नहीं किया। उन दिनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कानून के तहत हिंदू विवाह में दूसरे विवाह की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे नागपुर शहर में आकर रहने लगे जहां दूसरे विवाह की अनुमति थी। दूसरी पत्नी वत्सला से उनके 3 बच्चे हुए, जयंत, शुभदा और श्रीनिवास जोशी। आरंभ में तो उनकी दोनों पत्नियां साथ में ही रहीं, किंतु बाद में उनकी पहली पत्नी सुनंदा अपने बच्चों के साथ पुणे शहर के सदाशिव स्थित लिमयवाड़ी के दूसरे घर में रहने चली गईं। पंडित भीमसेन जोशी ने अपने दोनों परिवारों में आना जाना बरकरार रखा।
1: पंडित भीमसेन जोशी को उनकी अद्भुत प्रतिभा के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र से संबंधित 1972 में पद्मश्री और संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप पुरस्कार के साथ 1985 में आई फिल्म अनकही में उन्हें रघुवर तुमको मेरी लाज और ठुमक ठुमक भजन गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र भूषण 2002 और कर्नाटक रन 2005 भारत सरकार का पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान भी शामिल है। इसके साथ ही संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पंडित भीमसेन जोशी को भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। वे किराना घराना संगीत शैली के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, जो अपनी दमदार आवाज और भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण हस्ती माने गए।
0: वजह यह थी कि पंडित भीमसेन जोशी ने अपनी गायन शैली को रियाज और मेहनत से निखारा और रागों और भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुर पारंपरिक शैलियों पर अपनी पकड़ बनाई और उसे मजबूती दी। इसके साथ ही पंडित भीमसेन जोशी ने पार्श्व गायक के रूप में फिल्मों और भक्ति एल्बमों के लिए कई गाने रिकॉर्ड करवाए। उन्होंने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया। उन्होंने सन 1956 में आई फिल्म बसंत बहार का सुप्रसिद्ध गीत केतकी गुलाब जूही पंकज पद फूले पार्श्व गायक मन्ना डे के साथ युगल रूप से गाया था, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, और 1985 में आई फिल्म अनकही के गीत भी गाए। मराठी फिल्म स्वयंवर जाले सीतेचे, जो 1964 में आई, और 1966 में आई कन्नड़ फिल्म संध्या संध्या राग में अपने आवाज दी।
1: श्रोताओं, इसके साथ साथ हिंदू भगवान विठल यानी विठोवा की स्तुति में गाए जाने वाले मराठी भक्ति काव्य अभंग, जिसका शाब्दिक अर्थ है कभी ना टूटने वाला, इसे संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ जैसे संतों ने रचा है। इस मराठी छंद में मात्राओं की जगह अक्षरों की संख्या अधिक महत्वपूर्ण होती है, जो छोटे और बड़े दो प्रकार के होते हैं। इसमें भक्ति के साथ साथ उस समय के सामाजिक अन्याय की आलोचना और समानता का संदेश मिलता है। ये अभंग शास्त्रीय और गैर शास्त्रीय दोनों संगीत शैलियों में लोकप्रिय है। इसे पंडित भीमसेन जोशी ने अपने स्वर में गाकर एक विशेष ख्याति दिलवाई और वे एक उत्कृष्ट अभंग गायक के रूप में भी जाने गए।
0: यहाँ हम एक खास बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि पंडित जी ने जिन फिल्मों के गीतों को गाया है, वह भी शास्त्रीय संगीत के रागों पर ही आधारित रहे, और संगीत और कार्यक्रम के प्रति वे इतना समर्पित थे कि कहते हैं कि उनके द्वारा अपने गुरु के नाम को समर्पित सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव के आयोजन के दौरान एक तानपुरा वादक का सुर सही नहीं मिल पाया। ऐसे में वे स्वयं मंच पर जाकर तब तक तानपुरा बजाते रहे जब तक दूसरा वादक नहीं आ गया। संगीत के अलावा पंडित भीमसेन जोशी की दिलचस्पी कारों को लेकर भी थी, और इसमें वे केवल शौक तक ही सीमित नहीं थे, उन्हें ऑटो मैकेनिक्स का गहरा ज्ञान भी था।
1: पंडित भीमसेन जोशी ने सदा अपनी संगीत शिक्षा में मिली शैली का कठोरता से पालन किया। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो अभिजात वर्ग के विरोधी थे और इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि शास्त्रीय संगीत भारत की सभी जातियों, धर्मों और वर्गों का है। वो हमेशा अपनी सशक्त आवाज, श्वास नियंत्रण और अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय कलाओं के उस्तादों को दी जाने वाली पारंपरिक उपाधि पंडित से सम्मानित किया गया था। 6 दशकों से अधिक के अपने करियर में वे भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण हस्ती कहलाते थे। विशेष रूप से ख्याल गायन में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी योग्यता का आधार उनकी महान संगीत साधना है।
0: अपने एकल गायन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए युग का सूत्रपात करने वाले पंडित भीमसेन जोशी को जब देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई, तब उनके पुत्र श्रीनिवास जोशी ने उन्हें सबसे पहले बताया था। तब पंडित जी पुणे में थे। पुत्र के मुंह से स्वयं को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त होने की बात सुनकर उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, मैं उन सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों की तरफ से इस सम्मान को स्वीकार करता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी।
1: एक बार बातचीत के दौरान पंडित भीमसेन जोशी ने बचपन की उस घटना को याद कर बड़े विनोद पूर्वक स्वर में कहा था, जब वे एक दिन घर से भाग निकले थे, उन्होंने बताया कि ऐसा करके उन्होंने परिवार की परंपरा ही निभाई थी। मंजिल का पता नहीं था, रेल में बिना टिकट बैठ गए और ट्रेन में बीजापुर तक का सफर तय किया। टीटी को राग भैरव में जागो मोहन प्यारे और कौन कौन गुमजाए जैसी गीत भजन सुनाकर मुग्ध कर दिया था और साथ के यात्रियों पर भी उनके गायन का जादू चल निकला। सहयात्रियों ने रास्ते में खिलाया पिलाया और अंततः वे बीजापुर पहुंच गए। गलियों में गाकर और लोगों के घरों के बाहर रातें गुजार दी। दो हफ्ते इस तरह बीत गए। तब एक संगीत प्रेमी ने गाना सुनकर सलाह दी, संगीत सीखना है तो ग्वालियर जाओ।
0: अब पंडित भीमसेन जोशी को उस समय यह भी पता नहीं था कि ग्वालियर कहाँ है। वो एक दूसरी ट्रेन में सवार हो गए और पुणे महाराष्ट्र पहुंच गए। उस समय वह नहीं जानते थे कि एक दिन यही पुणे शहर उनका स्थायी निवास बन जाएगा। रेलगाड़ियां बदलते और रेल कर्मियों से बचते बचाते किशोर भीमसेन आखिरकार ग्वालियर पहुंच ही गए और माधव संगीत विद्यालय में प्रवेश ले लिया। किंतु भीमसेन को किसी कक्षा की नहीं बल्कि एक गुरु की आवश्यकता थी। भीमसेन 3 साल तक गुरु की खोज में यहाँ से वहाँ भटकते रहे। एक बार कर बल्लभ संगीत सम्मेलन में उनकी मुलाकात विनायक पटवर्धन से हुई। विनायक राव को इस बात को लेकर आश्चर्य हुआ कि सवाई गंधर्व उनके घर के पास ही रहते हैं और तब किशोर भीमसेन जोशी की मुलाकात सवाई गंधर्व से हुई। फिर क्या हुआ इसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं।
1: श्रोताओं, सवाई गंधर्व की शागिर्दी में भी लगभग 1.5 वर्ष तक उन्होंने भीमसेन को कुछ भी नहीं सिखाया, पर भीमसेन सवाई गंधर्व के पास रहने लगे। एक बार अपने बेटे भीमसेन की प्रगति का हाल जानने के लिए उनके पिता ग्वालियर आए। उन्होंने देखा कि भीमसेन संगीत ना सीखते हुए बस अपने गुरु सवाई गंधर्व के घर के लिए बड़े बड़े घड़ों से पानी भर रहे हैं। पिता को आश्चर्य हुआ। पिता के पूछने पर भीमसेन ने बहुत ही सहजता के साथ पिता से कहा, पिताजी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप मेरी बिल्कुल चिंता ना करें।
0: पंडित भीमसेन जोशी को ख्याल गायकी का स्कूल कहा जाता है। यह भी बताया जाता है कि ख्याल गायकी में राग की शुद्धता का सबसे सही तरीका सीखना है तो पंडित भीमसेन जोशी को सुनो। पंडित जोशी ने कन्नड़, संस्कृत, हिंदी और मराठी में ढेरों अभंग गाए हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर और बाल मुरली कृष्ण जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ यादगार जुगलबंदियां दी हैं। युवा पीढ़ी के गायकों में रामपुर सहसवान घराने के उस्ताद राशिद खान, जिन्होंने जब वी मैट फिल्म का गीत आओगे जब तुम साजना गाया है, उनके साथ भी पंडित जी ने गाया है।
1: श्रोताओं, पंडित भीमसेन जोशी उस संगीत के पक्षधर रहे जिसमें राग की शुद्धता के साथ ऐसा गाया जाए कि सुनने वालों की आंखें मुंद जाए और वो किसी और ही लोक में पहुंच जाए। पंडित भीमसेन जोशी की गायकी भी स्वयं इस परिकल्पना की मिसाल है। भीमसेन जोशी की आवाज की बुलंदी शायद इसलिए भी है कि उनकी गायकी का दौर वो दौर था जब कार्यक्रम में माइक नहीं होते थे, और यदि होते भी थे तो नहीं के बराबर। इसलिए गायकी में स्वाभाविक दमखम का होना बहुत जरूरी होता था। उस समय के गायक और गायकी के साथ पहलवानी को भी बराबरी का दर्जा देते थे। तभी तो बड़े गुलाम अली खां, फैयाज खां, अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां जैसे मंझे हुए गायक कलाकार गले के साथ साथ शरीर की भी वर्जिश करते थे, और गाते वक्त उन्हें माइक की भी आवश्यकता नहीं होती थी। पंडित भीमसेन जोशी के समकालीन गायकों में पंडित कुमार गंधर्व और पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर रहे हैं।
0: एक समय था जब शास्त्रीय संगीत दरबारों और गानों में कैद था, पर जब गंधर्व महाविद्यालय, प्रयाग संगीत समिति और भातखंडे विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं बनी तो उसका असर यह हुआ कि शास्त्रीय संगीत आम लोगों के बीच भी तेजी से पहुंचने लगा, लेकिन इससे संगीत की गुणवत्ता पर असर होने लगा। जोशी जी का मानना था कि संस्थानों में कलाकार पैदा नहीं किए जा सकते हैं, कलाकार बनने के लिए तो गुरु के प्रति समर्पण ही एक रास्ता है। यही कारण रहा कि पंडित जी देश भर में घूम घूम कर कलाकारों को खोजते थे और अपने गुरु की याद में शुरू किए गए सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव में वह उन कलाकारों को मंच देते थे। इस महोत्सव की इतनी ख्याति थी कि पुणे शहर के इस सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिलने पर कलाकार अपने को गौरवान्वित महसूस करता था।
1: पंडित भीमसेन जोशी एक बहुत ही सीधे और सरल इंसान थे। वे किराना घराने के सबसे प्रसिद्ध गायकों में गिने जाते हैं, किंतु विभिन्न घरानों के गुणों को मिलाकर वे अद्भुत गायन प्रस्तुत करते थे। आम जन साधारण लोगों में उन्हें मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा गीत के लिए याद किया जाता है। इसमें उनके साथ साथ बाल मुरली कृष्णा और लता मंगेशकर ने जुगलबंदी की है। सन 1985 से दूरदर्शन के जरिए वे घर घर में जाने पहचाने गए, और तब से लेकर आज तक इस गाने के बोल और धुन लोगों की जुबान और मन पर अंकित हो चुके हैं, जो पंडित भीमसेन जोशी की पहचान को और बढ़ाते हैं। उन्हें देश का भरपूर प्यार मिला।
0: पंडित भीमसेन जोशी जीवन के अंतिम वर्षों तक प्रस्तुति देते रहे और सन 2004 में एम बाल मुरली कृष्ण के साथ अपना अंतिम बड़ा संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सन 2007 में उन्होंने सवाई गंधर्व संगीत समारोह में अंतिम बार गायन किया और दिसंबर 2010 में बीमार होने से कुछ सप्ताह पहले समारोह के 58वें संस्करण में संक्षिप्त प्रस्तुति दी।
1: पंडित भीमसेन जोशी के प्रदर्शन को बड़े बड़े संगीत समीक्षकों ने सहजता, सटीक स्वर और उनकी असाधारण गायन क्षमता का उपयोग करते हुए तीव्र गति से गाए जाने वाले तानों और लय पर उनकी महारत के लिए सराहा है। 60 और 70 के दशक में उन्होंने अपनी विशिष्ट और उल्लेखनीय विशिष्टता, जिसमें वे तीव्र और लंबी तानों का प्रयोग करते थे, उनकी अद्भुत और अद्वितीय श्वास नियंत्रण का उदाहरण रहा। हालांकि उन्होंने सरगम तानों का प्रयोग शायद ही कभी किया हो। द हिंदू में लिखे एक लेख में कहा गया है कि वो घुमक्कड़ रहे और विचार विमर्श की तुलना में सहज रूप से शानदार तानों को जन्म देते थे। इसके साथ वो कभी कभी सरगम और विहाई का प्रयोग भी करते थे।
0: पंडित भीमसेन जोशी अक्सर किराना घराने की पारंपरिक रचनाएं गाते थे और उनके संगीत में अक्सर आश्चर्यजनक और अचानक वाक्यांशों का समावेश होता था, यानी तानों के बोल में प्रत्याशित तानों का प्रयोग करते थे। उनके संगीत में सदा जटिल और गंभीर रागों का ही समावेश रहा। उनके लोकप्रिय रागों में शुद्ध कल्याण, मियाँ की तोड़ी, पूरी अधनाश्री, मुल्तानी, भीम पलासी, दरबारी, मालकोंस, अमोजी, ललित, यमन, आसावरी, तोड़ी, मियाँ की मल्हार और रामकली शामिल हैं। वे एक शुद्धतावादी थे।
1: पंडित भीमसेन जोशी की गायकी कई संगीतकारों से प्रभावित भी रही। इसमें श्रीमती केसरबाई केरकर, बेगम अख्तर और उस्ताद अमीर खान जैसे नाम शामिल हैं। उन्होंने अपनी गायकी से विभिन्न संगीत शैलियों और घरानों के उन तत्वों को आत्मसात किया जो उन्हें पसंद थे। उन्होंने श्रीमती गंगूबाई हंगल और अन्य कलाकारों के साथ किराना घराना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पंडित भीमसेन जोशी को 31 दिसंबर 2010 को कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सांस लेने में कठिनाई होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। इस दौरान उन्हें और भी कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ीं और उनकी हालत बिगड़ गई और 24 जनवरी 2011 को उनका निधन हो गया।

0: पुणे के बैकुंठ शमशान घाट पर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
1: पंडित भीमसेन जोशी भारत के अविस्मरणीय संगीतकारों में से एक हैं, जिन्होंने किराना घराना में अपनी कलात्मक प्रस्तुति से संगीत प्रेमियों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है। संगीत के प्रति उनका गहरा लगाव था और संगीत के प्रति उनकी प्यास कभी भी बुझती नहीं थी। भीमसेन जोशी ने अपने अद्भुत प्रतिभा से आने वाली पीढ़ियों के संगीतकारों के लिए एक मिसाल कायम की है। भले ही वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी पंडित भीमसेन जोशी एक जीवित किंवदंती बने हुए हैं और आज भी अपनी अनूठी आवाज के माध्यम से अपने संगीत का जादू हम पर बिखेर रहे हैं। पंडित भीमसेन जोशी 20वीं सदी के सबसे महान गायकों में से एक थे।
2: शिष्याओं में सबसे पहले भगिनी निवेदिता का नाम मानस पटल पर उभरता है। अपने गुरु से आदर्श जीवन की प्रेरणा लेकर निवेदिता, जिनका नाम मार्गरेट नोबल था, भारत आई। पाश्चात्य संस्कृति के बंधन तोड़कर उन्होंने न केवल भारतीय शिक्षा और संस्कृति तथा भारतीय विचारधारा और जीवन पद्धति को अपनाया, बल्कि सनातन हिंदू धर्म और आध्यात्मिक जीवन स्वीकार कर भारत के कल्याण के लिए दीर्घ काल तक बहुत संघर्ष किया। नारी शिक्षा, सामाजिक विकास एवं साहित्य सेवा में उनका अवदान अपूर्व था।
3: स्वामी विवेकानंद जी की बात चले और भगिनी निवेदिता का प्रसंग ना आए, ये असंभव है। वे स्वामी जी की मानस पुत्री थीं। विदेश से वापस आने के बाद स्वामी जी के मन को नारी शिक्षा की बात सदा सताती रहती, पर उन्हें कोई उपयुक्त रास्ता नहीं दिख रहा था। निवेदिता ने भारत आकर स्वामी जी के मन का वह बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था और स्वामी जी ने निश्चिंत होकर उन्हें यह भार सौंप दिया था।
2: स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर एक कविता लिखी थी, अ बेनेडिक्शन। उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। माँ का हृदय वीर की दृढ़ता, मलय पवन की मधुरता, ज्वलंत आर्यवेदी की पावन शक्ति और मोहकता, ये वैभव सब अन्य और जो मन के स्वप्न बने हों, तुम्हें सहज जी आज प्राप्य हो, निश्चल भावना हो, भारत के भावी पुत्रों की गूंजे तुम में वाणी, मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी, मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी।
3: परवर्ती काल में इस कविता का संपूर्ण भाव निवेदिता के जीवन रूप में धरा था। निवेदिता भारत की आजादी के लिए संग्राम करने वाले क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। भारत के लिए प्रेम उनके हर कार्य में झलकता था। उनका पूर्ण समर्पित जीवन भारतवासियों के लिए वरदान स्वरूप था।
2: स्वामी विवेकानंद एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उनके साथ जितने भी लोगों का परिचय हुआ, वे सभी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे।

0: और सभी ने अपनी अपनी दृष्टि और समझ से विवेकानंद को समझकर उनके बारे में लिखा था। किसी ने उन्हें सन्यासी कहा, किसी ने हिंदू कहा, किसी ने वेदांती, किसी ने समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा गुरु, इतिहासकार और दार्शनिक कहा। पर वे थे क्या?
1: सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी को बहुत करीब से देखा था। आज हम विवेकानंद को सिस्टर निवेदिता की आंखों से देखेंगे।
0: भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी के मृत्यु के कुछ दिनों बाद चेन्नई से प्रकाशित द हिंदू अखबार में लिखा था,
2: संसार जिन्हें विवेकानंद के नाम से जानता था, आज उनकी याद दिलाने को मुट्ठी भर राख ही बची है। 5 वर्षों से जो ज्योति शिखा गंगा के तट पर एकांत में जल रही थी, आज वो बुझ चुकी है। जो प्रचंड ध्वनि विश्व के राष्ट्रों में गूंजती रही थी, वो आज मृत्यु की निर्वरता में लीन हो गई है। इस महान शक्तिधर आत्मा के लिए जीवन बहुधा आंधी और दुख कष्टों को लेकर आया, पर मृत्यु आई शांति लेकर। अमावस्या के दिन सांध्य आरती के पश्चात मृत्यु का वरदान चुपचाप पृथ्वी पर उतरा और थकी पीड़ित देह को ले गया, और आत्मा चिरकाल के लिए ब्रह्म में एकाकार हो गई।
1: निवेदिता ने हमें बताया कि किस तरह स्वामी जी अंत तक मनुष्य निर्माण का व्रत लेकर शिष्यों को शिक्षा देते थे।
2: जब उनकी सफलता के बाग के पहले फूल भी मुरझा नहीं पाए थे, तभी वे चले गए। जब उनके कानों में नई और महत्तर पुकारें गूंज रही थी, तभी वे चले गए। उनकी बीमारी के ही कुछ वर्ष उनके उस सुंदर निवास स्थल पर पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बीच चुपचाप बीत गए, जहां वे सारा दिखावा छोड़कर अपने नाम पर चमकती विपुल यशो राशि की उपेक्षा कर अपने शिष्यों को शिक्षा देने में तल्लीन थे। मनुष्य निर्माण ही उनकी सृष्टि में समस्त कर्तव्य कर्मों का सार संक्षेप था, और वे दिन पर दिन उत्साहपूर्वक बड़े परिश्रम के साथ इस मनुष्य निर्माण के कार्य में लगे रहे। कभी गुरु की तरह, कभी पिता की तरह, और कभी स्कूल के शिक्षक की तरह। यहां तक कि जिस दिन वे हमें सदा के लिए छोड़ गए, उस दिन दोपहर को भी वे 3 घंटों तक संस्कृत व्याकरण का पाठ पढ़ाते रहे। इस व्यक्ति के लिए बाहरी सफलता और नेतृत्व मानो कुछ भी न थे। पश्चिमी देशों में अपने प्रवास तथा निवास के दौरान स्वामी जी की कई ऐसे बड़े बड़े धनिकों और ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों से मित्रता हुई, जो स्वामी जी को अपने बीच रख पाना अपना अहोभाग्य समझते थे। पर अपनी सारी चमक दमक और ऐश्वर्य के बावजूद पश्चिमी जगत स्वामी जी के मन में अपने प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न न कर सका। उन्हें तो विदेशियों के सारे वैभव की तुलना में अपना गैरिक वस्त्र, कोलकाता की गलियां और अपने देश भाइयों की कमियां तथा कमजोरियां कहीं अधिक प्रिय थी। इसलिए स्वामी जी के पूर्व की ओर नित्य बढ़ते हुए चरण को पश्चिम किसी भी प्रकार रोक नहीं सका था।
0: निवेदिता से हमें मालूम पड़ता है कि स्वामी जी को पश्चिमी देशों में क्या विपुल संवर्धना मिली थी और लोग कितने प्रभावित हुए थे।
2: पश्चिम ने उनमें जाने ऐसा क्या देखा और सुना, जिसके कारण वहां के कितने ही लोगों ने संसार के एक सर्वश्रेष्ठ धर्माचार्य के रूप में उनकी जय जयकार की और उनके नाम को अपने हृदय में संजो कर रखा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी तरह का दावा नहीं किया। उन्होंने कभी अपनी कहानी भी नहीं कही। यहां तक कि एक व्यक्ति जो उन्हें लंबे अरसे से जानता था और उनका विश्वास पात्र था, ये न जान सका था कि स्वामी जी अपने गुरु भाइयों के बीच कितना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने अपरिचितों के बीच ईश्वर या अपने गुरु पर आधारित कोई विशेष मतवाद नहीं रखा था। संप्रदाय प्रचलित करने का प्रयत्न भी नहीं किया। यद्यपि उन्होंने उपनिषदों के अतिरिक्त और कहीं से भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए तथा वेदांत को छोड़कर और किसी भी बात की शिक्षा नहीं दी, यद्यपि वे भारतीय ग्रहों तथा संतों की विराट धार्मिक परंपरा के सतत साक्षी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसे आचार्य की बातें सुनी जो सत्य से भय नहीं खाते थे।
1: अलग अलग लोगों के लिए स्वामी जी के अलग अलग व्यक्तित्व थे। निवेदिता कहती हैं,
2: क्या हम शिव विषय वो भजन नहीं जानते जिसमें कहा गया है, जब शिव रास्ते से चलते हैं तो कोई उन्हें पागल कहता है, कोई कहता है कि वे पिशाच हैं, और कोई कुछ। अरे तुम नहीं जानते, वे तो साक्षात परमेश्वर हैं। इस प्रकार भारत इस बात को जानता है कि प्रत्येक महान आत्मा परस्पर विपरीत आदर्शों की मिलन भूमि और समन्वय स्थल होता है। अपने शिष्यों के लिए विवेकानंद सदा सर्वदा सन्यासी श्रेष्ठ ही रहेंगे। उनसे हमें प्राप्त होने वाली प्रेरणाओं में ज्वलंत त्याग का भाव भी प्रमुख था।

0: मैं भी अपने गुरुदेव की भांति एक सच्चे सन्यासी के समान मरना चाहता हूँ। कामिनी कांचन कीर्ति किसी का स्प्रहा ना रहे, और इन तीनों में यश की चाह तो सबसे घातक है।
1: निवेदिता विवेकानंद की देशभक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुई थी।
2: इस प्रकार जहाँ स्वामी जी एक और धर्म उद्दात अभिव्यक्ति थे, वहीं दूसरी ओर वे सबसे महान देशभक्तों में से थे। वे उस समय जन्मे जब राष्ट्रीय विखंडन प्रारंभ हो चुका था, पर वे नवीनता से भयभीत नहीं थे। वे उस समय हुए जब लोग अपनी विरासत को त्याग रहे थे, परंतु वे पुरातन के अनन्य उपासक बने रहे। उनमें राष्ट्र के लक्ष्य ने परिपूर्णता प्राप्त की। राष्ट्र का लक्ष्य कहता है कि राष्ट्रीय चेतना की प्रत्येक नवीन लहर का प्रारंभ सदैव धर्माचार्य द्वारा होना चाहिए।
1: स्वामी जी को जाति भेद और रंग भेद से घृणा थी। निवेदिता ने भी इसकी पुष्टि की है।
2: जब वे अमेरिका के दक्षिणो प्रांत में भ्रमण कर रहे थे, तब कई बार उन्हें काला आदमी समझकर घर में घुसने नहीं दिया जाता था। पर जब लोगों को मालूम पड़ता कि ये भारतीय हैं और विश्व विख्यात विवेकानंद हैं, तब वहां के उच्चतम परिवारों में उनका जोरदार स्वागत सत्कार होता, और इस प्रकार वे लोग अपनी भूल का प्रायश्चित करने से नहीं चूकते थे। पर स्वामी जी कभी अपने मुख से ऐसा नहीं कहते थे कि मैं निग्रो नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमुक अमुक हूं। जब लोगों ने उनसे उनके इस प्रकार मौन रखने का कारण पूछा, तो उन्होंने केवल इतना कहा,
0: यदि मैं अपना परिचय दे देता तो क्या वो अपने निग्रो भाइयों को अस्वीकार करना ना होता।
2: उनके लिए प्रत्येक जाति अपनी महानता थी, जिसके प्रकार में उस जाति का जीवन स्पंदित होता था। यूरोप से यदि तुर्क को निकाल दे तो यूरोप कहां रहेगा। मिश्र देश अपने धरती पुत्रों की उन्नति पर ही खड़ा है। इंग्लैंड ने आत्मसम्मान के साथ आज्ञा पालन के रहस्य को जान लिया है। और जहां तक देशभक्ति का सवाल है, जापानियों के साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती।
3: निवेदिता ने स्वामी जी को बहुत पास से देखा था। वे उनके यूरोप में दिए गए लगभग हर भाषण में उपस्थित रहती थी, इसीलिए स्वामी जी के भाषणों को बहुत अच्छी तरह परिभाषित कर सकती थी।
2: वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बल के अतिरिक्त और किसी बात पर चर्चा नहीं की। अपने ऊपर किसी के अधिकार की कल्पना तक उन्हें स्वीकार नहीं थी। और जब कभी वे किसी विदेशी से मिले, एक स्वामी की तरह अधिकार पूर्ण ढंग से मिले। उनसे किसी अंग्रेज ने कहा था, स्वामी जी की महान प्रतिभा उनकी गरिमा में है, जो किसी भी दृष्टि से सम्राटों की गरिमा से कम नहीं है। स्वामी जी ने एक महान तथ्य को जान लिया था कि पूर्व को पश्चिम के पास जाना होगा, परंतु एक चापलूस या दास की तरह नहीं, वरन गुरु की तरह, शिक्षक की तरह। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत श्रेष्ठताओं की पताका को नीचे नहीं झुकने दिया। एक बार उन्होंने कहा था, हाँ हाँ, यूरोप के लोग धर्म में हमारा नेतृत्व नहीं करें।
0: मैंने सदैव बल की ही बात कही है, कभी प्रतिशोध की नहीं। क्या कभी हम सागर की उस बूंद से बदला लेने की बात सोचते हैं जो हवा से उछलकर हमसे टकरा जाती है? परंतु एक मच्छर के लिए तो वही बहुत बड़ी बात है।
2: तथाकथित सुसंस्कृत कोई विदेशी यदि कभी भारत की किसी बात को बर्बरता या असभ्यतापूर्ण कह देता, तो स्वामी जी उस बात से बिना इनकार किए या उसे बिना किसी प्रकार घटाए, एकदम अपनी प्रचंड शक्ति को उस विशेष तथ्य की पुष्टि करने में केंद्रित कर देते, और वो बेचारा आलोचक अपने ही तर्कों में हिंडोले में आगे पीछे झूलने लगता था। इस संदर्भ में एक घटना याद आती है। स्वामी जी जहाज से जा रहे थे। एक अंग्रेज ने पुराणों के विषय में कोई व्यंग्यात्मक प्रश्न पूछ दिया। स्वामी जी के उत्तर से वो बेचारा अंग्रेज ऐसा हक्का बक्का रह गया कि देखते ही बनता था। उस दिन वहां जो भी उपस्थित था, उस दृश्य को कभी भूल नहीं सकता। स्वामी जी ने ईसाई धर्म ग्रंथों के स्तर पर हिंदू पुराणों की केवल तुलना ही नहीं की, बल्कि वेदों और उपनिषेदों को ऐसी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जहां तक किसी प्रतिद्वंदी की पहुंच नहीं थी। स्वामी जी ऐसे प्रसंगों पर मित्रता का ख्याल नहीं रखते थे। जहां राष्ट्र के स्वाभिमान और रक्षा का प्रश्न आता है, वे आलोचक पर बेहिचक टूट पड़ते थे, चाहे वो उनका परम मित्र ही क्यों ना हो।
3: निवेदिता ने हमें बताया कि विवेकानंद सिर्फ हिंदू धर्म या वेदांत के ही प्रकांड पंडित नहीं थे, उन्हें दूसरे धर्मों के बारे में भी अगाध ज्ञान हासिल था।
2: स्वामी जी स्वयं हिंदू धर्म के व्याख्याता थे, पर यदि वे देखते कि कई भिन्न धर्मावलंबी भारतीय श्रोताओं के सम्मुख अपने धर्म को प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो वे बैठ जाते और उसके लिए व्याख्यान लिख देते। जितना अच्छा वो स्वयं अपने धर्म पर ना लिख पाता, उससे कई अधिक अच्छा स्वामी जी अपने मित्रों के लिए उसके धर्म पर लिख देते थे। वे अपने विदेशी शिष्यों को हाथों से भोजन करना सिखाते थे तथा हिंदू जीवन की सामान्य कार्यों की शिक्षा देने में बड़ा परिश्रम किया करते थे। वे कहते थे, ध्यान रखो, यदि तुम भारत को प्यार करना चाहते हो तो उसका जो रूप है उसी रूप में उसे प्यार करो, ना कि उस रूप में जैसा तुम देखना चाहोगे। स्वामी जी की सीधी साधी जीवन यात्रा के कारण स्वामी जी जहां कहीं भी गए वहां की सर्वोत्तम चीजें उन्हें मिली, पर उनका असर स्वामी जी पर नहीं हुआ। वे पुरानी परंपरा के वही सरल हिंदू बने रहे। उन्हें भारत के इस सादगीपूर्ण जीवन धारा पर इतना गर्व था कि उन्हें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। अपने महाप्रयाण के 2 दिन पूर्व ही उन्होंने कहा था, रामकृष्ण के बाद मैं विद्यासागर का अनुगामी हूँ, और उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर विषयक पर प्रचलित कहानी सुनाई कि जब विद्यासागर आमंत्रित होकर धोती पहने, चद्दर ओढ़े और खड़ाऊ की खटर पटर ध्वनि के साथ वायसराय के कौंसिल चैम्बर में पहुंचे तो उपस्थित लोगों द्वारा आपत्ति उठाई गई। इस पर विद्यासागर ने कहा था, यदि आप मुझे नहीं चाहते थे तो फिर बुलाया क्यों?
1: जाति प्रथा के बारे में पूछने पर निवेदिता ने कहा था,
2: स्वामी जी ने जाति प्रथा का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने भारतीय एकता की कुंजी जाति की पृथकता में पाई। मुस्लिम इस राष्ट्र की एक जाति थे, ईसाई दूसरी, पारसी तीसरी, आदि आदि। ये ठीक है कि जाति में विश्वास ना करना ही इनका जातिगत वैशिष्ट्य था, पर यह बात तो ब्रह्म समाज और भारत के अन्य आधुनिक संप्रदायों पर भी लागू होती थी। इन सब के पीछे समान रूप से वही धरित्री थी, पूर्वजों की सभ्यता की वही सुंदर पुरातन परंपरा थी और वही जबरदस्त आवश्यकताएं थी। और स्वामी जी का विचार था कि ये सर्वमान्य तथ्य मिलकर देश की इन जातियों में अंततोगत्वा समान बातों के प्रति प्रेम और घृणा के भाव अनिवार्य रूप से भर देंगे।
3: विवेकानंद परिव्राजक थे, उन्होंने भारत के कोने कोने में भ्रमण किया था और हर प्रांत की खासियत को अपने अंदर ढाल लिया था, सभी प्रांतों की विशेषताओं को आत्मसात कर लिया था। तभी तो निवेदिता कहती हैं,
2: स्वामी जी को भारत के हर संप्रदाय, हर वर्ग की आशाओं और आदर्शों का ही ज्ञान नहीं था, बल्कि उनके हृदय में उन सब की अतीत स्मृतियां भी सुरक्षित थी। स्वामी जी कलकत्ता के एक हिंदू परिवार में जन्मे थे और अब गंगा के तीर पर निवास कर रहे थे, पर उनके भावों के उद्वेलन को देखने से ऐसा लगता था कि अब वे पंजाब में जन्मे हैं। कभी ऐसा लगता था कि हिमालय की सुंदर वादियों में उनका जन्म हुआ है, और कभी ऐसा प्रतीत होता था कि स्वामी जी ने राजपुताना में अथवा कहीं और जन्म ग्रहण किया है। उनके अधरों पर कभी गुरु नानक के गीत होते थे तो कभी मीराबाई के, और कभी वे तानसेन के गीतों में विभोर हो जाते थे। वे कभी पृथ्वीराज और दिल्ली की कहानियां सुनाते थे, कभी चित्तौड़ और राणा प्रताप की, कभी शिव और उमा की कथाएं सुनाते थे, कभी राधा और कृष्ण की, कभी सीता और राम की कथाएं कहते थे, तो कभी बुद्ध की। जब स्वामी जी स्वयं अभिनय करते थे तो पूरे अभिनय में अद्भुत सजीवता आ जाती थी, अतीत मानो वर्तमान में उतर आता। उनका समूचा मन प्राण देश का मानो ज्वलंत महाकाव्य था, और मातृभूमि के नाम सुनने मात्र से ही उनका सारा व्यक्तित्व गूढ़ भावों से भर उठता था।
1: निवेदिता के अगले कथन से हमें स्वामी जी की मानवता के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा,
2: बेलूर मठ में स्वामी जी के पास विश्व के सभी भागों के दर्शक और चिट्ठी का तांता लगा रहता था। भारत की ऊपरी सतह पर आज भले ही मौन का साम्राज्य दिखे, पर उसके हृदय के अंतरतम प्रदेश में स्वामी जी सदैव विद्यमान रहे। वे कभी भुलाए नहीं जा सकते, कोई उनकी उपेक्षा करने की इच्छा या साहस नहीं कर सकता। ऐसी कोई आशा की वाणी नहीं थी जो स्वामी जी के कानों में ना गई हो, कोई ऐसी पीड़ा की कराहा नहीं थी जिसे स्वामी जी ने नहीं जाना हो, और उनका सारा जीवन सांत्वना देने और ऊपर उठाने में लगा रहा। इस प्रकार जैसे कि धर्म के नेताओं के साथ हर दम होता रहा, स्वामी जी ने जिस भारत को देखा वो अन्य दूसरी आंखों में दिखने वाले चित्र से सर्वथा भिन्न था। कारण यह था कि स्वामी जी के हाथों में उन सारे तथ्यों के सूत्र विद्यमान थे जो मौलिक थे, प्राणप्रद थे तथा देश की प्रकृति में दृढ़ मूल थे। उन्होंने जीवन के छिपे हुए स्रोतों को जान लिया था। वे जान चुके थे कि किस शब्द से करोड़ों जनमानस को स्पर्श करना है, और अपनी इस समस्त जानकारी के फल स्वरूप उन्होंने एक बात निश्चित रूप से देखी थी, और वो थी आशा की स्पष्ट और बलवती किरण।
3: निवेदिता ने ही हमें बताया कि एक स्नेही माता की तरह स्वामी जी भारत को निहारते थे, भारत की कमजोरियों को वे पहचानते थे और इस बात के लिए आशावान थे कि जल्द ही भारत अपनी गिरी हुई अवस्था से निकलकर पुनः लुप्त गौरव को प्राप्त कर लेगा।
2: दूसरे लोग कुछ भी कहें, कैसी भी भूल करें, पर स्वामी जी के लिए भारत अभी भी शिशु था और उनके सपनों का भारत भविष्य की गोद में था। दुख और कष्ट में से आज भारत के क्षितिज पर जो नवीन भावोन्मेष हुआ है वो स्वामी जी की दृष्टि में एक लंबे विकास कर्म का केवल पहला चरण था। उनके मतानुसार देश की आशा उनमें निहित थी, किसी विदेशी में नहीं। ये सत्य है कि उनके विशाल हृदय में विदेशियों की आवश्यकता का भी स्थान था, और इस प्रकार उन्होंने विश्व के समक्ष सार्वभौमिकता का आदर्श रखा। पर उन्होंने किसी से भी भीख नहीं मांगी, किसी से सहायता की आशा नहीं की, उन्होंने बाहर के किसी भी व्यक्ति या देश पर भरोसा नहीं किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि देश के लिए जो कुछ करना है वो करने वालों के कर्तव्य से संपन्न होगा, याचना करने वालों की भिक्षा से नहीं। ना वे बाहर से कोई आशा रखते थे, ना उन्हें बाहर का कोई भय था। उनके संन्यास लेने का तात्पर्य था भारत की यथार्थ आत्मा का पुनरुद्घोष, राष्ट्र की महती जीवन धारा में नवीन आत्मा विश्वास और प्राण शक्ति का संचार, जिससे वो महासागर के लिए अपना रास्ता स्वयं प्रशस्त कर लें। उनके लिए संन्यास का अर्थ था महत्तर सेवा के लिए लघुता का त्याग। उनके लिए भारत हिंदुत्व का, आर्यत्व का, एशियात्व का पर्याय था। भारत के तरुण आधुनिक वैभव और विलासिता में अपने प्रयोग भले ही करें, उन्हें इसका पूरा अधिकार है, पर अंत में उन्हें लौटना पड़ेगा, क्योंकि भारत की आत्मा की अतः गहराइयां नीति की हैं, संयम और तपस्या की हैं, अध्यात्म की हैं। वो जाति जो गंगा के तीर पर मृत्यु का आलिंगन करने को आतुर रहती है, अधिक समय तक केवल यांत्रिक शक्ति की चकाचौंध में पड़कर विपदगामी नहीं बनी रह सकती।
1: और अंत में आशा की वाणी से स्वामी जी ने भारत को संदेश दिया था।
2: बुद्ध ने त्याग का उपदेश दिया था, और दो दशकों में भारत एक विशाल साम्राज्य बन गया। अब एक बार फिर से उसकी नसों में वही महान स्पंदन दौड़ जाए, उसकी इस नव प्रभुता शक्ति के सम्मुख पृथ्वी की कोई ताकत टिक ना सकेगी। पर हाँ, वो एक बात जान ले कि अपने स्वयं के जीवन में ही उसे जीवन मिलेगा, किसी के अनुकरण में नहीं। उसे अपने ही सम्यक अतीत और परिवेशों से प्रेरणा प्राप्त होगी, किसी विदेशी से नहीं। जो अपने को दुर्बल समझता है वो दुर्बल है ही, जो अपने को सामर्थ्यवान समझता है वो अजय बन चुका है। इसीलिए अपने देश के लिए, अपने प्रत्येक देशवासी के लिए विवेकानंद की केवल एक ही बात है, बारंबार घोषित किया हुआ एक ही संदेश है, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य, वरान्नी बोधत, जागो, उठो, लगे रहो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।